एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 13वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 4 सितंबर वर्ष 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियो सिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान

0: की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद्गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
2: जब से ये धरती है तब से ही फूल इस धरा को महका रहे हैं। मनुष्य के अस्तित्व से भी पहले इस धरती पर पानी और वनस्पति ने ही अपने सौंदर्य को बिखेरा होगा। दूर दूर तक फैली हुई घाटियां हरियाली की चादर ओढ़े अपने सतरंगी रूप में जब हमारे सामने होती है तब हमें यकीन ही नहीं होता कि ईश्वर कितना मेहरबान है। और प्रकृति की इस छटा में चार चांद लगाते हैं वो पुष्प जो अपनी रंगीनियत से धरती की हरियाली को श्रृंगारित करते हैं। फूल और उनके पराग, उनका रस तितलियों और भंवरों के लिए ही होता है। कितने ही कीट पतंगों का जीवन फूलों पर निर्भर है। एक फूल पर तितली का मंडराना हमें एक अलग ही आनंद देता है। एक फूल का अपने पेड़ पर खिलना ठीक वैसा ही है जैसे किसी माँ की गोद में उसका शिशु खिलखिला रहा हो। एक फूल का खिलना हमें उम्मीद से भर देता है। जब फूल खिलखिलाते हैं तब जीवन के सभी दुख हम भूल जाते हैं। फूलों का खिलना हमें सकारात्मकता से भर देता है और फिर ऊस की बूंदों को अपने आप में समेटे जब गुलाब अपनी पूरी रंगीनियत के साथ मुस्कुराता है तब हमें उसकी तपस्या को भी समझना चाहिए। फूल अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। अपनी खूबसूरती और सुगंध वो हमेशा दूसरों पर न्यौछावर करता है। इसमें एक बड़ा संदेश हम सबके लिए भी है कि हमारी अच्छाइयां मनुष्यता के लिए हो। हमारे आंगन के बगीचे और गमलों में मुस्कुराते फूलों को देखिए। वो हमसे यही कह रहे हैं कि आप भी मुस्कुराइए। आपकी मुस्कुराहट किसी के लिए औषधि का काम करती है। निस्वार्थ रहिए और अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाते रहिए एक फूल की तरह।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो।
1: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों की स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये प्रसंग यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों एवं प्रसारणों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी ठीक 6:45 पर हमारे किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात। 6:50 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। प्रातः 7:30 पर पुनः 10:00 और पुनः प्रातः 12:00 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे 8:15 पर प्रस्तुत होगा दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुन सकेंगे प्रातः 9 बजे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा प्रातः 9:30। प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह से निकाय चुनावों की तैयारी पर सजीव कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी लोक। विविध भारती के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे प्रातः 5:30 पर और रात्रि 9 बजे। हिंदी में प्रादेशिक समाचार और कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे शाम 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुन सकेंगे शाम 6:45 पर जयपुर अजमेर केंद्र से। कार्यक्रम चौपाल को आप सुनेंगे शाम 7:00। 7:30 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे प्रसारित कार्यक्रम।

रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे समाचार संध्या। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। वहीं रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आप सुन रहे थे दिन भर के कार्यक्रमों का विवरण। प्रातः के 6:45 हुए हैं। समय हो चला है किसान श्रोताओं हेतु कार्यक्रम खेती नी वात का।
1: खेती नी वात हमारा सब किसान भाई ने बोने ने वीणा बेन नो राम राम राम राम। किसान भाइयों देखो अना हवा ना टाइम में आपड़े खेतर नो जी काम काज है ई करवो पड़ी रू है। हर रोज आपड़े खेतर ने काम काज नी वाते कर पण आपड़े तो रिया किसान भाई ने बेने आपड़े जी खेतर नो काम है पशु नो काम है ई तो अने हवा ना टाइम में आपड़े ने निपटावोज पड़े। देखो आ खरीब नी फसल है ई थैरी थकी है सीपो वगैरह लई रही थका है। हर रोज आपड़े खेती खरीफ फसल नी मक्का नी वात करा पण किसान भाई आजे आपड़े वात करा हवाना टाइम में कि जैविक खेती आपड़े सब्जी बदले कितली जरूरी है ने जैविक खेती केम जरूरी है। क्योंकि किसान भाईओ आपड़े सब्जी नी खेती है ई अना चोमासा ने टाइम में भी आपड़े करा हियारा में भी करा ने हमेशा जी आपड़े सब्जी है ई तो करीज रही थका है। पण किसान भाई आ जैविक खेती नो आपणे केटलो फायदो है ई आपणे जाणता थकी भी आ जैविक खेती आपणे ने अपनावी रहे। तो देखो जैविक खेती थी कि आपणे जी सब्जिया है ई आपणे सुरक्षित मिली जाए ने आपणे जी सब्जी खा ताजी ई आपणे शरीर हरू स्वस्थ ने सुरक्षित रहे। जैविक खेती केम जरूरी है किसान भाई तो जी रासायनिक खाद है कीटनाशक है ई वधार उपयोग थकी आपणे मिट्टी नी जी उपजाऊ शक्ति है ई कम थई रही थकी है। भूजल दूषित थई रू थको है ने लोगन ने स्वास्थ्य उपर बुरो असर पड़ी रो थको आपणे जाणी थक है। आणी गंभीर समस्या थकी बचवा बदले प्रकृति ने सुरक्षित राखवा हारू जैविक खेती किसान भाई बहुत जरूरी है। बीजू आपणे मिट्टी ने पर्यावरण ने रक्षा हारू मिट्टी शक्ति जैविक खाद ने गोबर थकी मिट्टी नो पोषक तत्व है इनी उपजाऊ क्षमता है बढ़ली रहे। जल स्तर ने जल संरक्षण आने मिट्टी नो पानी रोकवाने क्षमता है ई बढ़ी जाए। सिंचाई ने जरूरत थोड़ी कम रहे एम ने प्रदूषित थकी आपणे मुक्ति पाई शक जेम के जल प्रदूषण थई रू है प्रदूषित थई रू है तो एने मुक्ति आपणे लई शकीए जेम के हवा में पाणी जमीन रासायनिक जहर थकी सुरक्षित रही शक। देखो आ रासायनिक कीटनाशक थकी

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत।

0: झट से ही खरीदे अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है। रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत में आज आपको सुना रहे हैं गोपाल पंड्या व साथियों द्वारा गाए कुछ कृष्ण भजन।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट।

0: जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

आप सुन रहे थे गोपाल पंड्या व साथियों द्वारा गाए कृष्ण भजन कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राम पंचाल भारतीय से कृष्ण भक्ति छंद।
1: सृष्टि के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है और भगवान कृष्ण की लीलाओं को विभिन्न छंदों के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। मध

प्रीत बढ़ा कर सावरिया, मन भावन देह का भाम किया है। प्रीत बढ़ा कर सावरिया, मन

0: कुछ छंद आपके नजर रखता हूं, सुनिएगा।
1: अखिल ब्रह्मांड नाथ लिए मुरली को हाथ, निश्चल मूरत प्यारी बड़ी मन भाए है। अखिल ब्रह्मांड नाथ लिए मुरली को हाथ, निश्चल मूरत प्यारी बड़ी मन भाए है। सर्व वेद ज्ञाता स्वामी मैं मूरख खल कामी, सृष्टि जिस में समाई तथ्य समझाए है। और ब्रह्म जाल कट जाए अंधियारा छट जाए, आकर निकट जब पाठ वो पढ़ाए है। और ब्रह्म जाल कट जाए अंधियारा छट जाए, आकर निकट जब पाठ वो पढ़ाए है। पूजा करूं तेरी नाथ रख मेरे सिर हाथ, संग संग नाचो आज जोगिन बुलाए है। पूजा करूं तेरी नाथ रख मेरे सिर हाथ, संग संग नाचो आज जोगिन बुलाए है।
0: और देखिए कि प्रीत के प्रतीक जो कृष्ण का है, मैं एक छंद उस पर रखता हूं
1: कि प्रीत की प्रतीक पाती हाथ में ही ना रचाए, प्रीत की प्रतीक पाती हाथ में ही ना रचाए, इत्र सी सुगंध लिए बाट जो है राधिका। पीतांबर सोहे अंग उंगली पे नाचे नाथ, प्रीत प्रतिमान गढ़ श्याम प्रेम साधिका। ओ देखी वृष भानु जाकी अलबेली अठ खेली, कनखी कमान काटे कृष्ण मन भाविका। ओ देखी वृष भानु जाकी अलबेली अठ खेली, कान की कमान काटे कृष्ण मन भाविका। ओ मद मत मदनिका माधुरी माधव मोही, नित नेह में नहाए वेणु अभिसारिका। ओ मद मत मदनिका माधुरी माधव मोही, नित्य नेह में नहाए वेणु अभिसारिका।
2: आप सुन रहे थे राम पंचाल भारतीय से कृष्ण भक्ति छंद। कार्यक्रम वातायन यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में मिस मैरी फिल्म के गाने के साथ। राजेंद्र कृष्ण हैं गीतकार और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में कभी कभी फिल्म का गाना। साहिर लुधियानवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं खयाम।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

आइए अब सुना जाए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में खेल खेल में। इस फिल्म का गाना गुलशन बावरा हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है हम है राही प्यार के। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में कर्ज फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा साया साथ होगा।
5: और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में बॉबी फिल्म से। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है,
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
6: पहले तुम,
7: पहले तुम,
6: पहले तुम,
7: पहले तुम,
6: पहले तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
6: अच्छा मैं कहती हूँ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSP-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है, और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
1: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
4: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेष

जांचों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता

0: moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram per AIR News Alerts ko follow karein.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट एट AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
4: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिन्दुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की एआई जेनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। एआई को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने एआई सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

दोष मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक आज सुनिए इस श्रृंखला की 44वीं कड़ी।

0: बैरिस्टर जिन्ना द्वारा रखे गए मुद्दों में विसंगति दिखाते हुए इस्लाम धर्म के अध्येता और विचारक मौलाना रजा उल करीम ने कुछ लेख लिखे। कालांतर में उन बंगाली लेखों का संग्रह बंकिम चंद्र ओ मुसलमान समाज नाम से 1944 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के एक अध्याय में उन्होंने कहा,
1: हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधारण बातों में भी मूर्ति पूजा का हवा खड़ा करके आम मुसलमानों का दैनिक जीवन दूषित करते हैं। माता पिता के चरणों को हाथ से छूकर उनके प्रति भक्ति भाव दिखाना ही मूर्ति पूजा है। श्रद्धा के पात्र व्यक्तियों के सामने भक्ति भाव से नतमस्तक हों तो वो भी मूर्ति पूजा ही है। सजावट के लिए कमरे में कोई तस्वीर लगाना भी मूर्ति पूजा ही है। क्या ऐसा मानना चाहिए? ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति वंदे मातरम जैसे अत्यंत निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को सांप्रदायिक गीत कहते हैं, परंतु जिनके पास उदारवादी दृष्टिकोण है उन्हें वंदे मातरम गीत को सम्यक दृष्टि से ही देखना चाहिए। वंदे मातरम जैसे सर्वांग सुंदर गीत का मूर्ति पूजक कहकर जो विरोध होता है उसका उद्देश्य पवित्र तो है ही नहीं। इसलिए
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम कुछ दिल से को लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष आपकी रेडियो होस्ट अपूर्वा श्रीमाली। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोता, आज का दिन बेहद अद्भुत और पावन है। चारों तरफ फैली हुई माटी की सौंधी महक और नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का जयकारा। जी हां, आज जगत के पालनहार मुरलीधर योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, उस दिव्य योग को आज हम सब मिलकर उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं कान्हा के इस गीत के साथ।

इस गीत के मिठास के बाद चलिए चलते हैं द्वापर युग के उस ऐतिहासिक क्षण में, जब कंस के अत्याचारों से धरा कांप रही थी। तब कारागार के अंधेरे को चीरते हुए एक साक्षात धर्म ने जन्म लिया। भाद्रपद की वो तूफानी रात जब यमुना अपने उफान पर थी और वासुदेव जी ने नन्हे कान्हा को सूप में रखकर गोकुल की ओर ले जा रहे थे, मानो प्रकृति स्वयं को अपने स्वामी के चरण स्पर्श करने को आतुर थी। गोकुल में यशोदा मैया की गोद में जब कान्हा मुस्कुराए तो मानो पूरी दुनिया का दुख दर्द मिट गया। माखन चोरी, कालिया नाग मर्दन और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करना,

0: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: श्रोताओं, श्री कृष्ण केवल माखन चोर या मुरली बजाने वाले कान्हा ही नहीं है, वे तो जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन हतोत्साहित हुए, तब भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करता है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात अपना कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में तनाव से मुक्ति और सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र यही निष्काम कर्म है। कान्हा हमें सिखाते हैं कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने चेहरे की मुस्कान कैसे बनाए रखनी है।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: जे कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दोस्तों, कान्हा की महिमा अपरंपार है, लेकिन उनकी बाल लीलाओं में जो मिठास है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो गोकुल में मैया यशोदा के सामने एक थोड़े से माखन के लिए नटखटपन दिखाते हैं। जब एक बार मैया यशोदा ने उन्हें माखन चुराकर खाते हुए पकड़ लिया और छड़ी उठाते हुए पूछा कि कान्हा तूने माखन खाया, तब हमारे प्यारे कान्हा जिनके मुख पर माखन लगा हुआ था उन्होंने कहा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर गयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसीवट भटक्यो सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो छीको किस विधि पायो। ऐसे है नटखट हमारे कृष्ण कन्हैया।

श्रोताओं, कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं है, एक एहसास है। जब हम टूटते हैं तो वो भगवत गीता का ज्ञान बनकर संभालते हैं। जब हम उदास होते हैं तो वो बांसुरी की धुन बनकर सुकून देते हैं। और जब हम बिना शर्त के प्यार करते हैं तो उनके लिए हम राधा हो जाते हैं। वो माखन चोर भी हैं और पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भी। पर सबसे प्यारी बात जानते हैं क्या है? वो हर उस इंसान के हैं जो उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं। आज रात ठीक 12 बजे कान्हा का जन्म होगा, तब अपने घरों में माखन मिश्री का भोग लगाना ना भूले। मटकी फोड़ भी पूरे उत्साह और उमंग से करें। कान्हा के बताए सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प करें।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिन से। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। पहला गीत आपको सुना रहे हैं राजा हसन की आवाज में।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुप्रिया की आवाज में।

आप सुन रहे थे सुप्रिया की आवाज में राजस्थानी गीत कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज नगर निकाय आम चुनाव में घोषित प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी, आज 19 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगर निकाय आम चुनाव में कल नाम वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार शेष प्रक्रिया के तहत आज चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में कल पर्यवेक्षकों की प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव में पर्यवेक्षण कार्य भी दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का पर्यवेक्षण 7 से 14 सितंबर तक रहेगा, जो सदस्य पद की मतगणना पूरी होने तक जारी रहेगा। वहीं दूसरे चरण का पर्यवेक्षण 21 से 22 सितंबर तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक किया जाएगा। बैठक में श्री सिंह ने अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यवेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले कार्यों, दायित्वों और संबंधित नियमों की प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनाइज कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी। इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। राजस्थान पुलिस ने तकनीकी नवाचार के तहत राजकोप सिटीजन मोबाइल ऐप पर ई विजिटर सुविधा की शुरुआत की है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की ओर से शुरू की गई इस सुविधा से होटल, धर्मशाला और व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जा रहे अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले आगंतुकों का विवरण अब मोबाइल फोन से ही दर्ज किया जा सकेगा। इससे खासतौर पर छोटे होटल और धर्मशाला संचालकों को राहत मिलेगी। नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ के मौके पर इस महीने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस शपथ अभियान में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से 10 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. संदीप रेवजी राठौड़ ने कल नई दिल्ली में इस योजना पर चर्चा करने के लिए दो उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की। उन्होंने बताया कि यह शपथ अभियान एक ऐसी पहल है जिसके तहत लोग स्वेच्छा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के शिकार लोगों तक पहुंचने का काम करते हैं। इसका मकसद लोगों में जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना और उनमें नशीले पदार्थों से दूर रहने की जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षक दिवस कल मनाया जाएगा। यह दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान को याद करने का अवसर है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस साल कुल 82 उत्कृष्ट शिक्षकों

0: प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर।

को सम्मानित किया जाएगा। इनमें 48 स्कूल शिक्षक शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने वाले शिक्षकों को हर साल प्रदान किए जाते हैं। प्रदेश से भी 2 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिलेगा। चाकसू के टुंगली का बास के उच्च प्राथमिक विद्यालय की डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को नवाचार, तकनीक और गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा।

0: मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। घरों और मंदिरों में श्री कृष्ण की विशेष झांकी भी सजाई जा रही है। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां मंगला आरती के पहले से ही नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंज रही है।
1: ब्रज क्षेत्र भरतपुर में आज कृष्ण जन्माष्टमी धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। किला स्थित बांके बिहारी जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की और राधे राधे जय श्री कृष्णा के जयकारे गुंजायमान हो रहे हैं। ठाकुर जी का माखन मिश्री से भोग लगाया जा रहा है। बिहारी जी मंदिर को आकर्षक रोशनी व फूलों से सजाया गया है। ठाकुर जी को विशेष पोशाक धारण कराकर अलौकिक श्रृंगार किया गया है। शहर की नदिया गोपाल मंदिर राधा रमन मंदिर में आज दोपहर को नंदलाल का जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं श्रद्धालु निकटवर्ती गोवर्धन धाम पहुंचकर गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा करने पहुंच रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: इधर राजधानी जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर सहित सभी मंदिरों में नंदलाल के आगमन की तैयारियां हो रही हैं। यातायात के सुगम संचालन के लिए परकोटा क्षेत्र में चलने वाले परिवहन साधन ई रिक्शा, ऑटो, सिटी और मिनी बसों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसे देखते हुए जयपुर मेट्रो प्रशासन ने मेट्रो के फेरों की संख्या बढ़ाकर 218 कर दी है। अंतिम मेट्रो ट्रेन का संचालन मानसरोवर से रात 1 बजे और बड़ी चौपड़ से रात 1:10 तक किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को नई दिशा देती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज पुंछरी के लौटा पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। उन्होंने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निष्काम कर्म करने, अन्याय का प्रतिकार करने तथा लोक कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहने का भगवान श्री कृष्ण का संदेश हर युग में प्रासंगिक है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को आत्मसात कर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के निर्माण में योगदान दें। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। धौलपुर से तेज बारिश के समाचार हैं। सवाई माधोपुर और कोटपुतली बहरोड में भी कल देर रात से ही रुक रुक कर हल्की बरसात का दौर बना हुआ है। इससे पहले कल 7 शहरों में 1 इंच से ज्यादा बरसात हुई। सबसे ज्यादा बारिश भरतपुर के उज्जैन में 54 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चित्तौड़गढ़, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भी बरसात हुई। डीग, कामा, नगर, धौलपुर और करौली सहित कुछ अन्य शहरों में 1 या 1 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर पूर्वी राजस्थान में आगामी 4 दिन तक जारी रह सकता है। विभाग ने आज 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
2: अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आज 5 और 6 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं पे तेज और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इस दौरान भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर कोटा संभाग के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अभी भी अगले 1 सप्ताह के दौरान कमजोर मानसून परिस्थितियां रहेंगी। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में भी अगले 3-4 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज नगर निकाय आम चुनाव में घोषित प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के जरिए उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी, आज 19 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना।

0: तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: जिन्हें खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट, इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
5: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, आइए सुनते हैं अगला गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
0: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धंधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
0: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
0: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए
2: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने एआई से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें एआई के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए
2: जी।
0: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की
2: जी।
0: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
2: जी,
0: आज का क्या कार्यक्रम है?
2: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
0: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
2: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाईं, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
2: जी,
0: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
2: जी,
0: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
2: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की
0: जी। श्रोताओं जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
2: जी,
0: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
2: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
0: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
2: जी।
0: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
2: तो वे भारत क्यों आए?
0: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
2: जी,
0: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
2: श्रोता, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
0: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
2: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में।
0: जी देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की।
2: जी
0: तो उन्होंने यानी सत्यानंद जी ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए।
2: जी
0: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
2: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
0: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
2: जी
0: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया एक व्यक्ति का दूरदर्शी

0: लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें यानी सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
1: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओं, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
0: जी हाँ बिमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
1: जी,
0: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
1: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे, उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
0: जी जरूर।
1: श्रोताओं, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
0: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं। तो इसीलिए
1: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें, यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
0: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं, तो वहाँ के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
1: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरिधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनके कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है। मेरे

श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो, अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है बिटिया, शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का शिकार नहीं करने दूंगी।
3: भाई बता दूंगा ना बेटी।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
3: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
2: सच पापा, ये है मेरा दूल्हा।
3: सच्ची भाई?
2: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ, लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद न आता था।
2: उदाबाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र

0: अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सर तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा। दासी दासी
1: जी जी जी राणा जी महाराज,
0: जाओ ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद चरणामृत।

0: जी महाराज।
1: जाओ, जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: गिरत गोपाल का चरणामृत।
0: रानी सा की जय हो।
2: आओ सखी, भीतर आओ।
0: जी, वो
2: क्या हुआ सखी, तनिक चिंतित सी लग रही हो।
0: वो कुछ नहीं।
2: कहो ना सखी, क्या बात है।
0: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
2: क्या, मेरे कान्हा का प्रसाद?
0: पर हमें तनिक शंका होती है।
2: दो हमें, हम अभी पियेंगे।
0: रुकिए रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या मालूम विष्णुत्व।
3: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर होनी हो।

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या।
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: आह हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही है तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
0: जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
6: ऐसे पैदल कहाँ जा रही है रानी सा।
0: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
8: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर।
0: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा।
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
0: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहाँ रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु

0: गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
1: हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं।
2: क्या सच? गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
3: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
2: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरि इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रुई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं, गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती।

0: मीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती है।

0: सुंदर, मेरा भाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
1: कितनी मधुर आवाज।
2: हाँ।
1: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
2: क्या?
3: हाँ, पर वो गई नहीं।
0: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
4: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
1: तो क्या हमारी मीराबाई चली जाएंगी?
3: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
0: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा।
5: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठ पूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
6: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।

0: খাও।
1: তুম ভি লোগ খাও মিঠাই, ये लो तुम भी लो।
2: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
3: मैं भी
4: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
1: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
5: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
6: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
1: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
6: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
1: सबको बांटते हैं और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
6: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
2: हाँ, ये बात तो ठीक है,
6: हो गई दुगनी।
4: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
1: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
6: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
1: हाँ, 60 किलोग्राम है।
2: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
1: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
4: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
2: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
7: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो
1: पता है हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
8: 300 किलोग्राम
6: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती
7: और चीटी की मम्मी उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
2: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
1: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो तुम छोटे डायनासोर के बाद हम तो मिठाई खाते हैं।
2: हाँ, कहीं ये 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
9: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: दोस्तों विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, देखते हैं ये पहला कॉल कहाँ से आया है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
0: एमपी कहाँ से, कौन सी जगह से? एमपी के
1: मैहर से बात कर रहा
0: हूँ। मैहर से? भाई मैहर तो तीर्थ स्थल है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ती थी, तो कोई अभी सड़क वगैरह बन गई, व्यवस्था हो गई कि आसानी से आप चढ़ सके?
1: जी जी जी मैम, अभी तो आसानी से दर्शन करने के लिए आते हैं, बाकी सुविधा तो पूरी तरह से हो गई है मैम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी फिल्म इतिहास सुनवा दीजिएगा, वो गाने के बोल है जुदा अपने दिलवर से होने लगे।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: है जिंदगी में, यही तो फलसफा है जिंदगी का।
1: ओके मैडम,
0: ठीक है, तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें फोन किया। तो अभी आप बातचीत कर रहे हैं खत्म, आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काशान पोस्ट औरंगाबाद जिला काशगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साक्य बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह
1: साक्य?
0: साक्य, अच्छा। बताइए रूप सिंह जी, क्या हाल है और अपने काशगंज है उस गांव के बारे में भी बताइए।
1: हमारा गांव तो एक देहाती एरिया में है और खेती बाड़ी करता हूँ मैं।
0: खेती बाड़ी में कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
1: सभी तरह की उपजती है, जैसे बाजरा है, धान है, मक्का है, आलू है। जी,
0: तो आप
1: धान और मूंगफली की खेती लगी हुई है।
0: अच्छा, बढ़िया। तो व्यापार भी करते हैं आप?
1: व्यापार नहीं करते हैं अभी।
0: ओके, सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है।
1: जी जी जी
0: जी, बताइए, गानों के शौकीन हैं, गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
1: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, मोहम्मद रफी है, मुकेश हैं, किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे।
0: जी जी, इन गायक गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा। बताइए फिर कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है जीने की राह।
0: जीने की राह
1: जी, और गाने के बोल हैं, एक बंजारा गाय जीवन के गीत सुनाए।
0: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने। और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना।
1: जी बिल्कुल
0: जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जो सुनता है आकाशवाणी मुंबई वो अपनी किस्मत में नाच करता है।
0: क्या बात है, और आपकी आवाज सुनते ही विविध भारती के लोग नाच करते हैं। बताइए अपना नाम और जगह का नाम। वैसे आवाज तो पहचान चुकी हूँ मैं।
1: जी हसीना जी मंसूरी बोल रही मैडम, पालदा नाका इंदौर से, और आपसे बहुत सालों के बाद बात हो रही लग रही है।
0: हमारी आपकी बात हुई थी हेलो सहेली प्रोग्राम में और हेलो फरमाइश में भी। बताइए अपने बारे में और इंदौर के बारे में, क्या कर रही हैं इन दिनों आप?
1: इंदौर तो बारिश थोड़ी कम हो रही है मैडम, मगर अच्छी है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मगर बारिश होना चाहिए।
0: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, फसलें सूख
1: पानी
0: जाएंगी।
1: कमी अभी इस साल भी बहुत कमी थी पानी की, और अभी तो बारिश हुई नहीं, तो फिर अगले साल क्या पता क्या होगा। नहीं,
0: जी, तो पानी की बचत के लिए आप कुछ करती हैं निजी स्तर पर?
1: मैं तो पानी की बचत इस तरह से करती हूँ, अगर कपड़े धोना रहता तो बाल्टी में पानी निचोड़ के उसको ही इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन भी मांजते हैं तो बर्तन में ये टब में पानी लेके बर्तन मांजते ही ज्यादा व्यस्त धुले नहीं, नल के नीचे डायरेक्ट नहीं बर्तन धोते, और नल के नीचे धोना ही पड़ता, बहुत मद्दा करके धोते हैं, आराम से बर्तन धोते, और कहीं पर भी रास्ते में जाते हैं नल खुला दिखता है तुरंत उसको बंद करते हैं, और घर
0: जी
1: में भी कहीं कोई पानी ढोलता रहता तो बहुत गुस्सा आती, चिल्ला देते हम लोग।
0: जी बिल्कुल, और पानी के एकत्रीकरण के लिए भी मुहिम चलानी चाहिए मिलजुल कर। और आपका काम काज बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा, पर अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही तो जा नहीं रहे मैडम, हम बुखार आ गया था और आवाज भी ऐसी हो रही, बहुत मुश्किल से निकल रहा।
0: आवाज तो अच्छी खासी आपकी आ रही है, बढ़िया। तो आवाज में तो कोई समस्या नहीं दिख रही है, आपकी आवाज बढ़िया आ रही है।
1: चलो ठीक है, शुक्रिया, बढ़िया आ रही।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनवाए?
1: मैडम फिल्म का नाम है जाने मन, और गाने के बोल है आएगी आएगी आएगी किसी को हमारी याद आएगी, मेरा मन कहता है प्यासे जीवन।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगाफाटा, तालुका कळमनुरी, जिल्ला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी।
0: पांडुरंग जी बताइए, क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक है। हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगा फाटा की।
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते हैं तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी,
1: अरे
0: क्या खासियत है खिचड़ी की?
1: तुम्हार को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे, बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे खिचड़ी
0: जी जी जरूर।
1: का। खासियत
0: हाँ तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की? वैसे तो दाल चावल।
1: बोले तो मसूर मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है, गरम मसाला।
0: अच्छा जी जी
1: हाँ
0: तो किसी विशेष दिन बनती है
1: हाँ
0: क्या ये खिचड़ी की, रोज खाई जाती
1: नहीं, विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगा फाटा, बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ये प्रसिद्ध है।
0: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वाद भोजन नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है, तो
1: हाँ
0: है ना, कहा जाता है कि
1: हाँ
0: सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए। पर
1: हाँ नाश्ते में खिचड़ी मिलती, खिचड़ी और
0: हाँ
1: भजिया मिलता है
0: तो बना भी
1: वारंगी फाट
0: लेते,
1: में।
0: आप बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन हैं?
1: नहीं, बना लेते नहीं, हम देते हैं ग्राहक को।
0: अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
1: हाँ, होटल है वारंगा
0: अच्छा,
1: फाटा में, होटल है।
0: क्या बात है। अब देखिए, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगा फाटा जाने का। वैसे
1: कभी भी मिलेगा खिचड़ी
0: जी
1: नाश्ता और खुश हो जाएंगे
0: जी
1: खाने के बाद।
0: वैसे जिस शहर में जाए, जिस जगह पे, वहां की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
1: हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, अकोला नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है, और हर तरफ से गाड़ी आए तो हमारे गांव से ही जाते हैं।
0: अच्छा, क्या बात है भाई, चलिए बड़ा अच्छा लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है इस समय?
1: गाना सुना है, रोटी कपड़ा मकान में का
0: हाँ
1: महंगाई।

0: मार गई।
1: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।
2: उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई।

0: हेलो फरमाइश।
1: न जाने ये नजर क्यों उदास रहती है, न जाने से किसकी तलाश रहती है, ये जान के भी किस्मत में हमारी के फोन कॉल लगे या ना लगे, मैडम जी हमें फिर भी फोन लगने की आस रहती है।
0: क्या बात है, और हमें भी आस
1: मैडम जी
0: रहती है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे
1: बिरयानी
0: हैं ये बताइएगा, और हम आपके जो आपने शुरुआत की उसके जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आस तो हमें भी रहती है कि हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाए और हमारी बातचीत हो जाए। कहिए
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: सतीश गुलियानी
1: जी,
0: जी, तो बताइए
1: जलंधर
0: वहां के बारे में, जलंधर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: में जानकारी मैडम सबसे बढ़िया, यहाँ देवी तालाब मंदिर है हमारी माता जी का, जिनके सहारे हम जीते हैं। बहुत बढ़िया पुराना मंदिर है ये, बहुत सब सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है।
0: क्या
1: बाकी
0: बात।
1: घूमने फिरने बच्चों के लिए वंडरलैंड है, बहुत बहुत कुछ है मैडम यहाँ देखने को। नान खाने को बहुत अच्छे हैं यहाँ,
0: क्या खाने को?
1: छोले छोले पूरी,
0: अच्छा
1: छोले
0: अच्छा
1: भटूरे जो पंजाबी खाते हैं जी।
0: छोले भटूरे तो वैसे भी पंजाब के बहुत मशहूर होते हैं जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ
1: हाँ जी हाँ
0: जी,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बताइए वहां के थोड़े कल्चर के बारे में बताइए। पंजाब का जो लोक संगीत है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोक धुनों पर आधारित पंजाबी गाने आजकल फिल्मों में भी शामिल किए जा रहे हैं, और बहुत सारे फिल्मी
1: हाँ
0: गीत
1: जी
0: में
1: हाँ जी
0: पंजाबी
1: बिल्कुल
0: शब्द
1: मैडम,
0: होते हैं।
1: पंजाबी जैसे जैसे ये एक लाइन है,
0: हाँ
1: ओ पेके जान वाली ए हाय नी किन्ना, ओए होय नी किन्ना, हाय नी किन्ना चीर लाएंगी, ये गाना पंजाबी है जी हमारा,
0: क्या बात है भाई, बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया।
1: बहुत चलता है।
0: हाँ जी, तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, और वहां के गायक हैं जो बहुत

0: मशहूर हुए थे, याद है क्या?
1: सारे गायक सारे मशहूर हैं यहाँ पे, हम भी मशहूर हैं मैडम यहाँ पे हैं, ऐसी
0: बात नहीं। अच्छा, आप किस लिए मशहूर है भाई, बताइए, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो।
1: हम रेडियो के लिए मशहूर हैं, जो कि जब प्रोग्राम चलता है ना,
0: हाँ,
1: तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर प्रोग्राम में लग जाता है, वाह भाई क्या बात है।
1: जी जी जी।
0: और अपने बारे में बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है।
0: अच्छा,
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो, सैर करो,
0: बिल्कुल,
1: और सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो।
0: बिल्कुल, तो आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अष्टम बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है।
0: अच्छा, ओहो।
1: मैडम मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए।
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम, किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया,
1: हाँ जी,
0: आपकी तो आवाज भी अच्छी कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त ने अपन के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है।
0: जी जी जी,
1: बिल्कुल मैडम, यहाँ वहाँ पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: कब किस्मत बदल दे। और देखो, मैंने वहाँ ऐसा देखा है कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में, वापस नहीं जाएंगे।
0: जी, बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल,
1: इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी
0: जी
1: शूटिंग में जाता था, मुझे उसका काम मिला था, लाइट मैन का।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया।
1: लेकिन मुझे मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेवर वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
0: अच्छा, वाह।
1: तो फिर मैं मिल गया था जी वीरू देवगन जी के, अजय देवगन जी के पिताजी हैं, वीरू देवगन के पिताजी हैं, उनके साथ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो बात कहा सुनी हो गई एक दिन रात को जरा सी बात पे। मैं बिना बताया उनके कमरे में चला गया, उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
0: अच्छा,
1: बस बाहर आ गया, मुझे मूड खराब हो गया। मैंने कहा या तो यहाँ पे मेरा होटल था, उस टाइम 10-10 वर्कर काम करते थे। तो मैं इसी गुमान में था कि यहाँ मेरा इतना बड़ा होटल है, 10 वर्कर काम करते हैं, ये वहाँ मुझे झिड़के मार रहे हैं। लेकिन वो झिड़के उनकी प्यार वाली थी। अगर सह जाता तो आज मैं कामयाब होता।
0: इसमें दो बातें हैं, कई बार क्या होता है, बड़ों की डांट आपके लिए बहुत मायने रखती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार आपका जब सेल्फ रिस्पेक्ट चोटिल होता है तो आप वहां नहीं रहना चाहते हैं।
1: जी जी,
0: तो ये
1: जी,
0: आपने जी, अपने आप चुना। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्में देखी हैं धर्मेंद्र जी की जो बहुत पसंद?
1: सारी फिल्म देखी है मैडम, सारी फिल्म देखी है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं लाला, बहुत फिल्में देखी है मैडम, मैंने बहुत पिक्चर देखी है, क्या क्या नाम बताऊंगा इनका।
0: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: इज्जत फिल्म का गाना सुना दो जी, ये दिल आकाशवाणी में ना लगता नहीं, हम क्या करें।
0: अच्छी बात है जी, इज्जत फिल्म का गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया और इतनी सारी बातें साझा की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुना रहे इज्जत फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते मैडम जी,
0: नमस्ते जी।
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन मास्टर महोदय बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी मोहन लाल देवांगन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बहुत ही पुराने श्रोता हैं आप तो।
1: जी हाँ जी हाँ, देखिये मैं विविध भारती का बहुत दीवाना हूँ और मैं बता दूँ कि मेरे परिवार भी वैसे दीवाना है।
0: जी, ये दीवानापन हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामना है और हमारी यही कोशिश भी रहेगी कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बनी रहे ताकि आप सभी का दीवानापन जारी रहे।
1: जी, बिल्कुल
0: अब
1: बिल्कुल, बहुत बहुत
0: बताइए
1: धन्यवाद मैडम जी। ऐसा
0: क्या काम काज है
1: है, हाँ
0: आपका, अब हमारे श्रोताओं को बताइए, जो नए श्रोता हैं वो भी आपके बारे में
1: जी
0: जाने।
1: जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं टेलरिंग शॉप है मेरा करूँ आप रायपुर में मोहन जय के नाम से है, और मेरा बेटा भूपेश देवांगन और तुषार देवांगन ने फैशन डिजाइनर है,
0: अच्छी बात है,
1: और
0: क्या बात है।
1: हम लोग साथ में मिलकर सब ये करते रहते हैं। और उसके बाद जो है कि देखिए मेरा बेटा जो फैशन डिजाइनिंग किया है, एक जो दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है,
0: जी,
1: तो वो सब हम एक साथ में सब काम करते रहते हैं। और मेरा एक और दुकान यहाँ पर शोरूम बड़ा बनते जा रहा है, बनने जा रहा है, मतलब बन के लगभग तैयार होने पर है, हो जाएगा इस महीने में।
0: जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, शोरूम भी तैयार हो गया, तो ये आपकी मेहनत का कमाल है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी होगी कि वो मेहनती हैं
1: जी, बिल्कुल
0: और उस
1: बिल्कुल,
0: आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो नए बच्चों को भी गानों से जोड़ रखा है, रेडियो से जोड़ रखा है आपने।
1: वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सुनते हैं मैडम जी। सुबह
0: अच्छा।
1: तो वर्कशॉप में रहते हैं तो कोई रेडियो चलता रहता है, सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और रहते रात को 11 बजे बंद होता है, टीवी देखते रहते हैं लेकिन रेडियो बंद नहीं होता।
0: ये बात बहुत अच्छी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पुराने गानों से और पुरानी परंपरा से, पुरानी विरासत से जोड़ के रखना जरूरी है। तो अब
1: जी,
0: बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी।
1: देखिए मैडम जी इस समय देखिए मेरा जन्मदिन होता है मोहनलाल देवांगन के नाम होता है मोहन मुरारी, लेकिन अब ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी है। मैं सभी श्रोताओं को, आप विविध भारती परिवार को सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
0: और कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात चले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण कर्म का संदेश देते थे, लेकिन कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। एक बाल रूप है, उनका सखा रूप है और एक ऐसा रूप है जो दर्शन सिखाता है। आपको कौन सा वाला रूप पसंद आता है श्री कृष्ण का?
1: मुझे तो उसका बचपना रूप बहुत अच्छा लगता है,
0: बाल रूप।
1: बाल रूप बहुत बहुत अच्छा लगता है, और उनका जो बाल रूप में हर एक पास में नक्शा जो होता है ना वो बहुत ही
0: नटखट
1: अच्छा
0: रूप।
1: लगता है मैडम जी।
0: जी, उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने। कभी पढ़िए सूर की पद रचना, उन्होंने एक जगह लिखा है, किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरि बे धावत। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये रचना उन्होंने की है। तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण का बाल रूप सामने आ गया है। कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: मैं गीत चुना हूँ फिल्म खुद्दार का, और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और उसका बोल है, मच गया सुर सारी नगेरी रे, आया भी रसिका बाका संभाल तेरी जगेरी रे।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: खलील अहमद
0: जी खलील जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म है पगला कहीं का और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ये गाना सुनना चाहिए।
0: जी अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
1: हम तो रिटायरमेंट है, अभी घर में है फिलहाल।
0: अच्छा, क्या काम काज करते थे?
1: हम तो ईट जुड़ाई का काम करते थे।
0: अच्छा, तो भाई ये तो बहुत बड़ा काम है। ईंट अगर ना हो तो घर कैसे बने? घर का निर्माण करना है तो ईंट बनाना ही पड़ेगा।
1: जी,
0: जी तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। तुम

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश मैम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत हिराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ मैम।
0: आपका शुभ नाम?
1: बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बाबूलाल जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: क्या सैलून की दुकान है मैम
0: जी, और भोपाल शहर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे?
1: भोपाल अच्छा शहर है मैम जी, तालाब वगैरह है देखने के लिए, अच्छे है जगह बने हैं बढ़िया है। कमला पार्क है
0: जी, और गाना किस तरह का पसंद करते हैं? पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है आपको?
1: पुराने गाने मैम, पुराने गाने।
0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैम सुनेंगे हम दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये बहना।
0: बेहतरीन गाना चुना है आपने, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: ठीक है। हेलो,
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा गांव से मोतीराम पिंगले बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मोतीराम जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए जरा, और अपने बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: एक कस्बा है मैडम, उतना कोई खास नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरस्वती माता का एक टेम्पल है। यहाँ
0: हाँ
1: पर काफी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मैडम दर्शन करने के लिए।
0: लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: लोग अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सेफ एरिया है मैडम हमारा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तो
1: हाँ
0: खास हो गया ना
1: मैडम,
0: आपका शहर। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं, मतलब लड़कियाँ पढ़ने
1: कोशिश
0: लिखने
1: में
0: जाती?
1: मैडम बहुत आगे है मैडम।
0: क्या बात है ये।
1: यहाँ पर SSC या इंटरमीडिएट जब एग्जाम होते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़कियां पास होती है मैडम।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संगम फिल्म का मैडम, मुकेश का गाना, राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया, ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही तेरी मंजिल है मजबूत।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।
1: मैम एक एक एक रिक्वेस्ट है मैडम, क्या मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ मैम?
0: जरूर जरूर सुनाइए।
1: ओ महबूबा, ओ महबूबा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनमर्ग से, मैं आपको नीमी श्रोता लतीफ अहमद रैना
0: सोनमर्ग से बोल रहे हैं। सोनमर्ग तो भाई पर्यटकों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती है।
1: हाँ हाँ, यहाँ तो पर्यटक हर लगभग 1500 से ज्यादा ज्यादा एक दिन में आते हैं।
0: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम।
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी है ना, बड़गामा के साइड में दूध
0: जी,
1: पथरी।
0: तो इस समय वहाँ पर मौसम कैसा है? ठंडा है या नॉर्मल है?
1: मैं नहीं उतना गर्मी, नहीं उतना ठंडी,
0: जी,
1: नॉर्मल।
0: तो आपका क्या काम
1: हाँ
0: है?
1: जी, बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ
0: वहाँ पर
1: जी।
0: खेत के लिए जब खेत में काम करते हो तो किस तरह की फसल उपजती है, मतलब वहाँ की पैदावार कैसी है?
1: पैदावार तो बहुत अच्छी, यहाँ इस साल तो यहाँ बारिश की वजह से बहुत कम फसल उगाया है।
0: कौन सी फसल
1: हाँ,
0: उपजती है ज्यादातर?
1: यहाँ पे ज्यादा और धान और मक्का एक ही फसल बनते हैं ना साल में यहाँ पे।
0: अच्छा, बर्फ गिरती है तो
1: यहाँ
0: आप
1: तीन
0: लोगों
1: फुट
0: को बड़ी परेशानी होती होगी, है ना?
1: हाँ बहुत परेशानी है, 3 फुट कभी 4 फुट ऐसा ऐसा बारिश आता है, बर्फ आता है यहाँ पे।
0: जम जाता है बर्फ, और जो बाहर से घूमने जाते हैं उन्हें बर्फ बहुत ही रोमांचित करती है और बर्फ देखने के लिए लोग जाते हैं।
1: वो सोनामर्ग में तो लगभग 7-8 महीने तो बर्फ ही रहता है।
0: जी, तो
1: हाँ
0: बताइए, तो कश्मीर की वादियों में कौन सा गाना आपके लिए भेजा जाए, आपकी पसंद का?
1: फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, इसको दूसरे गाड़े कोई भी सुनाइए। हाँ
0: तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया इतनी दूर से और कश्मीर के बारे में इतनी सारी जानकारी भी दी, और आपको अब सुनवा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: कार्यक्रम में शामिल हुए, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक कृपया फोन न करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इसमें सहभाग का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल करते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2870288, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर एक और है, इसे भी आप नोट कर लें, 4002466 2, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 2867-0288। इसके अलावा एक नंबर और, 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग सौरभ घारू का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश, विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11 बजे हैं। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से कुछ ही देर में आप सुनेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह से निकाय चुनावों की तैयारी पर सजीव प्रसारण।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माइक पर मुखिया। अभी राजस्थान में 309 नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। मतदान 9 और 11 सितंबर 2026 को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा और मतगणना 14 सितंबर को होगी। इन चुनावों में 10,245 पार्षद पदों के लिए मतदान होना है। राजस्थान में पंचायतों और नगरीय निकायों के आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए आज हमने स्टूडियो में एक ऐसी प्रशासनिक शख्सियत को आमंत्रित किया है जिन्होंने राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे और जन विकास में दशकों तक अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। इतिहास में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त श्री राजेश्वर सिंह जी ने अपने दीर्घ प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान जयपुर और जालौर के जिला कलेक्टर, जयपुर, भरतपुर व उदयपुर के संभागीय आयुक्त तथा ग्रामीण विकास व पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव के शीर्ष पदों को सुशोभित किया है। इसके साथ ही आप राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव की एक लंबी यात्रा और जनसेवा के प्रति अनूठे समर्पण के साथ आइए स्वागत करते हैं श्री राजेश्वर सिंह जी का। सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: जी।

0: हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए हम बता दें, बातचीत का सिलसिला हम सर के साथ शुरू करें। श्रोताओं को बता दें कि अगर आप भी मतदान संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो स्टूडियो में मौजूद राज्य चुनाव आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी से बातचीत कर सकते हैं। हमारे फोन लाइन जो है, स्टूडियो नंबर्स हैं, वो हम आपको बताए देते हैं। 0141220060, 0141220700 और 0141220800, और साथ ही आप फोन कर सकते हैं 0141236477। चलिए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, नगर निगम और नगर पालिका, नगर परिषद जैसे स्थायी निकाय सीधे रोजमर्रा के जीवन से लोगों के जुड़ाव में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश में इस तरह के नगर निकायों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी नजर में?
1: देखिए, ऐसा है कि जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो नगर पालिकाएं हों या पंचायती राज संस्थाएं हों,
0: जी,
1: वो एक तरह से लोकतंत्र की आधारशिला है और उनके माध्यम से जनसाधारण को एक शासन प्रशासन में प्रत्यक्ष सहभागिता का सुअवसर प्राप्त होता है
0: जी।
1: और स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनको स्थानीय स्तर पर ही निपटाने में मदद मिलती है, ताकि जो राज्य और केंद्र सरकारें हैं वो ज्यादा बड़े मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके
0: जी।
1: तो इस लिहाज से जो है हम ये कह सकते हैं कि ये एक लोकतंत्र का जो है ना आधार स्थली है और जो बेसिक ढांचा है ये भारतीय लोकतंत्र का।
0: जी बिल्कुल सही बात। अब आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या होती है, आम मतदाता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर और काम को आप किस तरह सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को समझा सकते हैं?
1: देखिए, जो संसद और विधानसभा है उसके चुनाव के लिए तो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, और राज्य में जो नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 243 के तहत जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त पद की व्यवस्था की गई है
0: जी।
1: ये एक सदस्यीय आयोग है और जो राज्य चुनाव आयोग और आयुक्त में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही संस्था है। और इसका जो मुख्य काम यह है कि जो निर्धारित समयावधि है उसमें अपन जो है नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ये संपन्न करा दें
0: जी। 38,000 कैंडिडेट्स जो हैं चुनाव जीतने की दौड़ में शामिल हैं, 309 निकायों के लिए चुनाव हो रहे हैं, औसतन 100 से ज्यादा प्रत्याशी एक सीट के लिए दावेदार हैं और चुनाव चिन्हों का आज आवंटन भी प्रत्याशियों को हो जाएगा। तो ये जो चुनाव चिन्ह होता है सर, कितना निकायों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये चुनाव चिन्ह, जो हमारे प्रत्याशी रहते हैं, मतदाता जो है कैसे पहचान सकते हैं प्रत्याशियों को, उसकी पहचान माने जाते हैं चुनाव चिन्ह?
1: देखिए, ऐसा है कि हमने जो है जो नगर पालिका सदस्य हैं उनके लिए 40 मुक्त प्रतीक इसकी व्यवस्था कर रखी है
0: जी,
1: और वो सिंबल जो है वो प्रत्याशी अपने इच्छा अनुसार जो है चुन सकता है, जो निर्दलीय प्रत्याशी है
0: जी।
1: इसके अलावा हमारे 8 जो है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जिसमें 6 तो राष्ट्रीय दल हैं और 2 राज्य स्तरीय दल हैं
0: जी।
1: तो उनके जो अपने चुनाव चिन्ह जो है वो आरक्षित हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं उनके कैंडिडेट्स के नाम के प्रथम अक्षर से जो है उसको हम संयोजित करते हैं और अल्फाबेटिकली हम उसको अरेंज करते हैं मतपत्र में, और उसके बाद जो ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं ये लोग मुक्त प्रतीक का चयन करते हैं और उसमें से उनको जो है अरेंज किया जाता है मतपत्र पर। और दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए टेलीफोन है एक मुक्त प्रतीक है, तो अगर 2 सदस्य जो है या 2 कैंडिडेट जो है वो एक ही चिन्ह चाहते हैं तो उनके बीच में लॉटरी निकाली जाती है, तो इस तरह से इसका फैसला होता है
0: जी। जिसके हाथ पे पहले वो निशाना आया लॉटरी के जरिए उसी को आवंटित कर दिया जाता है। अगला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, निकाय चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की किस तरीके से तैयारियां हैं सर, ये जानना चाहेंगे आपसे।
1: देखिए, ऐसा है कि जो हमारी मशीनरी है वो तो जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ही है, हम उन

0: मतलब जो जितने राजस्थान के 41 जो है जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हैं वो राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी है
1: जी।
0: और फिर 309 जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए अलग से हम लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर की व्यवस्था कर रखी है जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं। तो ये तो ढांचा है जिसके माध्यम से चुनाव होता है। इसके बाद जो है मतदान केंद्र है तो पूरे राजस्थान में जो नगरीय क्षेत्र है उसमें 16,482 मतदान केंद्र है। तो हर मतदान केंद्र के लिए हम एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की और कुछ पोलिंग ऑफिसर्स की व्यवस्था करते हैं
1: जी।
0: तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो पूरे उस मतदान प्रक्रिया के इंचार्ज होते हैं। तो वो जो है

0: मतदान प्रक्रिया के इंचार्ज होते हैं, तो वो जो है वहां पर अपने जो ईवीएम वगैरह है वो लेकर के जाएंगे और सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेंगे
1: जी।
0: उसमें जो मतदान अधिकारी हैं वो उनका सहयोग करते हैं। बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर केंद्र पर जो है वो पुलिस बल की व्यवस्था होती है। इसके अलावा जो है हमारे सारे जोनल और एरिया मजिस्ट्रेट वो जो है वो निरंतर क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, उनके साथ पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज भी होती हैं। तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है हर जगह कि मुझे लगता है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो जाएंगे
1: जी। कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके
0: जी।
1: कई बार कहा जाता है कि राजनीति और लोकतांत्रिक भागीदारी की शुरुआत स्थानीय स्तर से होती है, क्या निकाय चुनाव युवाओं और नए उम्मीदवारों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने और राजनीति में अपनी भूमिका शुरू करने का एक महत्वपूर्ण अवसर की तरह होते हैं? वो जोरों शोरों से लगे रहते होंगे अपने आप को दिखाने के लिए।
0: यह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बेसिकली क्या है कि 18 साल की उम्र में तो आदमी मतदाता बन जाता है और 21 साल की जो उम्र है उसमें वो पंचायती राज संस्थाओं का और नगरीय निकायों का चुनाव लड़ सकता है
1: जी।
0: तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी, बहुत से लोग तो अध्ययनरत भी हैं, एमए वगैरह की लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड की कर रहे हैं और वो भी जो है इस चुनाव में कैंडिडेट है
1: जी।
0: तो निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए एक तो अवसर है, दूसरे क्या है कि वो अपनी कार्य क्षमता और दक्षता और लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता ये प्रदर्शित करने का एक साधन भी है।
1: बिल्कुल।
0: तो और इसके माध्यम से जो है वो जो संसदीय और विधानसभाई राजनीति है उसमें उनकी एंट्री हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है और निश्चित रूप से जितने ज्यादा युवा होंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि वो उत्साही और ऊर्जावान भी होंगे अपने उम्र के हिसाब से, और वो निश्चित रूप से अगर उनको मौका मिलता है तो वो अपनी भागीदारी निभाएंगे
1: जी। श्रोता जो है, हमने शुरुआत की जब हमारे कार्यक्रम की तो श्रोताओं से कहा था कि आपसे बातचीत कर सकते हैं, तो एक बार फोन कॉल लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या सवाल है उनके आपके लिए। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
2: मोहम्मद रफीद।
1: हाँ जी मोहम्मद रफीद जी, अपना सवाल करें।
2: मैं आज किस विषय से बात चल रहा है?
1: माफ कीजिएगा। अच्छा, आप अभी जानते नहीं है टॉपिक, ऐसा कीजिए आप हमारा प्रोग्राम जो है वो सुनिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस चीज पर हमारी जो है चर्चा चल रही है। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, हेलो,
2: हाँ, ये पंचायत राज से संबंधित कार्यक्रम रेडियो जयपुर।
1: हाँ जी, हाँ बोली।
2: मेरा
1: अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम रणविजय।
1: रणविजय जी, अपना सवाल करें।
2: मेरा सवाल ये है मैडम कि ये जो पंचायत राज का जो कानून भारतीय संविधान है उसमें सिंबल जो है नगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए सिंबल प्रदान नहीं होता है।
1: अपना प्रश्न थोड़ा सटीक रूप से रखेंगे, स्पष्ट रूप से रखेंगे।
2: कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेल्स यू, राजेश्वर सिंह जी नमस्कार, कि नगर निकाय और पंचायत राज में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहता है।
0: नहीं, इसमें ऐसा है कि जो हमारे यहाँ राजस्थान पंचायती राज एक्ट और रूल्स बने हुए हैं और म्यूनिसिपल जो
2: है, तो ये राजस्थान का एक्ट भारत के संविधान से अलग है क्या?
0: नहीं, भारत
2: राजस्थान का संविधान भारत के संविधान से अलग चल रहा है?
0: नहीं, भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
2: नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रन बाय नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू दैट देयर कैन नॉट बी नो सिंबल नगर पालिका इन पंचायत राज इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
0: आपकी जानकारी सही नहीं है, उसको दुरुस्त कर लीजिए। जो हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत है उसके जो चुनाव है वो निर्दलीय आधार पर होते हैं, उसके बाद जितने पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव है और नगर पालिका और नगरीय निकायों के चुनाव है वो पार्टी सिंबल के आधार पर भी होते हैं और निर्दलीय आधार पर भी होते हैं, और वो पूरा भारतीय संविधान के अनुरूप है।
1: अगले श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो
3: हेलो,
1: अपना नाम बताएं।
3: मैं सीतू सोनी चौमर सिटी से बात कर रहा हूँ।
1: सीतू जी, अपना सवाल करें।
3: मेरा सवाल सर से ये है कि आपने मतलब रेडियो मतलब

0: चुनाव की बात या फिर चुनाव से रिलेटेड जनता को अवेयर करने के लिए आपने रेडियो क्यों चुना?
1: जी
2: देखिए, ऐसा है कि जो दूरदर्शन और आकाशवाणी है ये लोकप्रिय माध्यम है और बहुत सारे जो दूरदराज के इलाके हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसमें जो लोग जो है आकाशवाणी के निरंतर वो श्रोता है, तो उस लिहाज से जो है अब ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचे और मुख्य रूप से जो रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, दूरदराज के इलाके के लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुंचे और उनके मन में कोई शंका हो तो उसका समाधान हो सके, इसके लिए माध्यम चुना गया।
1: जी लगातार श्रोता जुड़ना चाह रहे और इसी दौरान बीच हम भी आपसे सवाल करना चाहेंगे सर, आज चुनाव प्रचार का एक बड़ा माध्यम सोशल मीडिया भी बन चुका है। कई बार सोशल मीडिया पर गलत खबरें, भ्रामक सूचनाएं और प्रचार सामग्री तेजी से वायरल हो जाती है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर होने वाले चुनाव प्रचार और भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पर किस तरह से नजर रखता है और क्या कार्यवाही करता है?
2: देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका सोशल मीडिया पर जो है अकाउंट बना हुआ है
1: जी।
2: और जो ही इस तरह की कोई भ्रामक स्थिति पैदा होती है
1: जी।
2: तो उसके बारे में हम लोग तुरंत जो है वो स्पष्टीकरण वगैरह जारी कर देते हैं। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग में और जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ 24 आवर्स के लिए कार्यरत जो है वो नियंत्रण कक्ष भी है, तो वहां से भी लोग जो है वो इन भ्रामक सूचनाओं के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, म्यूजिकल ब्रेक, और फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं माइक पर मुखिया कार्यक्रम और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमारे स्टूडियो नंबर डायल कर सकते हैं 01412200600 या फिर 01412200700। इसके अलावा दो फोन लाइन्स और हैं 01412200800 और 01412366677।

0: एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम माइक पर मुखिया में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। और आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप सभी श्रोता अगर बातचीत करना चाहते हैं, मतदान संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो आप स्टूडियो नंबर डायल कर सकते हैं। स्टूडियो नंबर है 01412200600, 01412200700, 01412200800। और इसके अलावा एक और फोन लाइन है 01412366477। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल सर आपसे ये करना चाहेंगे कि मतदान के लिए मतदाता सूची सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इस चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप जो है वो दे दिया गया है। वोटर लिस्ट बनाना चुनौतीपूर्ण रहता है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कई लोग अपने निवास स्थान से दूसरे शहर में बस जाते हैं, तो उनको मतदाता सूची में कैसे अपडेट किया जाता है, कितना चुनौतीपूर्ण ये कार्य रहता है?
1: देखिए, ऐसा है कि जो मतदाता सूची बनाई जाती है
0: जी,
1: तो उसमें आम तौर पर जो उस इलाके में निवास करने वाले लोग हैं उनको शामिल किया जाता है
0: जी।
1: और जो भी 1 जनवरी को 18 साल की उम्र जिसने प्राप्त कर ली उसका वो नाम जुड़वाने के लिए पात्र हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो एब्सेंट शिफ्टेड और डेड वोटर्स हैं उनके नाम हम लोग डिलीट कर देते हैं
0: जी।
1: तो उसके बाद से फिर ये फाइनल जो हमारी मतदाता सूची है वो बन जाती है। और उसमें जो एडिशन डिलीशन का काम है, जो हमारा नॉमिनेशन पेपर जो है लेने का आखिरी दिन था, उस दिन तक जो है हम लोगों ने नगर पालिका में जोड़ा है
0: जी।
1: पंचायतों में इसको हम जो है चुनाव घोषणा तक जोड़ते हैं
0: जी।
1: तो वो निरंतर अपडेट होती रहती है
0: जी। और मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतदान के दिन मतदाताओं को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, साथ ही मतदान केंद्रों पर भीड़ ना हो, मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और हमारे लिसनर्स के जरिए आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं वो सुचारू रूप से, खुद कैसे योगदान दे सकते हैं मतदाता?
1: देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो यह है कि मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, नंबर वन
0: जी।
1: नंबर टू जो है आपके पास जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, और उसके अलावा जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हम लोगों ने अलाउ किया है, जिसमें जैसे मान लीजिए नरेगा कार्ड है, सोशल सिक्योरिटी का कार्ड है, और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो बहुत सारे जो मतदाता के पास आधार कार्ड है, तो ये सारी चीजें लेकर के आप अपना मतदान कर सकते हैं। मतदाता की मदद के लिए हर मतदान केंद्र के बाहर एक वोटर हेल्प डेस्क, मतदाता सहायता डेस्क का जो है वो प्रावधान किया गया है
0: जी।
1: जो कि स्थानीय बीएलओ वहां पर रहते हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, और प्लस जो स्थानीय कर्मचारी वगैरह होते हैं वो उनकी मदद के लिए उपलब्ध होते हैं। अगर मान लीजिए वो मतदान केंद्र नहीं है मतदाता का, किसी बगल के मतदान केंद्र में जो है उनका वोट पड़ना है, तो वो भी उनको उस दिन गाइडेंस वो दे देंगे। तो कायदे में जो है जैसे लाइन लगा करके मतदान वगैरह किया जाएगा। जो दिव्यांग मतदाता है उनको हम लोगों ने ले आने और ले जाने की व्यवस्था की है
0: जी।
1: और जो बुजुर्ग मतदाता है, तो ये भी युवा मतदाताओं का कर्तव्य है कि वो जो है लाइन में उनको आगे बढ़ाएं। एक तरह से एक नागरिक का कर्तव्य भी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करें और उनको सुविधा प्रदान करें
0: जी। हमारे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमारे श्रोता भी जुड़ना चाह रहे हैं, तो एक सवाल ले लेते हैं श्रोताओं का। हेलो,
2: नमस्कार मैम
0: जी, अपना नाम बताएं। नमस्कार,
2: मैं रिश्ता गोदरा।

0: नेट से बोल रहा हूँ
1: जी, अपना सवाल करें।
0: मैम सर से ये पूछना था, ये जो चुनाव होता है बहुत बढ़िया बात है, पर इसके अंदर ये जो वोट खरीदते हैं लोगों को कैसे देखते हैं, इस तरह से करते हैं, तो फिर लोकतंत्र में तो एक प्रकार से वो साफ सभी से नहीं चुना जाता।
2: देखिए ऐसा है कि ये बहुत ही गलत है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कि जो है जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनकी खरीद फरोख्त की जाए। वैसे तो हम लोगों ने समय जो है बहुत कम दिया है हर गतिविधि के लिए, तो एक तो संभावना जो है काफी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत कम समय है तो लोगों को मैनेज और मैनिपुलेट करने का टाइम नहीं मिलेगा। नंबर दो ये है कि जहां राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त हो जाता है वहां पर भी ऐसी कोई संभावना नहीं होगी, संभावना वही होती है जहां पर कि बहुमत प्राप्त नहीं होता है और उसके बाद जो है वो जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको या निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनको साधने की जब कवायद शुरू होती है तो उसमें इस तरह के जो लोग हैं इस तरह की प्रवृत्तियां जो है वो प्रोत्साहित होती है। मेरा तो आम जनता से यही निवेदन है कि वो इस तरह के जो लोग हैं जो ईमानदार हों, निष्ठावान हों, कर्मठ हों और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हों, ऐसे लोगों को ही वो चुनाव में चुने जिनके भविष्य में बिकने की संभावना नहीं रहे। तो ये जो है आम जनता की जिम्मेदारी इसमें सबसे ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल। निरंतर श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं, एक और फोन कॉल लेते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए। हेलो हेलो
4: हेलो
1: हाँ जी, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए।
4: मेरा नाम हरिमोहन शर्मा है और अम्बावाड़ी जयपुर में रहता हूँ।
1: हाँ जी हरिमोहन शर्मा जी, सवाल कीजिए।
4: मैडम जी, ये मेरा सवाल है कि मैंने वोट मेरे मेरी वाइफ के बच्चे के बच्चे की बहू का वोट दूसरे आई थी शादी हो के उसका तो वोटर आ गया वोट कार्ड, और हमारा वोट कार्ड प्रिंटिंग में दिखा रहा है पिछले 4 महीने से
1: जी।
2: देखिए ऐसा है कि जो मतदाता सूची है उसमें नाम होना चाहिए और उसके बाद आप जो है आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका 11 तरह के डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है, तो उनके आधार पर आप वोट डाल सकते हैं।
1: हेलो हेलो
3: हेलो
1: हाँ जी जी, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए।
3: मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है, मैं दूधवाड़ जिले से बोल रहा हूँ।
1: जी मोहम्मद सिकंदर जी, सवाल कीजिए।
3: सर से मेरा सवाल है कि मैं विकलांग हूँ और जब वोट देने के लिए जाता हूँ तो वहाँ जो अधिकारी होते हैं वो वोट खुद देते हैं, तो उसमें ये वोट क्यों नहीं दे सकता या मेरा गार्जियन क्यों नहीं देख सकता, और मैं जिद करता हूँ तो कहते हैं कि आप बाहर चले जाइए
1: जी,
3: इसका कोई उपाय बताइए सर।
2: क्या है
1: विकलांग है
2: जी? नहीं, इस बार हम लोगों ने जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको ले आने और ले जाने के लिए व्यवस्था की है, इसका बाकायदा सर्वेक्षण कराया हुआ है और वहां पर व्हीलचेयर वगैरह मौजूद रहेगी केंद्र पर, और जो आपके मदद के लिए जो स्थानीय कर्मचारी हैं वो उपलब्ध रहेंगे, तो वो आराम से ले जाकर के आपको मतदान करवा देंगे, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं
1: है। एक और कॉल। हेलो हेलो हेलो। चलिए श्रोताओं के फोन कॉल्स जो हैं लगातार आ रहे हैं, लेकिन एक श्रोता जुड़े रहते हैं तो दूसरे श्रोता फोन करते रहते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है फोन। सर बात हो रही है इसी बात की कि वोट सुरक्षित रहता है या नहीं रहता है, अभी जो हमारे साथ एक जुड़े थे हमारे श्रोता वो भी उनके मन में भी यही सवाल था, तो मतदाता के मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि उसका वोट सुरक्षित है या नहीं, फर्जी मतदान या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर मतदान जैसी स्थिति को रोकने के लिए आयोग ने क्या इंतजाम किए हैं?
2: देखिए दो बातें हैं, एक तो यह है कि मतदाता सूची में नाम होना चाहिए
1: जी।
2: दूसरा ये है कि जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स में कम से कम एक डॉक्यूमेंट जो है उस आदमी के पास होना चाहिए ताकि उसका जो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है वो एस्टेब्लिश हो सके
1: जी।
2: और तीसरा जो है वहां पर जो प्रत्याशी है या उनके एजेंट हैं वो मौके पर मौजूद रहते हैं
1: जी।
2: तो अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो स्थानीय कर्मचारियों की मदद से जो है वो उसको उस ऑब्जेक्शन को दूर किया जा सकता है
1: जी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतदान करना बेहद जरूरी होता है, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में या ऐसे क्षेत्रों में जहां मतदान प्रतिशत

0: अपेक्षाकृत कम रहता है, तो इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग की ओर से क्या विशेष जागरूकता अभियान या प्रयास किए जा रहे हैं? पिछले निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत कितना रहा था और अब कितना बढ़ने का आसार है?
1: देखिए, ऐसा है कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं उनके मुकाबले स्थानीय निकायों का जो मतदान प्रतिशत है वो कम ही रहता है
0: जी।
1: और ये पहली बार है जब वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सारे जो स्थानीय निकाय हैं उनका चुनाव एक साथ हो रहा है
0: जी।
1: इसके बाद सारी पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव एक साथ होगा
0: जी।
1: तो हम लोगों ने जो है मतदाता जागरूकता अभियान चला रखा है और जो हमारे स्वीप के प्रभारी होते हैं वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होते हैं
0: जी।
1: फिर डिस्ट्रिक्ट स्वीप कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो डिग्री कॉलेज के व्याख्याता वगैरह होते हैं
0: जी।
1: और हर स्कूल कॉलेज में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाया हुआ है जिसमें जो बच्चे हैं वो कैंपस एम्बेसडर होते हैं
0: जी।
1: तो इनके माध्यम से पूरे राजस्थान में रंगोली, मतदाता जागरूकता रैली, वृक्षारोपण अभियान, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब जो है आयोजित किए जा रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि मतदाताओं को उनके मत की कीमत समझाई जाए कि उनके एक मत का क्या महत्व है, उसका लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या योगदान हो सकता है
0: जी।
1: और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मत डालने के लिए प्रेरित किया जाए। इसमें हम युवा पीढ़ी का, स्वयंसेवी संस्थाओं का, राजनीतिक दलों का, सबका पूरा सहयोग ले रहे हैं
0: जी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माइक पर मुखिया, और श्रोता अगर जुड़ना चाहते हैं, मतदान संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो स्टूडियो में जो हमारे स्टूडियो नंबर है उन पर कॉल कर सकते हैं 01412200600, 01412200700, 01412200800 और 01412300647, ये हमारे फोन लाइन्स हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम माइक पर मुखिया में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। लगातार श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं और सवालों का सिलसिला उन्हीं से प्रारंभ करते हैं। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, अपना सवाल करें, नाम बताएं पहले।
1: हाँ, मैं गुड्डू बोल रहा हूँ, खजाने वाले रास्ते से।
0: जी गुड्डू जी, सवाल करिए।
1: मेरा सबसे सवाल ये है कि जो पोलिंग एजेंट बैठते हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सिंबल दिया जाता है, तो उसका उपयोग मतलब चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए? और मतलब मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि वो अपने घर ले जाए या जमा होता है, इस तरह की बात है।
2: नहीं, वो तो
3: जो अपने चुनाव के लिए उनको ऑथराइजेशन लेटर वगैरह है, वो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, तो जमा करने का भी कोई प्रावधान नहीं, वो चाहे तो अपने साथ ले जा सकते।
0: अगला सवाल। हेलो।
4: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए।
4: मैं नागौर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी, अपना नाम बताएं। हेलो,
4: नाम अभी कौन है मैडम?
0: हाँ जी, सवाल कीजिए।
4: मैडम, मेरा सवाल ये है कि हेलो।
0: हाँ जी, सवाल कीजिए, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो।
5: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल करें।
5: मेरा नाम प्रमोद कुमार है।
0: जी प्रमोद जी, सवाल कीजिए।
5: नगर से बोल रहा हूँ
0: जी, अपना सवाल।
5: मेरा सवाल है कि म्युनिसिपल एमएलए के चुनाव में 18 साल की जो उम्र है, वो विधानसभा लोकसभा में भी है क्या?
3: नहीं, विधानसभा लोकसभा में तो जो 25 साल की उम्र के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें जो है वो 21 साल की उम्र के जो मतदाता हैं वो भी प्रत्याशी बन सकते हैं।
0: हेलो। हेलो।
6: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए।
6: पंडित जैन बोल रहा हूँ जयपुर से।
0: जी,
6: मेरा एक सवाल है कि अभी जैसे नगर निगम के चुनाव है जयपुर में, तो उसके अंदर हमने अपना नाम अभी रिसेंटली लिखवाया था और लिस्ट में आ भी गया है, परंतु नाम के अंदर त्रुटियां हैं, हमारा नाम गलत लिखा गया है या पिताजी का नाम गलत लिखा गया है, इस तरह की कुछ त्रुटियां हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें वोट देने से वंचित तो नहीं किया जाएगा, और दूसरा ये था कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम उस त्रुटियों को कैसे ठीक करवा सकते हैं।
3: देखिए, अभी तो जो है जो मतदाता सूची है वो फाइनल हो चुकी है, उसमें शुद्धिकरण का जो प्रावधान था वो नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने की अंतिम तिथि तक था। अब जब ये हो गया है, क्या नाम, फाइनली ये जो है पब्लिश हो चुकी है, तो अभी तो शुद्धिकरण नहीं हो सकता, लेकिन अगर मामूली त्रुटियां हैं तो उसके आधार पर आपको वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता है
0: जी। और आगे के लिए अगर ठीक करना
3: हो, आगे के लिए ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद फिर वो करवा सकते हैं
0: जी। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो।
7: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
7: मैं शेफाली जागीर बोल रही हूँ जयपुर ग्रामीण से।
0: जी शेफाली जी, अपना सवाल करें।
7: मैं से पूछना चाहती हूँ कि जैसे एक सीट पे एक से अधिक कितने उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि 100 से अधिक उम्मीदवारों ने इसमें पर्चा भरा है
0: जी,
7: तो इससे ऐसे समस्या आती है कि वोट बिखराव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कि ऐसे किसी किसी जगह से कि अपनी सेम कास्ट का होता है, लोग उसी को वोट देते हैं, तो एक स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तो इसकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है
0: जी?
3: नहीं, इसमें तो क्या है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का और वोट मतलब चुनाव प्रक्रिया में सहभागिता का प्रत्याशी के रूप में वो अधिकार प्राप्त है, उसको तो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। और लेकिन जो आम जनता है वो अगर अपने विवेक पूर्वक अपने उसका इस्तेमाल करे मताधिकार का, तो निश्चित रूप से जिनको बहुत कम वोट मिलेंगे तो वो भविष्य में जो है वो प्रत्याशी बनने से हतोत्साहित होंगे और चुनाव प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल नहीं हो पाएगी।
0: हेलो,
8: नमस्कार मैम
0: जी।

0: नमस्कार,
1: केबी शर्मा निवेदन कर रहा हूँ जयपुर।
0: जी केबी शर्मा जी, अपना सवाल कीजिए।
1: सर मेरे दो प्रश्न है कि एक तो ये कि आप तो विभिन्न जगहों पे जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पे रहे हुए हैं, तो राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जहाँ की भौगोलिक स्थिति कई मिट्टी के टीले भी है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, तो वहाँ कम से कम दूरी जो मतदाता है उनका एक निश्चित अनुपात चुनाव आयोग की तरफ से कुछ रखा जाता है कि ज्यादा उनको श्रम ना लगाना पड़े अपना मतदान करने के लिए। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि सर आदर्श आचार संहिता का जो एक उल्लेख हमारे निर्वाचन विभाग द्वारा और देश में किया गया है, तो इसकी 100% अक्षर से कैसे पालन जिला मजिस्ट्रेट या ईआरओस के माध्यम से कराई जा सकती है, इसका थोड़ा सा मैं बस आपसे जानकारी चाह रहा हूं।
2: देखिए ऐसा है कि जो आमतौर पर मतदान केंद्र होते हैं वो 1200 की मतदाता संख्या पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, और अगर जो है कहीं पर 1400 से ज्यादा मतदाता हो जाते हैं तो हम लोग वहां एक सहायक मतदान केंद्र की भी व्यवस्था करते हैं। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस चीज का पूरा जो है रखा गया है ध्यान की जो है कम से कम दूरी रहे और ज्यादा से ज्यादा मतदाता वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। दूसरी बात यह है कि जो आपने आचार संहिता की पालना के लिए कहा, तो इसमें हम लोगों ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है, जिला कलेक्टर्स ने भी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है, उनको आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया है। मुख्य रूप से यह है कि इस दौरान जो है जो सरकारी संसाधन है उनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, और जो नई कोई घोषणाएं नहीं की जाएगी, नए कोई विकास कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, और ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे सत्तारूढ़ दल को फायदा मिले। और इस सारी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए हमने भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको जिला पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अगर कहीं भी कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो वो पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराएंगे, और उनके द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर राज्य चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे।
0: जी अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए।
3: नमस्ते मैडम, मागोर से बोल रहा हूँ अभी। कौन?
0: हाँ जी बोलिए, अपना सवाल कीजिए।
3: मैडम मेरा सवाल ये है कि अगर किसी मतदाता को चुनाव संबंधी कोई शिकायत या कोई समस्या है तो वह कहाँ और किस प्रकार शिकायत कर सकता है?
0: जी
2: देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो मतदान केंद्र के बाहर एक मतदाता सहायता डेस्क वोटर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जिस पर जो है बूथ लेवल ऑफिसर भी रहेंगे और उनके साथ स्थानीय कर्मचारी रहेंगे, तो पहला तो वहां पर है। और उसके बाद जो है जो मतदान केंद्र के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, और वहां भी अगर समाधान नहीं हो तो जो उस क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर या जोनल मजिस्ट्रेट हैं तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, और जिला स्तर का जो कंट्रोल रूम है उसे में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
0: अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो
4: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए। सर
4: मैडम मेरा नाम भंवरलाल तंवर है।
0: जी भंवरलाल जी सवाल कीजिए।
4: मैडम मेरा सवाल यह है कि मैं इतिहास वो गए लूँ मैडम, तो जो पहले एमएलए के चुनाव होते थे उस समय तो सिस्टम ये था कि घर पे मतदान कराया गया मेरा, और इस बार ये घर का मतदान इन्होंने बंद कर दिया।
0: जी
4: ऐसा क्यों मैडम?
2: देखिए ऐसा है कि स्थानीय चुनाव में कभी भी इस तरह की व्यवस्था नहीं रही है, ये लोकसभा विधानसभा चुनाव में पिछली बार से ये चालू हुआ है, और संसाधनों की व्यवस्था हो जाएगी तो हम भविष्य में इस तरह की प्रणाली हम लोग भी जो है वो अपनाएंगे। और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने घर से ले आने और ले जाने की व्यवस्था करेंगे, आगे जब कभी चुनाव होंगे तो उसमें आपके सुझाव का भी हम लोग ध्यान रखेंगे।
0: जी अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो हेलो
5: जी मैडम नमस्ते।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
5: मैं सीताराम शर्मा झुंझुनू से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी सीताराम जी अपना सवाल कीजिए।
5: मेरा सवाल ये मैडम, जो मेरा वोटर आईडी कार्ड है उसके नाम में और डीओडी में अंतर है, मतलब बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड के, आधार कार्ड आदि स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो नाम में और डीओडी में डिफरेंस है, उसको सही कैसे करवाएं, मतलब वोटर आईडी?
0: जी
2: देखिए जब मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था उस समय जो है वो सही समय था जब अपन इस तरह की त्रुटियों को दुरुस्त करा सकते थे, और अभी पिछले जो है जब हमारी मतदाता सूची फाइनली जो है पब्लिश हुई तो उस समय भी अपन ये करा सकते थे, अब वो समय बीत चुका है। हालांकि इसके आधार पर जो है हमारे निर्देश हैं कि छोटी मोटी त्रुटियों के आधार पर जो है वो आदमी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाए, और इस चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद जो है आप अपने नाम का शुद्धिकरण या जो भी सूचनाएं हैं उनका शुद्धिकरण करवा सकते हैं।
0: अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो
6: हेलो, हाँ नमस्कार मैम, मैं आलोक सक्सेना बोल रहा हूँ।
0: जी आलोक जी,
6: दृष्टिबाधित मतदाता, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ हमारे बीएलओ चेंज हो गए हैं, अब हमारे कौन से बीएलओ है इसकी जानकारी हम कैसे ले सकते हैं?
2: ये अपने जो क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर हैं नगरीय निकाय के उनके कार्यालय से भी ले सकते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
0: हेलो
7: हेलो,
0: हाँ जी अपना नाम बताएं।
7: जी मैम, मेरा नाम नुमान है।
0: हाँ जी नुमान, अपना सवाल करें।
7: मेरा सवाल है कि चुनाव को सुरक्षित तरीके से कैसे कराया जा सकता है, जैसे कि हमने सुना है कि ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है, तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो तो इसके लिए सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया है?
0: जी
2: इसमें ऐसा है कि जो ईवीएम का रेंडमाइजेशन होता है उसमें हम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं और उनकी उपस्थिति में ही रेंडमाइजेशन होता है, नंबर वन। नंबर टू, जहां स्ट्रांग रूम वगैरह बनता है तो वो भी पब्लिक की जानकारी में होता है, वहां पर कोई भी आवागमन होता है तो रजिस्टर में बाकायदा उसकी एंट्री की जाती है और केवल अथराइज्ड जो पर्सन्स हैं वही आवागमन उसमें कर सकते हैं। तो मुझे और पूरे भारत में जो है वो इसके ईवीएम के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, अब ये अलग बात है कि उसको लेकर के जो है वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो केंद्रीय चुनाव आयोग है या राज्य चुनाव आयोग है उसको इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि जो पुख्ता जानकारी कि इसको जो है हैक किया गया हो कभी या इसमें हैक किए जाने की संभावना हो।
0: जी राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी, एक सवाल हम भी आपसे करना चाहेंगे, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नामांकन से लेकर के चुनाव प्रचार और चुनाव खर्च तक के नियम होते हैं, उम्मीदवारों को ऐसी कौन कौन सी सामान्य गलतियों से बचना चाहिए जिसकी वजह से बाद में उन्हें परेशानी हो सकती है?
2: देखिए इसमें हम लोगों ने जो नगर पालिका चुनाव है उसके लिए वार्ड मेंबर के लिए रखा है कि 1.5 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकते हैं, नगर परिषद में 2.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं सदस्य पद के लिए, और नगर निगम के पार्षद पद के लिए जो है वो 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। तो उनको जो भी पोस्टर बैनर या प्रचार सामग्री वगैरह करनी है वो इस सीमा के अंतर्गत करनी चाहिए। नगर पालिका सदस्य जो है वो प्रचार के लिए एक वाहन का उपयोग कर सकते हैं, नगर परिषद के जो सदस्य हैं वो 2 वाहन का और नगर निगम के जो सदस्य हैं वो 3 वाहन का उपयोग कर सकते हैं।
0: जी
2: तो इनको जो है पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो उस सीमा के अंतर्गत ही अपना व्यय एक तौर करें और चुनाव समाप्ति के 15 दिन के अंदर वो रिटर्निंग ऑफिसर को अपना जो है वो खर्चा दे दें कि हमारा इतना व्यय हुआ है, अन्यथा जो है वो भविष्य में उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।
0: जी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर से लौटेंगे और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी के साथ में।

0: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम माइक पर मुखिया में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी, और लगातार श्रोताओं के फोन आ रहे हैं, सवाल लेते हैं सर उनके। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
1: सूरतगढ़ से बोल रहा हूँ, कुंदन कटारिया।
0: जी कुंदन जी, अपना सवाल करें।
1: मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं ना ईवीएम हैक हो गई है, ये खराब हो गई है, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी
2: देखिए, ऐसा है कि जो ईवीएम है वो उसका हैक होने या उसके मैनिपुलेट होने की बहुत कम संभावना रहती है या बिल्कुल नगण्य संभावना रहती है। अभी तक की तो स्थिति यही है, कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं कर पाया कि इसको हैक कर सकते हैं या अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो ये खराब होती हैं जब प्रोसेस के दौरान, तो हम लोगों ने 15-20% जो है वो हर जगह व्यवस्था कर रखी है, जो तुरंत उनको रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। हमारे हर जिले में जो है इंजीनियर्स, जो कंपनी है उसके इंजीनियर्स भी रहते हैं, जो कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान कर देते हैं।
0: अगली श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो
3: जी, आदरणीय उद्घोषण बोल रहे, राधे राधे।
0: जी राधे राधे, अपना सवाल करें और अपना नाम बताएं उसके पहले।
3: जी मेरा नाम केसी कमल है, कैलाश चंद्र कमल।
0: जी
3: मैं विद्याधर नगर से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, अपना सवाल।
3: आंखों से थोड़ा फिजिकली वो नहीं

0: मेरा फ्लोटिंग आता है देवी नगर में, तो क्या मेरे पास आधा वो कार्ड सब है मेरे पास फैसिलिटी, तो क्या यहाँ कोई विचार नगर में ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ वोटिंग कर सकता हूँ? मेरी इच्छा है
1: जो अपने दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है उनको घर से लाने ले जाने की, अभी उनका सर्वे किया गया है, तो जो अपने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं या जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको अपना नाम नंबर पता वगैरह नोट करा दीजिए, तो वहां से हम लोग ये व्यवस्था कर लेंगे।
2: जी अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी अपना नाम बताएं और अपना सवाल कीजिए।
3: हाँ मैडम पंकज सोनी बोल रहा हूँ।
2: जी पंकज जी,
3: अभी भाई ईवीएम हैक नहीं हो सकती और उसके अंदर भाई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो इसको रिपोर्ट पे कौन करेगा? तो
2: जी
1: तो ये तो जो केंद्रीय चुनाव आयोग है और जो राज्य चुनाव आयोग है उन्होंने समय समय पर जब भी इस तरह के आक्षेप आए हैं तो उसके संबंध में जो है वो थर्ड पार्टी से इसका इवेल्युएशन कराया है और वो जो सारी प्रक्रिया है वो बिल्कुल एरर फ्री है, त्रुटि मुक्त है और ये कई बार सिद्ध हो चुका है।
2: हेलो
4: सर को नमस्कार। बहन जी नमस्ते।
2: नमस्ते सर, अपना सवाल करें।
4: सर जांगिड़ बोल रहा हूँ, मुरलीपुरा जयपुर से।
2: जी सवाल कीजिए।
4: सर से दो तीन जिज्ञासा जो ये पूछ रहा था, एक तो सर जैसे मान लीजिए हम गांव के रहने वाले हैं, मैं कोटपुली बैरोड जिले का रहने वाला हूँ और मैं दिव्यांग हूँ और यहाँ मतलब पिछले 15 साल से रह रहा हूँ गाँव अपने जयपुर में भाई के पास।
2: जी
4: और यहाँ से मेरे पास में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन इच्छा करती है वोट करने की यहाँ पे, अब गांव गया नहीं जाता कि मैं ब्लाइंड हूँ।
2: जी
4: तो ये पूछ रहा था कि यहाँ किसी वजह से वोटिंग कर सकता हूँ? और दूसरा जैसे SIR में कई लोगों के नाम कट चुके हैं बहुत लोगों के और वो बहुत परेशान है, तो उनको दोबारा से क्या सुविधा मिल सकती है कुछ?
1: देखिए ऐसा है कि जहां मतदाता सूची में आपका नाम है वहीं पर आप अपना वोट डाल सकते हैं। अगर आप पिछले 10-15 साल से यहां पर रह रहे हैं तो यही कहा जाता है कि जहां ऑर्डिनरली आदमी रहता है, जहां का ऑर्डिनरली वो रेजिडेंट है वहीं पर उसको अपना मतदाता कार्ड बनाना चाहिए और मतदान का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो अपने और क्या प्रश्न था इनका,
2: अगर नाम कट गया है तो
1: हाँ तो जो SIR है उसमें जो है नोटिस वगैरह जारी किए गए हैं लोगों को, वो केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्रवाई है, उसका राज्य चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको नोटिस वगैरह देते हैं और पर्याप्त सबूत वगैरह पेश करने पर वो लोग जो है मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई करते हैं।
2: जी एक सवाल और करना चाहेंगे सर, समय बहुत कम रह गया और बहुत जरूरी सवाल है। चुनाव प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ते जा रहा है, मतदाता सुविधा और चुनाव प्रबंधन और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग किस तरह की डिजिटल तकनीक और सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है?
1: देखिए अब एक तो मैंने बताया कि जो राज्य चुनाव आयोग का सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह वो क्रिएट किया गया है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और अन्य सारे जो वो है
2: जी,
1: तो एक तो उसके ऊपर भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं, फिर जो हमारा कंट्रोल रूम है वहां पर वर्बली भी जो है वो अपने जो भी शिकायत है उसको कर सकते हैं, जिला कंट्रोल रूम में भी कर सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह जो है तो उनके कार्यालय में भी इसको कर सकते हैं और लगभग सारे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन लोगों का भी जो है ये फेसबुक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह ये मतलब खुला भी है और सक्रिय भी है, तो वहां उनका भी उपयोग करके जो है अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
2: अंत में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आकाशवाणी के माध्यम से राजस्थान के लाखों श्रोताओं के लिए आपका संदेश, मतदान के दिन हर मतदाता को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किस तरह निष्पक्ष, निर्भीक और जागरूक होकर मतदान करना चाहिए, हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
1: देखिए प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं, नगरीय निकाय हैं और पंचायती राज संस्थाएं हैं ये हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है और यहाँ पर जितने जो है निष्ठावान, समझदार, सुसंस्कृत और विजनरी और जो स्थानीय समस्याओं से अवगत और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध लोग हैं
2: जी,
1: अगर वो चुन करके इन निकायों में जाते हैं तो निश्चित रूप से एक जनता को सही प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, उनकी समस्याओं का सही समाधान होगा
2: जी,
1: और उनको जो है एक तरह से अपने चयन से संतुष्टि भी प्राप्त होगी
2: जी।
1: तो मेरा आम जनता से यही निवेदन है कि जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है, कृतित्व कैसा है और चरित्र कैसा है।

0: इन तीनों चीजों को जो है सोच समझ करके ही अपने मत का, अपने पूर्ण विवेक का इस्तेमाल करते हुए और बिना किसी प्रलोभन और बिना किसी दबाव में आए हुए, बिना किसी भय के अपना मतदान करें ताकि जो स्थानीय लोकतंत्र है वो मजबूत हो सके।
1: जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतने जो सवाल थे उनका जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम माइक पर मुखिया। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग मिला प्रकाश बाबू, रविन्द्र कुमार चतुर्वेदी और मानवेन्द्र प्रजापति का। प्रस्तुतीकरण सहयोग रहा निरंजन कुमार शर्मा का और इसके प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर गौरव यादव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विविध भारती जयपुर केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह से आगामी निकाय चुनावों की तैयारी पर सजीव कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हमने
3: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1200

82 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3,000 रूपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देशभर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम अभिनेता ऋषि कपूर को और गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी की बोल, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें। फिल्म का नाम है बॉबी।
2: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था कभी कभी। साहिर लुधियानवी के बोल थे, खय्याम साहब का संगीत था। और अब लेते हैं इस कार्यक्रम में एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। गाने वाले कलाकार किशोर कुमार और साथी, फिल्म का नाम कर्ज़।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की

0: एक बहुत मशहूर हस्ती।
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत रचना संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम का अगला गीत शिव हरि का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और विनोद राठौड़ की आवाजी। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद हो आई, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इल बालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंखें। गीत को प्रसून जोशी ने लिखा है और धुन आदेश श्रीवास्तव की है।

0: के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में हम आपको समीर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है राजनीति। आवाजें आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की।

ये आवाजें थीं आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की। फिल्म का नाम था राजनीति। गीतकार थे समीर और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम अभी उपस्थित होते हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुति कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाँ बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं आज फिर। और आज इस सफर में हम थोड़ा सा कवितामय हो जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, आप समझ गए मेरा इशारा, क्योंकि संगीत की दुनिया में कुछ गीत ऐसे लिखे गए हैं दोस्तों, जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है, भावों की गहराई है। और आप इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे वही गीत, कुछ ऐसे ही फिल्मी गीत जिनमें हिंदी कविता अपनी पूरी गरिमा और मधुरता के साथ खिल उठी है। तो आइए शब्दों और सुरों के इस खूबसूरत संगम में हम खो जाते हैं और चलते हैं इस सुरीले सफर पर। हमारे दोस्तों ने कहा है कि आज भी इबारत मंदाकिनी जी ने लगता है रात भर जाकर लिखी है, हम इसे कैसे पढ़ पाएंगे, इसका जवाब देने में तो हमें घंटों लग जाएंगे। तो आपको इस इबारत का जवाब देने के लिए कहा किसने था ये बताइए।

0: हम तो आपसे दो सवाल करेंगे, उसका जवाब आपको देना है और इबारत पढ़कर आपके दिलो दिमाग में जो विचार आए वो लिखने हैं। तो इबारत पढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं लगा होगा मुझे लगता है। चलिए हम टुकड़ों में आज इसे पढ़ते हैं क्योंकि सफर लंबा है और हमें कवितामय भी होना है। हमने आपके लिए लिखा था कि हिंदी कविता में प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है, प्रेम में श्रद्धा है, समर्पण है, प्रतीक्षा है, विरह है और एक दूसरे के अस्तित्व में अपना संसार खोज लेने की भावना भी है। तो जब कोई कवि अपने प्रिय को केवल प्रिय नहीं बल्कि अपने प्राणों की अधिष्ठात्री, अपने हृदय की स्वामिनी या प्रिय प्राणेश्वरी मान लेता है तब प्रेम कविता बन जाता है और प्रेम का दूसरा रूप हम कहते हैं प्रतीक्षा को। हाँ, कभी प्रिय सामने नहीं होता लेकिन उसकी अनुपस्थिति हर क्षण, हर पल, हर क्षण सालती रहती है। मन प्रश्न करता है, आंखें खोजती हैं और हृदय पुकारता है, तू छुपी है कहाँ। और ये केवल विरह का गीत नहीं बल्कि प्रतीक्षा की कविता है। और इसी प्रेम में जब रंग जुड़ता है प्रकृति का, प्रकृति जुड़ती है, कल्पना जुड़ती है, तब शब्दों में चित्र बनने लगता है। कितना अद्भुत लगता है तब कि कवि फूलों के रंग को दिल की तरंग से जोड़ देता है और यही कविता की शक्ति है। जहाँ प्रकृति बाहर नहीं रहती, हमारे भीतर उतर जाती है, बस उसे महसूस करना होता है। और हाँ, कविता का दूसरा रंग है प्रकृति। हिंदी कविता और प्रकृति का संबंध बहुत पुराना है। फूल, पत्ते, ऋतु, आकाश, चांदनी और जल केवल दृश्य नहीं रहे बल्कि हिंदी कविता में ये भावों के प्रतीक भी बन गए। तो कवि कहता है, क्या कहता है, स्वप्न झरे फूल से। आहा, कितना प्यारा गीत है। तो कवि केवल फूल झरने की बात नहीं करता, वो स्वप्न के टूटने और जीवन के क्षणभंगुर सौंदर्य को एक साथ हमारे सामने रखने की बात करता है कि स्वप्न भी फूलों की तरह है, सुंदर, कोमल, क्षणिक और शायद इसी क्षणिकता में उनका सौंदर्य भी छिपा हुआ है। तो चलिए, ये इबारत का हमने पहला भाग पढ़ा है क्योंकि इस सफर पर हम निकल पड़े हैं और गीत का आनंद भी हमें लेना है। तो करते हैं शुरुआत, क्या कहते हैं आप
1: प्रिय?
0: हम भी श्री गणेश करें इस सफर का।

थे और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इस विस्तृत सुंदर सी इबारत के अनुसार कविता केवल शब्दों का सुंदर संयोजन नहीं बल्कि मन के भीतर उठने वाली उन भावनाओं की आवाज है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते। इसमें कम शब्दों के माध्यम से गहरे भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। इसमें शब्दों का ऐसा क्रम होता है जो सुनने में संगीत जैसा लगता है। कविता का एक सुंदर संसार प्रकृति भी है, लेकिन कविता केवल प्रेम और प्रकृति तक सीमित नहीं रहती, वो जीवन के रास्तों पर भी हमारे साथ चलती है। धूप हो या छाव, साथ हो या अकेलापन, वो हमें रुकने के बजाय चलते रहने और जीवन को गीत की तरह जीने की प्रेरणा भी देती है। इबारत में बहुत सारे लोकप्रिय गाने भी हैं और आपने उन लोकप्रिय गानों का जिक्र किया भी है। देखिए ना, हमने इबारत लंबी लिखी लेकिन साथ में कोशिश यही की कि उस इबारत में छिपे गीत संगीत को आप पहचान लें और आप लोगों ने पहचान भी लिया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो इबारत नहीं है, इबारत 5-10 पंक्तियों की होती है। आपने तो पूरा निबंध लिखा है और उस अंत में गीतों के बोल लिख दिए, जैसे प्रिय प्राणेश्वरी या और बहुत सारे गीतों का। आप इसे जिस अर्थ में देखना चाहें ये आपकी पसंद है ना। हमने तो कोशिश की है कि जो कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं, यानी ऐसे गीत जो लिखे गए फिल्मों के लिए लेकिन जिनमें कविता रही, कविता की सुगंध मिली, भावों की गहराई मिली, हमने उन गीतों का चयन आज किया है। और उन गीतकारों ने फिल्मी गानों को हिंदी कविता के रूप में जो पेश किया वो बहुत ही लाजवाब रहा है उनका यह प्रयास। तो आज का ये कार्यक्रम हमने उन्हीं गीतों पर केंद्रित रखा है, तो जाहिर है बात कहने का अंदाज भी थोड़ा सा तो खुला होना ही होगा ना। किसी बात को समझाने के लिए आप उसकी तह तक नहीं जाएंगे तो क्या लिख पाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लंबे अंतराल के बाद सुरीला सफर लेकर आ रही छोटी बहना मंदाकिनी जी के साथ सभी मित्रों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लंबे अंतराल की तरह आज आपने इबारत बड़ी और लंबी डाल दी है। इस पर फिल्म आनंद में राजेश खन्ना द्वारा बोला डायलॉग याद आ गया, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। क्या बात है। तो आज का कार्यक्रम भी बड़ा है, देखिए ना कितनी बड़ी बात लेकर हम आए हैं कि जीवन में कविता क्या मायने रखती है। और फिल्मी दुनिया में जहां हर तरह के गाने लिखे गए हैं वहां पर भी हिंदी कविता कितने खूबसूरत रूप में लिखी गई है, सुनी गई है, समझी गई है, सराही गई है। क्या आप इसे बड़ा नहीं मानते। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं आप, आपका हार्दिक स्वागत है। नवरसों का आविष्कार, चित्रदर्शी शब्दशैली, शिल्पदर्शी रचना, सुगमता, छंद, लय को लेकर आई कविता के भीतर जो सौंदर्य, भाव और संदेश मिलता है वो हमें संक्षिप्त में बहुत कुछ कह देता है। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने कहा आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हैं जो हमें बेहद पसंद है। आपने उन गीतों का जिक्र भी किया है, यकीनन यही गीत आज बजने वाले हैं क्योंकि हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में उन गीतों को डालकर आज की इबारत बनाई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता के बारे में क्या कहें, कविता के बारे में सामान्य लंबाई में लिखी कविता होती है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाए तो महाकाव्य कहलाती है और न गा सको तो अतुकांत कविता कहलाती है और कहीं ठिकनी रह जाती है तो हाइकू कही जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप बहुत दिनों बाद आई हैं और इतनी बड़ी और प्यारी सी थीम के साथ और हमारा शामिल होना मुश्किल सा लगता है, क्यों, क्या बात है, आप इस कार्यक्रम में हमारे सफर में आज साथ नहीं चलेंगे, बताइएगा हमें। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़ने से अच्छा है आपके मधुर स्वर से ग्रहण कर लेना क्योंकि इसमें भी एक भाव है जिसे पढ़कर नहीं सुनकर अपने मन में समाहित कर लिया जाएगा। बहुत सुंदर बात है, आप हमें सुन लीजिए, हम तो यही चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नई उम्र की नई फसल का गीत। और जब हम इबारत पढ़ रहे थे तो इन शब्दों का, इन पंक्तियों का जिक्र उसमें आया था और आपने भी पहचान लिया था कि यही गीत बजने वाला है। गीतकार है नीरज।

के धुनक उठे धुमक उठे चरण चरण शोर मच गया केलो चली दुल्हन गाँव सब उमड़ पड़ा बह

गीतकार नीरज की ये सुंदर कविता अभी आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम था नई उम्र की नई फसल। और हाँ, अब हम पढ़ते हैं हमारी इबारत का ये दूसरा भाग, क्योंकि आज आप शिकायत कर रहे हैं कि हमारी इबारत बहुत लंबी है, तो हमने भी सोचा इसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ दिया जाए ताकि आपको बोझिल न लगे। तो अब तक जो आपने गीत सुना वो हमारी इबारत में आ चुका था, यानी नई उम्र की नई फसल का गीत आ गया ना। आगे हमने लिखा था कि प्रकृति का एक और उज्जवल, पवित्र और आध्यात्मिक रूप हमें मिलता है। यहाँ प्रकाश केवल प्रकाश नहीं है, वो आशा है, चेतना है, मंगल है और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। हाँ, ज्योति कलश है वो। समझ आया कुछ? कवि जब शब्दों से प्रकाश को एक कलश में भर देता है ना, उसे छलकने देता है, तब भाषा साधारण भाषा नहीं रह पाती, वो कविता बन जाती है। और फिर प्रकृति का वही रूप तो एक चित्रकार की कूची से बना हुआ लगता है, क्या चंचल, शीतल, निर्मल और कोमल। समझ गए आप? ये चार शब्द और चारों शब्दों में है पूरा संसार, चंचलता, शीतलता, निर्मलता और कोमलता। और हिंदी कविता की यही विशेषता है कि कभी कभी कुछ विशेषण ही पूरे दृश्य को जीवित कर देते हैं। और जब ये दृश्य इतना सुंदर हो जाए कि मन स्वयं से प्रश्न करे कि कौन चित्रकार है, तब हम समझते हैं कि प्रकृति को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, कवि मन चाहिए। और कविता केवल फूल और प्रेम की बात नहीं करती, कविता जीवन को भी देखती है, उसके रास्तों को भी समझती है और मनुष्य को चलते रहने की प्रेरणा भी देती है। क्योंकि जीवन में कभी धूप है, कभी छांव है, कभी साथ है, कभी अकेलापन है। तो कवि कहता है, रुकना नहीं है, चलते रहो, गाते रहो, जीवन के सफर को गीत बनाते रहो। गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल भाई। ये गाते हुए गुनगुनाइए, जैसे कि आज सुरीले सफर में हम गुनगुनाते हुए चल रहे हैं। और ये केवल गीत नहीं है बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। और हर यात्रा चूंकि आसान नहीं होती, लेकिन अगर मन में गीत है, साथ में मुस्कान है, तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और हिंदी कविता की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो गूढ़ दर्शन को भी सरल शब्दों में कह देती है। तो भारतीय काव्य परंपरा में प्रकृति केवल दृश्य नहीं, परिवार है। धरती केवल मिट्टी नहीं, माँ है। आकाश केवल विस्तार नहीं, पिता है। जब यही सब भाव उतरते हैं तो क्या होता है, धरती कहीं पुकार के एक खूबसूरत कल्पना जन्म लेती है और यही कविता बन जाती है और कविता बनकर गीतों के रूप में ढलती भी है। जी, तो आज की इबारत तो हमने आपके सामने रख दी है। और वो श्रोता जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाते हैं, वो इस इबारत को समझ चुके होंगे कि आज की इबारत क्या कहती है। जी हाँ, आज हमने कुछ ऐसे गीतों को चुना है जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है। गीत तो हम बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन जहाँ हिंदी कविता आ जाती है, हिंदी कविता लिखी गई है, कुछ खास गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी कविताएं लिखी हैं, पंडित भरत व्यास, नीरज, रविंद्र जैन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्मी गीतों में हिंदी कविता को स्थान दिया है। गीतकार योगेश ने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं। तो आज हमारे दो सवाल आपके लिए ये हैं कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं। और हमारा दूसरा सवाल कि हिंदी के किस कवि की पंक्तियां, गीतकार की रचनाएं आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है। केवल दो पंक्तियां आपको बतानी है। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता जो रश्मि रथी है ना, उसमें से ली गई जो पंक्तियां हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी है दुर्योधन को, ध्यान है ना, अंतिम संदेश के रूप में, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है। या कि ये भी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आपको भी ऐसी कुछ पंक्तियां याद होंगी, चाहे वो फिल्मी गानों के रूप में या फिर साहित्य, जो हिंदी साहित्य आपने पढ़ा होगा अगर, या पढ़ने के शौकीन जो हमारे श्रोता है उन्हें कुछ पंक्तियां याद होंगी, उनका जिक्र कम से कम शब्दों में आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म भाभी की चूड़ियां का गीत। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीत दिया है सुधीर फड़के ने।

अभी आप सुन रहे थे ये सुंदर सी एक कविता ज्योति कलश झलके, और आपने देखा कि प्रभात और प्रकृति के सौंदर्य को शुद्ध हिंदी कविता के रूप में पंडित नरेंद्र शर्मा ने कितनी खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। उन्होंने ऊषा, आकाश, बादल, धरती, फूल और प्रकाश को मतलब ऐसे काव्यात्मक बिंबों में पिरोया है कि ये गीत सुनने से अधिक तो लगता है जैसे एक सुंदर सी कविता हमने लिख डाली है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने आपको सुनवाया, और हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार एक साधना है जहां प्रतीक्षा का हर पल विरह के दर्द से अलग होता है। जैसे कोई कवि शब्दों को सहेज कर कविता बुनता है, वैसे ही प्रेमी प्रतीक्षा के हर पल को यादों को सजाता है। जब हवाएं चलती है, नदियां बहती है, फूल खिलते हैं, तो प्रकृति का प्रेम ही है जो व्यक्त हो रहा होता है। बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी में मिलती है तो उठने वाली सौंधी खुशबू प्रकृति के प्रेम का ही संगीत है। प्यार एक ठहराव है, एक सुकून है जो इंसान को खुद से और पूरी कायनात से जोड़ देता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश में तो अलग अलग विषयों की रिमझिम रिमझिम बूंदों की बारिश सी कर दी है आपने। अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े सारगर्भित और बेहतरीन गीतों का गुलदस्ता सब बना दिया है। वाकई आपने हमारी इबारत को सही ढंग से समझा है, वरना तो हमारे श्रोता शिकायत ही कर रही है या कुछ हम क्या कहें। आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े जो सारगर्भित और बेहतरीन गीत है उनको हमने चुना, और उसी अर्थ में हमने आज की इबारत आपके लिए पेश की।

थी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप बहुत समय बाद आ रही हैं, आज तो बहुत ही लंबा पोस्ट आया है, बहुत समय लगा होगा इसे लिखने में, छुट्टी से जाकर पहले इसे ही पोस्ट करूंगी और इस पर प्रोग्राम करूंगी, ऐसा आपने सोचा होगा, है ना मंदाकिनी जी? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और हमें पता है आज हमें ये कार्यक्रम पेश करना है, तो हमने कल सोचा आपके लिए इस कार्यक्रम को और आज लेकर उपस्थित हो गए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं कि प्रेम, प्रतीक्षा, विरह, वेदना, खुशी, गम को कविता के रूप में कवि अपनी शैली में पिरोते हैं, प्रकृति से जोड़कर सुंदर शब्दों में विस्तार देता है, जिससे इन भावों को समझकर हम धारा में बहने लगते हैं और हमें संगीत जैसा प्रतीत होता है। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल जैसे जो गीत हैं वो इसी धारणा से लिखे गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का गद्यांश तो बहुत बड़ा है, प्रेम, समर्पण, कविता, प्रतीक्षा, अन्न, सपना आदि शब्दों को पिरोकर सजाया गया है और आज का सुरीला सफर मिलते हैं आपसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता का सबसे सुंदर सत्य यही है कि वो प्रेम से शुरू होकर अंततः आत्मा तक पहुंचती है और श्री कृष्ण इस यात्रा के सबसे सुंदर प्रतीक है। कृष्ण का प्रेम केवल पाने का नहीं, अपने प्रिय के अस्तित्व में स्वयं को विसर्जित कर देने का है। राधा की प्रतीक में वही विरह है, वृंदावन की प्रकृति में वही माधुर्य और गीता के शब्दों में वही जीवन को चलते रहने का संदेश। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम मिलन में जितना है उतना ही विरह में भी है, प्रकृति में जितना है उतना ही आत्मा में भी है। कभी वे बांसुरी बनकर मन को पुकारते हैं, कभी सारथी बनकर कर्म का रास्ता दिखाते हैं और कभी भीतर से आवाज देते हैं, चलते रहो, अपना धर्म निभाते रहो। बहुत सुंदर। तो आज के प्रश्न आपके सामने एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आज आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं, जैसे कि आज कुछ गीत हमने चुने हैं सुंदर कविता के रूप में। और हमारा दूसरा सवाल था कि हिंदी के किस कवि की या किस गीतकार की रचना आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है, जैसे हमें रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की जो पंक्तियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से चेतावनी दी थी दुर्योधन को अंतिम संदेश के रूप में कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद आती है। और एक और जैसे जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये पंक्तियां आज भी हमारे दिलो दिमाग पर अंकित हैं और ताउम्र रहेंगी। तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें आप नहीं भूल पाए हैं? सुरीला सफर के इस सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चल का ये सुंदर सा काव्यात्मक गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं फिल्मी गीतों के रूप में हमें दी हैं।

जी हाँ, तो रविंद्र जैन का ये जो गीत है प्रकृति और जीवन के प्रति कितनी सुंदर तरीके से लिखा गया है, जिसमें धरती को माँ, आकाश को पिता और पूरी सृष्टि को परिवार मानने का भाव है। यानी कितनी सुंदर कविता एक मनुष्य और प्रकृति के आत्मीय रिश्ते को लेकर रविंद्र जैन साहब ने लिखी। तभी तो इन गीतों को आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, गुनगुनाना पसंद करते हैं, और यूं कहें कि ये गीत अमर से हो गए हैं, है ना? क्योंकि हिंदी कविता जो एक कवितामय गीत लिखे गए, जहां हमें कविता की सुगंध, कविता का रसास्वादन भी होता है। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने बहुत पावन प्रेम इबारत पेश की है। कृष्ण तो प्रेम के साकार रूप हैं, वे पराक्रम के प्रवर्तक भी हैं। उनकी गीता हमारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान बढ़ाती है। जन्माष्टमी पर आपने सभी को बधाई दी है। देखिये, हमने तो 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम में आपके लिए खास कार्यक्रम भी पेश किया था, जो कि श्री कृष्ण को समर्पित किया। हमने उन्हीं के भजन भक्ति पद आपके लिए पेश किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने उस कार्यक्रम को सुना होगा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हमें स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, ये पंक्तियां जो कवि गोपालदास नीरज की हैं, वो सबसे ज्यादा पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय इतनी सुंदर है कि उसको आज तक भूल नहीं पाते हैं मंदाकिनी जी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल, संगीत की देवी, स्वर सजनी, ये पंक्तियां जो है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, है ना, वो कविता इन्हें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे स्कूल में पढ़ी जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पंक्तियां याद आ रही हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये इन्हें पंक्तियां बेहद पसंद आती है और इन्हें आज भी याद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि तुम गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूँ, कोरा कागज था ये मन मेरा, ये पंक्तियां इन्हें बेहद अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता को चंदन सा वदन, ये पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं फिल्मी गीत के रूप में। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, ये पंक्तियां जो हैं गीत की इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब, यानी प्रश्न जो पहला था उसका जवाब दे रही हैं कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ननी चिट्ठी जब दाना लेके चलती है, ये संदेश इन्हें बेहद पसंद आता है। और हमारे दूसरे सवाल का जवाब देती है कि कवि प्रदीप जी, सचिन दा, नीरज जी और भी बहुत से गीतकार हैं जिनके प्रेरणादायक गीत इनको पसंद आते हैं। बहुत सुंदर पसंद है हमारे श्रोताओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म नवरंग का ये सुंदर सा गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोंसले और मन्ना डे का गाया हुआ, पंडित भरत व्यास की बोल है। जी हाँ, पंडित भरत व्यास, जिन्होंने न जाने कितने गीत हिंदी कविता के रूप में लिखे हैं और इसे संगीत में ढाला है सी रामचंद्र ने।

घूमर झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का, ये कौन फूल महका, ये कौन पंच चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी, दिल जो मेरा बहका।

नदी में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया। सूरत है मेरे सपनों की तू सोहिनी, जमुना तू ही है, तू ही मेरी मोहिनी, तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू भी कर दिया था और अभी भी लगातार दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी कविता में रुचि रखते हैं, यानी आपके भीतर भी कविता बहती है किसी न किसी रूप में। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, ये तो हमने पढ़ दिया था, आप लिखते हैं कि आज की इबारत अलग अलग मोड़ के गीतों से आपने बुनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गीतकार शैलेन्द्र और पंडित प्रदीप जी के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, और पंडित प्रदीप जी की देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म कादम्बिनी का वो गाना जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा था आशा भोसले की आवाज में, अंबर की एक पाक सुराही, ये बहुत पसंद है। बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कविता का अंश जो है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं श्रोता एक लिखती है कि मेह बरसने वाला है मेरी खिड़की में आजा तितली, महादेवी वर्मा जी की कविता है और इन कविताओं से ये प्रभावित हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ज्योति कलश छलके का मतलब है ज्योति का प्रकाश कर और बिखरे अंधेरा गायब हो जाए, अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ये पंक्तियां इन्हें प्रभावित करती हैं। वहीं एक श्रोता को अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, गोपाल दास नीरज की पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता को महादेवी जी की कविता में चंदा तू चांदनी ये पंक्ति बहुत पसंद है। वहीं पंडित भर व्यास जी के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी कविता के माध्यम से फिल्मी गानों को उन्होंने स्वर्णिम युग दिया है। रामराजे फिल्म का लता जी का गाया एक गाना पंडित भरत व्यास जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर है, सोजा सोजा यानी नींद के समय का ये अद्भुत गीत है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, प्रकृति सौंदर्य का जीवंत सुंदर चित्रण इस गाने में अनुपम है, ज्योति कलश छिड़के अंतिम अंतरा में ज्योति यशोदा घर की गैया सुनते ही बनता है, भाव विभोर कर देता है ये गाना, बिल्कुल। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अरे बस इतना ही। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला, लाल लई देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, ये पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाभी की चूड़ियां का ज्योति कलश छलके ये कविता रूपी जो गीत है वो पसंद करते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि प्रिय विविध भारती परिवार, आपका ये कार्यक्रम सुरीला सफर बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये पंक्तियां इन्हें पसंद आती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज का आपका विषय बहुत ही सुंदर है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विशुद्ध हिंदी शब्दावली गीत से कार्यक्रम का श्री गणेश अति उत्तम शुभारंभ, श्रोतागण हर्षित फुल हो मुग्ध हो गए हैं, अरे वाह। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आपको और समस्त श्रोता मित्रों को हम नमस्कार करते हैं, आज आप बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हैं। हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कविता का आनंद लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल हैं, आवाज मुकेश की, और फिल्म का नाम सत्यम शिवम सुंदरम।

जी बहुत ही मधुर गीत अभी हमने सुना और कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच गए हैं। हमारे श्रोता कुछ श्रोता हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या बात है आप कई दिनों के बाद सुरीला सफर पर आए हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम छुपी हो कहां, हम आपकी आवाज सुनने को तड़प रहे हैं यहां। एक श्रोता लिखते हैं बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके श्रोता समूह वाला, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। हुए ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आप कार्यक्रम में आ गए हो तो और भी अच्छे हो गए हैं हम। अरे वाह क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता की शक्ति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। नहीं नहीं ये आपकी गलतफहमी है, हमने तो आपको कुछ नहीं समझाया बल्कि एक कार्यक्रम लेकर आपके साथ सुरीले सफर पर निकल पड़े हैं बस इतना ही ताकि जीवन में थोड़ा सा हम भी कवितामय हो जाए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं क्या बात है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हमें आज बेहद पसंद आए हैं क्या बात है। हमारी इबारत को आज श्रोताओं ने निबंध कह दिया है, किसी ने कहा है कि पूरी रात जग कर लिखी है आपने, किसी ने कहा है कि आज पूरा दिन लग जाएगा इस इबारत को पढ़ने और जवाब देने में। चलिए आप जैसा समझे सर आंखों पर, आपकी हर बात आपका हर भाव, बस यही होना चाहिए कि इस तरफ से हमारी जो कोशिश है वो कम नहीं होनी चाहिए और आपकी तरफ से क्या आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए प्रदीप की आवाज, फिल्म का नाम नास्तिक, गीतकार प्रदीप और संगीत सी रामचंद्र का।

दोस्तों, कवि प्रदीप द्वारा कविता की शैली में लिखा गया ये गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मानवता को आईना दिखाने वाली एक मार्मिक कविता के रूप में लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कवि। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 44वीं कड़ी।

0: बैरिस्टर जिन्ना द्वारा रखे गए मुद्दों में विसंगति दिखाते हुए इस्लाम धर्म के अध्येता और विचारक मौलाना रजा उल करीम ने कुछ लेख लिखे। कालांतर में उन बंगाली लेखों का संग्रह बंकिम चंद्र ओ मुसलमान समाज नाम से 1944 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के एक अध्याय में उन्होंने कहा,
1: हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधारण बातों में भी मूर्ति पूजा का हवा खड़ा करके आम मुसलमानों का दैनिक जीवन दूषित करते हैं। माता पिता के चरणों को हाथ से छूकर उनके प्रति भक्ति भाव दिखाना ही मूर्ति पूजा है। श्रद्धा के पात्र व्यक्तियों के सामने भक्ति भाव से नतमस्तक हो तो वो भी मूर्ति पूजा ही है। सजावट के लिए कमरे में कोई तस्वीर लगाना भी मूर्ति पूजा ही है। क्या ऐसा मानना चाहिए? ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति वंदे मातरम जैसे अत्यंत निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को सांप्रदायिक गीत कहते हैं, परंतु जिनके पास उदारवादी दृष्टिकोण है उन्हें वंदे मातरम गीत को सम्यक दृष्टि से ही देखना चाहिए। वंदे मातरम जैसे सर्वांग सुंदर गीत का मूर्ति पूजक कहकर जो विरोध होता है उसका उद्देश्य पवित्र तो है ही नहीं, इसलिए इस गीत की भाषा तो ऊपरी बहाना है। उसका असली कारण राजनीतिक ही है। उसे देखने के लिए उदार दृष्टि, मुक्त विचारधारा और चिंतनशीलता की आवश्यकता है, और इन्हीं बातों के अभाव के कारण इस पर किसी ने भी अंतर्मुख होकर विचार नहीं किया है।
0: रजाउल करीम ने इस प्रकार वंदे मातरम पर लगे इन आक्षेपों को तर्कसंगत ढंग से खंडित किया।
2: मुस्लिम समाज की वंदे मातरम के प्रति इस भूमिका के विरोध में सबसे प्रखर भूमिका हिंदू महासभा ने निभाई। स्वतंत्रता वीर सावरकर की रत्नागिरी में नजरबंदी से मुक्ति के बाद हिंदू महासभा की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी। उन्हीं दिनों में लोकमान्य तिलक के अनुयायियों ने लोकशाही स्वराज्य पक्ष शुरू किया था। उस दल के सहयोग से हिंदू महासभा ने वंदे मातरम गीत को राष्ट्र गीत का दर्जा दिया जाए, इसलिए वंदे मातरम दिवस मनाकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग का वंदे मातरम गीत के प्रति जो विरोध था उसे तोड़ने के लिए 26 अक्टूबर 1937 का दिन वंदे मातरम दिन के रूप में मनाने का निश्चय किया गया।

0: उसी समय मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया हुआ वंदे मातरम शब्द लिखा हुआ भारत का ध्वज पेरिस से सरदार सिंह राणा के पास से केसरी के तत्कालीन संपादक और लोकमान्य तिलक के नाती गवी केतकर के पास 22 अक्टूबर को पहुंचा। वंदे मातरम दिन के अवसर पर पुणे में पहुंचे इस ध्वज की बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद हुई सभा में स्वतंत्रता वीर सावरकर और सेनापति बापट के भाषण हुए।
1: जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन थी, वैसे ही हिंदू महासभा को हिंदुओं का प्रतिनिधि दल माना जाने लगा। 1937 से 1939 के काल में मुस्लिम लीग के वर्चस्व के कारण बंगाली हिंदुओं पर एक प्रकार का दबाव और आतंक छाने लगा। कांग्रेस की दोहरी नीति के कारण डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बंगाल के नेता हिंदू महासभा की ओर खींचे चले गए और बंगाल में हिंदू महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा। 1938 में नागपुर में हुए हिंदू महासभा के 20वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में सावरकर ने शुरुआत में ही हिंदू राष्ट्र और वंदे मातरम की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ ऐसा आह्वान किया। संपूर्ण वंदे मातरम गायन के साथ ही उनके भाषण का समापन हुआ। ये गायन नागपुर के गायक पंडित विनायक अंभईकर ने खंबावती राग में किया था। इस घटना के समय अंभईकर मात्र 26 वर्ष के थे। बचपन से ही वे वंदे मातरम के प्रेम से ओतप्रोत थे। 1926 में 14 वर्ष की आयु में नागपुर के बैरिस्टर मोरोपंत अभ्यंकर के घर गांधीजी के सामने छोटे विनायक ने संपूर्ण वंदे मातरम गाकर सुनाया था और उसके बाद शास्त्रीय गायन में बड़ी निपुणता प्राप्त कर मात्र 17 वर्ष की आयु में संगीत सुधाकर ये संगीत की प्रतिष्ठित उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। स्कूल के दिनों में जॉर्ज नृपा गावे सद्भावे वंदुनिया पदा ये पंचम जॉर्ज की कविता गाने वाला विनायक आगे चलकर वंदे मातरम का कट्टर समर्थक बन गया।
0: 1938 में हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन की तरह ही सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 के हरिपुरा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया था। हिंदू महासभा और कांग्रेस जैसी सभी विचारधाराओं के अलग अलग दलों के कार्यक्रमों में उन्हें वंदे मातरम गाने के लिए आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया जाता था। खनकदार फिर भी विलक्षण मधुर आवाज अभ्यासपूर्ण और भावरसपूर्ण गायकी के कारण उनका वंदे मातरम लोकप्रिय हो गया।

1938-39 का कालखंड और भी अधिक संघर्षमय बन गया था। दिनांक 7 फरवरी 1939 को आंध्र प्रदेश के चपलमुंडा के कारागार में अनेक युवा आंदोलनकारियों को रखा गया था। शाम के समय इन राजबंदियों ने भजन के साथ वंदे मातरम गाना शुरू किया। जेल अधिकारी हॉलिंग्स ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, फिर भी

0: में भी वंदे मातरम का उच्चारण बंद नहीं किया था। उन्नीस के दिसंबर में पंढरपुर में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में स्वतंत्रता वीर सावरकर ने रामचंद्र राव को गौरवान्वित करते हुए उन्हें वंदे मातरम रामचंद्र राव की उपाधि देने की घोषणा की। आगे चलकर रामचंद्र राव वंदे मातरम रामचंद्र राव इसी नाम से पहचाने जाने लगे।
1: देश भर में घट रही घटनाओं की पृष्ठभूमि में आशा की किरणें राजनीतिक स्तर पर दिखने लगीं। इन सब का परिणाम आसपास की परिस्थिति पर खुद बंगाल में भी होता रहा। अप्रैल 1940 में कलकत्ता महानगर पालिका के वरिष्ठ सदस्यों के चुनाव में नगर पालिका प्रशासन में यूरोपीय प्रशासकों के एकाधिकार तोड़ने के लिए सुभाष चंद्र के भाई शरद चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया। नगर पालिका स्तर पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपसी विश्वास के आधार पर हुआ यह संपूर्ण देश भर में एकमात्र गठबंधन था।
0: दिसंबर 1940 में मुस्लिम लीग के एक मंत्री ए के फजलुल हक ने भी संयुक्त मोर्चे का प्रयास शुरू किया। जिस बंगाल में मुस्लिम लीग का पौधा उगा और फला फूला, उसी बंगाल में कुछ सकारात्मक प्रयास भी किए गए। हिंदू और मुस्लिम की संयुक्त सरकार कभी भी टिक नहीं पाएगी, इस तरह के अंग्रेजों के झूठे प्रचार को इन प्रयासों ने करारा जवाब दिया। सुभाष चंद्र के भाई और कांग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष शरद चंद्र बोस, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोर्चा सरकार स्थापित करने का समर्थन किया। इस संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री फजलुल हक बने। विशेष बात यह है कि इस मोर्चा सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों के समय वंदे मातरम गीत गाने का कभी भी विरोध नहीं किया।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष।

सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 44वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: Strategic data for our country.
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरा से पूर्व में 218, नवलपरा से पश्चिम में 208, नुआकोट में 195

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: 87, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
2: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदाम्बी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन निगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है

राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, शमशाद बेगम मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। गीत रचना शकील बदायूं ने की और संगीत नौशाद साहिब का।

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया फिल्म मदर इंडिया का गीत अभी आपने सुना। ये स्वर है आशा भोसले और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम है नया दौर, शब्द साहिर लुधियानवी के और तर्ज ओपी नैयर की।

0: कैसी कला है, कंटेम्पररी है वो, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये है अगली पेशकश। SD बर्मन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की बोल, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजी, फिल्म का नाम है प्यासा।

कार्यक्रम में आप सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा गीत और वसंत देसाई का संगीत, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है जनक जनक पायल बाजी।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: तो गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है 2 आंखें 12 हाथ। शब्दकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार वसंत देसाई हैं।

0: हिंदुस्तान के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुँचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है अगला गीत। फिल्म का नाम है बसंत बहार। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, बोल शैलेंद्र के हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म सीआईडी से स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, गीत रचना जानिसार अख्तर की और धुन ओपी नैयर।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों सहेलियों नमस्कार, हम आ गए आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर। हेलो सहेली, मैं हूँ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: हम नीता मिश्रा बोल रहे हैं
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी हम रहते थे लखीमपुर खीरी में, लेकिन इस समय अपने भाई के यहाँ आए हैं, शाहजहान के पास में ही है।
0: भाई के यहाँ आए हैं, रक्षाबंधन मनाने आए हैं आप?
1: जी जी
0: जी। बताइए नीता जी, अपने बारे में बताइए।
1: हमारे 6 भाई हैं, तो भाई आप सभी भाई तो पहुँच नहीं सकते हमारे घर, इसलिए हम यहाँ पर आया था कि सारे भाइयों की राखी बन जाती है, रिचना हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हम ही आते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे हैं आपके जीवन में। अभी खुशियों के दिन आ रहे हैं, जब हम भाई के घर जाके रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज आपका पहला फोन कॉल भी लग गया है, तो इसमें यानी सोने पे सुहागा हो गया है ना। अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी।
1: मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर है
0: जी,
1: और मेरी ननद है, उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल हम 3 लोग रहते हैं घर पे
0: जी। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का गाना है, मेरे भैया मेरी चंबा मेरे अनमोल रतन।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बड़ोदा
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: से शारदा बेन नागरेचा ने।
0: बड़ौदा से शारदा बेन बात कर रही है। बताइए
1: हाँ,
0: शारदा बेन, आप क्या करती हैं?
1: बहुत सारी एक्टिविटी करती हूँ। गाना गाती हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, रसोई का, और एक्टिविटी में फ्लावर बनाती हूँ, तेज
0: अरे वाह वाह।
1: पत्ते में से, पिस्ता में से, और जो
0: यानी
1: आचार के गुंदे आते हैं ना, गुंदा अठाना, वो भी ईसा वाला, त्रोफान, लीला नारियल आता है ना, लीला नारियल ऊपर वाला ईसा,
0: जी
1: उसका फ्लावर बनाता है, उसमें कलर पुरते हैं।
0: वाह वाह वाह। यानी जो हम लोग जो इस्तेमाल करके जो बची हुई चीजें होती है जिसे हम फेंकते हैं, उन्हें आप
1: हाँ
0: फेंकती नहीं है, उन चीजों से सुंदर सुंदर आप फ्लावर पॉट बनाती हैं, फूल बनाती हैं, है ना?
1: और हर साल मैडम राखी आते हैं, राखी के सब सामान में रख देती हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि
1: हाँ
0: जिन
1: हाँ
0: चीजों से हम कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: गाना गाना, भजन कीर्तन सब आता है मैडम।
0: जी तो कुछ गाकर सुनाइए।
1: खमार खमार मारो श्याम, आवी ने मारी मटुकी फोड़े, अरे रे श्याम, आवी ने मारी मटुकी फोड़े, कमर कमर मारू बाजे शाम, आवी ने मारी मटो की फोड़े, गायो चरवी वालों तीनू मनाते श्याम, आवी ने मारी मटो की फोड़े, भूपियो ना घर माटे में लीलायो करे श्याम, आवी ने मारी मटू की फोड़े।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी आवाज है और इतनी सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और आप जो क्रिएटिव काम करती है ना वो भी करती रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए बताइए
1: बोल,
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: नन्हे मुन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है?
0: बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया है।
0: और बताइए आप क्या करती हैं?
1: होम गृहिणी हूँ, घर पर ही रहती हूँ
0: जी।
1: तीन बच्चे हैं मेरे, दो बेटी है एक बेटा है।
0: अच्छा तो ये बताइए कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है जरा बताइए ना।
1: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा नाश्ते में और जूस वगैरह।
0: ये आप बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: पोषण को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
1: जी मैं मैडम अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, खास करके मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, अपने पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ। जी, मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, ऐसा होता है ना कि सावन भादों का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं, त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
1: जी, हम लोग के यहाँ ये घर में ही ठकुरबाड़ी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में
0: जी,
1: तो उसमें हम लोग का 56 भोग लगता है। उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन में। तो उस दिन भी हम लोग के यहाँ बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
0: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करती हैं कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
1: जी जी हम लोग के हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है, चीनी कम, गुड़, और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है
0: जी।
1: जी, जो गन्ने का रस जब निकलता है ना तो पहले मीठा बनता है, उसके बाद गुड़ बनता है। तो हम लोग जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा
0: जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यानी अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ये छोटी बहू फिल्म का गाना है, कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से। नमस्ते।
0: जी रुचि जी नमस्ते, बताइए अपने बारे में बताइए।
1: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
0: जी यानी
1: लाइफ
0: जिंदगी का लुत्फ उठा
1: ठीक है,
0: रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान पान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
1: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी, जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ, तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें, या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खान पान में स्वाद है।
0: जी, और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप
1: जी,
0: कितना महत्व देती हैं?
1: मेरी समझ से पोषण, मेरे जैसे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है, उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से।
0: जी, मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए, कि जैसे ज्वार का आटा है, फिर बाजरा है, यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई, तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
1: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे, तो हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है, और हम कर सकते हैं। शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ने लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
1: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे। और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं।
0: जी, यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं फेंकना है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने।
0: जी बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आ जा।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: モニーボ
1: ー वो आ गया देखो देखो

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुचित्रा पंडित हूँ, उज्जैन से बात कर रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश।
0: जी सुचित्रा जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं संगीत की कक्षाएं भी लेती हूँ, जॉब भी किया हुआ है। अभी मेरी उम्र 69 है और बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: मेरे यहाँ रोज दिन भर रेडियो चलता रहता है।
0: क्या बात है। और आपने जैसे बताया कि आपकी उम्र 69 साल की है, पर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल की युवती हमसे बात कर रही है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए मैडम।
0: और आपने कहा है कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो कुछ सुनाइए आप।
1: तेरा जाना दिल के अरमानों का।

0: के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत
0: तो याद आ गया, वो गा दिया मैडम। कोई पहले से तैयारी नहीं थी।
1: नहीं, बहुत सुंदर आपकी आवाज भी है और बहुत सुर में गाती हैं आप। और जैसे आपने कहा कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो किस उम्र के बच्चे आपसे शिक्षा लेते हैं? कुछ
0: मैं प्रायः जो दूसरी पास हो ऐसे बच्चों से शुरू करती हूँ, ताकि वो थोड़ा कम, जिनको अक्षर ज्ञान हो तब से शुरू करती हूँ। अक्षर बचपन से ऐसा लगता है लोगों को कि छोटेपन से एकदम से बहुत बड़े कुछ गायक बन जाए, वो संभव नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं। पहले उनका अपने को रुचि किस चीज में है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। आजकल क्या हो गया, ये रियलिटी शोज के कारण ना हर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा एकदम स्टेज पे जाके और गाने लगे। कुछ चीजें तो जैसे बोलते हैं ना, इनहेरेंट होती है, आपके अंदर वो ताल और सुर होना चाहिए, तभी वो उभर के बाहर आ सकता है।
1: और आप रियाज के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को तराशते हैं।
0: जी जी जी,
1: ये आपने बहुत सही बात कही है, ये एक संदेश है। और संगीत को लेकर आप छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: हाँ, यही देना चाहूंगी मैं कि पहले ना उनकी रुचि किस चीज में है वो देखिए पहले आप। जबरदस्ती अगर किसी को ड्राइंग में रुचि तो उसे ड्राइंग करवाइए, उसे अगर किसी संगीत में रुचि तो कराइए, या उसे स्पोर्ट्स में कोई रुचि तो वो स्पोर्ट्स उसे करवाना चाहिए। मतलब आपकी इच्छा है कि वो अच्छा गायक बन जाए तो वो संभव नहीं है, उसमें वो चीज अंदर होनी भी चाहिए ना, ईश्वर प्रदत्त भी कुछ चीजें होती है।
1: पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं बच्चों पर लादना नहीं चाहिए।
0: हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर सकता है। तो दौड़ में हम ना दौड़े, वास्तव में अगर कलाकार बनाना है तो उसके साथ धैर्य, साधना, ईश्वर कृपा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है, ऐसा मुझे लगता है।
1: जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: बंदिनी का, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, अभी सावन भी है
1: जी,
0: और बहुत ही प्यारा, आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है वो गीत, तो बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना।
1: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: आलिया भानो बात कर रही हूँ, बड़ोदरा गुजरात से।
0: जी आलिया जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैडम मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे ही रहती हूँ। आप सोनाली पाठक बोल रही है ना?
0: जी हाँ, मैं सोनाली बात कर रही हूँ।
1: मुझे आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा।
0: जी हाँ,
1: खुशी हो रही है।
0: जी हमें भी बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन लग गया है। और चलिए बताइए, अपनी रुचियाँ क्या है आपकी, कौन से शौक है आपके?
1: मुझे रेडियो सुनने का बहुत अच्छा लगता है, गाने सुनने का।
0: जी
1: और मुझे ना सितारों के सितारे, आज के मेहमान, ये सब इंटरव्यू वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: एक रिश्ता फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। और दीदी मुझे पूजा दीदी की आवाज बहुत अच्छी लगती है।
0: जी
1: सलमा दीदी की आवाज भी।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: साइबर रानी ने फोन लगाया मैम।
0: जी साइबर रानी, कहाँ से फोन लगाया है आपने?
1: सहारनपुर से फोन लगाया।
0: जी साइबर रानी जी, अपने बारे में बताइए।
1: जी मैम, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ।
0: क्या पढ़ रही हैं आप?
1: बीए कर रही हूँ।
0: तो आपके कुछ भविष्य के कुछ प्लान्स है कि बीए के बाद में क्या करना चाहती है?
1: अपने खुद के लिए टीचर बनना सोचती हूँ।
0: टीचर बनना चाहती है?
1: जी मैम।
0: जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हर किसी का सपना होता है और आपका सपना है टीचर बनना। तो आप यानी टीचर क्यों बनना चाहती है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा?
1: जी मैम, मेरे को अच्छा लगता है।
0: जी हाँ, देखिए आप टीचर बनना चाहती हैं, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कॉल के माध्यम से?
1: बच्चों का मैं कहना चाहूंगी, जिसके भी बच्चे हैं अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाइए, आगे आने वाले भविष्य में उनकी जिंदगी अच्छी बने।
0: जी तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: सिस्टम फिल्म मूवी का पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अनीता जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया, महाकाल का अलग छपा है
0: जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी, और आज जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आप जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाती हैं?
1: हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, झूला झुलाते हैं, उनको माखन मिश्र का भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं
0: जी। अच्छा, अपने शहर के बारे में बताइए।
1: जी, हमारे शहर में कृष्ण भगवान, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, यहाँ पे सांदीपनी आश्रम है उनका
0: जी,
1: महाकाल का मंदिर भी है, बड़ा ज्योतिर्लिंग माता है वो।
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का, यशोदा का नंदलाला
0: जी। संजोग फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है।
1: मैं सुहाना बानो बात कर रही हूँ, गुजरात अहमदाबाद से।
0: जी बताइए आप क्या करती हैं।
1: बेटा मैं घर भी रहना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला है तो सिलाई विलाई कर लेती हूँ कपड़ों में, कपड़े में सिलती हूँ मैडम।
0: जी यानी सिलाई करने का आपको शौक है।
1: मुझे आपके कार्यक्रम भी सुनना बहुत पसंद है।
0: कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको।
1: मैडम मुझे हिंदो फरमाइश आता है, वो भी बहुत पसंद है, और आज के फंकार बम्बे टोकी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं।
1: मैडम हमको दीवाना कर गए का डायरेक्टर, तुम
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 28670288 यानी 28670288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।
2: स्नेहा घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती, चिड़िया की तरह फुदक कर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं, पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही

शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है। जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि कहीं मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ, रौनक बनी रहती है। एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही, बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चढ़ाता खिजाता रहता, पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ाता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता। अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता। फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैप ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवेल पढ़ती रहती और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ, कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवेल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बम्बई से।

अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने, किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहाँ सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही है वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था, क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड़ प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुख मुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही, माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पाँव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और दो घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई न कोई बात शुरू कर देती, आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला। एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया, शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था, वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी, घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था, दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे, पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते, वह कमरे ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा, ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधे अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी न कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको या भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते पर हर जगह कोई न कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते, वो उपेक्षित सा महसूस करती। स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने।

स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी, कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली, अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूं।

अलू की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें। और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। नितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन ट्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब ट्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा। और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई, मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती है, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पति देव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सेहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी, जब नई नई इस घर में आई थी सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार

में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती। क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी, नानी, बुआ, मौसी, माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई, जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है, पर हवा दिखाई नहीं देती। हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं। क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है, चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है, वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया। गुनगुना उठी।

आखिर कब तक, रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह चैनल है। शाम के 5 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए सुनते हैं आज के शेष कार्यक्रम का विवरण। थोड़ी देर में 5:05 पर आप सुनेंगे नारियलो कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पर्व विशेष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर चर्चा, शिक्षक दिवस पर चर्चा, गर्भवती महिलाओं में पोषण की कमी पर चर्चा, साथ ही सुनेंगे बेहतर आहार स्वस्थ परिवार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर नमिता को श्रेष्ठ से बातचीत और गीत। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे शाम 5:30 पर रात 9 बजे हमारे मुंबई केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक

समाचार जिले की चिट्ठी और राजस्थान में प्रादेशिक समाचार सुनने जाएंगे 6:30 से 7 बजे तक हमारे जयपुर केंद्र से 7 बजे का समय रहेगा चौपाल का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चर्चा, बातचीत और लोक भजन। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे 7:30 पर। समाचार संध्या आप सुन सकते हैं 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से, 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये तो था हमारे आज के शेष कार्यक्रम का विवरण। और अब एक नजर हमारे

नमस्कार, सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केन्द्र से। 6:05 पर चिंतन आप सुनेंगे हमारे जयपुर केन्द्र से। यहीं से 6:10 पर आप सुनेंगे वंदना। रामचरित मानस गान का समय रहेगा 6:30 पर। खेती में बात आप सुनेंगे 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुन सकते हैं 6:50 पर। वातायन का समय रहेगा 7:20 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 9:30 पर और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे मुंबई केन्द्र से। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे हमारे दिल्ली केन्द्र से। कुछ देर से प्रोग्राम हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे सुबह 8:15 पर। 8:45 पर राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनाए जाएंगे जयपुर केन्द्र से 9 बजे। 9:10 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे सुगम संगीत। यहीं से सुगम संगीत आप एक बार फिर सुनेंगे 11 बजे और 11:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:05 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से आप सुनेंगे 5:30 पर रात 9 बजे। किसान वाणी कार्यक्रम हमारे जयपुर केन्द्र से आप सुनेंगे कल शाम 7 बजे। दुबई में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच के द्विभाषी बोल बाई बोल कमेंट्री का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे ट्रांसमीटर पर हमारे दिल्ली केन्द्र से 7:30 पर और विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर लाइव स्ट्रीमिंग पर। 9 बजे ट्रांसमीटर पर आप सुनेंगे दुबई में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषी बोल बाई बोल कमेंट्री का सीधा प्रसारण। लाइव स्ट्रीमिंग पर श्रोता सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 9 बजे 10 बजे स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केन्द्र से आप सुनेंगे रात 11 बजे। 11:05 पर ट्रांसमीटर पर श्रोता सुनेंगे दुबई में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषी बोल बाई बोल कमेंट्री का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केन्द्र से। ये तो था कार्यक्रम विवरण। FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी 500 नई चैनल है। शाम के 5:05 हुए हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी लो।

नमस्कार बहनों, आकाशवाणी के अपने लोकप्रिय कार्यक्रम माई लोक में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूँ पुष्पा सैनी, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है, शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं और पोषण हमारे स्वस्थ जीवन की बुनियाद है। इन्हीं खूबसूरत और उपयोगी विषयों को लेकर आज का डायलॉग आपके लिए लेकर आए हैं। तो मैंने सबसे पहले बात होगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, जो ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेम, कर्म, धैर्य और सत्य का संदेश देती है। इसके बाद हम याद करेंगे महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की, और उनसे जानेंगे उनको की शिक्षक हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही चर्चा होगी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, गर्भवती महिलाओं में पोषण की कमी और इसके कारण माँ और शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। साथ ही आज हमारे साथ होगी नमिता कुलश्रेष्ठ, जिनसे हम बात करेंगे बेहतर आहार, स्वस्थ परिवार और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में। तो ये बिना ज्ञान, संस्कृति और स्वास्थ्य सजे आज के इस विशेष नारी लोक की शुरुआत करते हैं। देखिए बहनों, आज है कृष्ण जन्माष्टमी। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले उनके संदेशों को याद करने का अवसर है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कर्म को प्रधानता दी और निष्काम भाव से अपना कर्म करने की उन्हें प्रेरणा भी दी। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अनेक रंगों से भरा हुआ है। वे बाल गोपाल हैं, मित्र हैं, मार्गदर्शक हैं, कुशल कूटनीतिज्ञ हैं और अर्जुन के सारथी भी हैं। यही कारण है कि जीवन के हर पड़ाव पर हमें उनसे कोई न कोई सीख मिलती है। दोनों आज जब परिवार और समाज में तनाव, भागदौड़ और आपसी दूरी बढ़ रही है, तब श्री कृष्ण का प्रेम, संवाद और संतुलन का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, आशा की एक किरण उसे दूर कर सकती है। आइए बहनों, इस जन्माष्टमी पर हम केवल उत्सव न मनाएं, बल्कि श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपने कर्म को ईमानदारी से करें, रिश्तों से प्रेम रखें और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाकर रखें। यही अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हमारी सच्ची सार्थकता।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: धन और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है संतुलित और पौष्टिक आहार। नमस्कार बहनों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। एक ऐसा विषय जो हमारे परिवार के हर सदस्य, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा है। बहनों, पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है बल्कि शरीर को सही मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य जरूरी पोषक तत्व देने का नाम है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नमिता कुलश्रेष्ठ। नमस्ते नमिता जी।
7: नमस्कार पुष्पा जी।
6: नमिता जी, आप महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत हैं। वर्तमान में आप DPO प्रशासनिक पद पर कार्य देख रही हैं। आपका हमारे नारी लोक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद पुष्पा जी।
6: जी नमिता जी, सबसे पहले आप हमारे बहनों को बताइए कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने का उद्देश्य क्या है और संतुलित पोषण हमारे लिए क्यों जरूरी है?
7: राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पुष्पा जी 9 सितंबर से 9 अक्टूबर तक पूरे जिले में बांसवाड़ा में मनाया जाएगा और इसका एक उद्देश्य है कि हमारे जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं
6: जी।
7: और जैसा कि 2026 में जो पोषण माह मनाया जाएगा जिसकी थीम है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, जिसका उद्देश्य है कि हमारा जो बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष के वो स्वस्थ रहें, हमारी जो गर्भवती माता हैं उनको संतुलित पोषण पौष्टिक आहार मिले जिससे कि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। और तीसरा है हमारी जो धात्री माता है जो 0 से 6 माह तक के बच्चों को दूध पिलाती है, वो धात्री माताएं भी हमारी स्वस्थ रहें और जिन बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो बच्चे भी स्वस्थ रहें। तो इसके लिए जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो गतिविधियां कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि हर महिला और हर बच्चा हमारा स्वस्थ रहे। स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ महिलाएं हमारी नींव है और यही आगे चलकर हमारे देश के भावी नागरिक बनेंगे। तो जिस देश के बच्चे और हमारी महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो निश्चित तौर पर ही वो राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे जाएगा और सम्मिलित होगा।
6: जी नमिता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारी श्रोता बहनों को दी है। नमिता जी, अक्सर लोग पौष्टिक भोजन का मतलब महंगे खाद्य पदार्थों से लगाते हैं, तो क्या कम खर्च में भी पौष्टिक और संतुलित आहार लिया जा सकता है?
7: बिल्कुल पुष्पा जी, ये हमारी एक मानसिकता बनी हुई है कि अगर हम सेब फल खाएंगे, काजू बादाम खाएंगे, ऐसी अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो ये मानसिकता बिल्कुल गलत है कि महंगे खाद्य पदार्थ खाएंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम पौष्टिक आहार खा रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और पौष्टिक आहार खाने के लिए

0: लिए हमको अपने खान पान की आदतों में बदलाव करना होगा और खाने को हमको सही ढंग से बनाना होगा, सही ढंग से उसको पकाना होगा। और जैसे कि अब सब्जियां हैं
1: जी,
0: अगर हम सब्जी बना रहे हैं तो यदि हम उसके थोड़े मोटे टुकड़े करेंगे तो हमको पौष्टिकता ज्यादा मिलेगी, और यदि उसके छोटे टुकड़े करेंगे तो उसमें पौष्टिकता कट जाएगी। इसी तरीके से यदि हम सब्जी को ढककर बना रहे हैं तो उसके पौष्टिक तत्व सब्जी में ही रहेंगे
1: जी,
0: लेकिन यदि हमने सब्जी को खुला बनाया तो उसके पौष्टिक तत्व उड़ जाएंगे। इसी तरीके से यदि हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो हमें जो गेहूं में जो गुण है हमें वही मिल रहे हैं, लेकिन यदि इसके साथ हमने थोड़ा सा मक्की का आटा, थोड़ा सा ज्वार का, या हमने उसमें बाजरे का मिला दिया या बेसन मिला दिया तो उसमें उन सभी के गुण आ जाएंगे और वो रोटी एक अकेली गेहूं की रोटी से ज्यादा पौष्टिक होगी। इसी तरीके से यदि हमने उस आटे में हरे पत्तेदार सब्जी मिला दी तो उसकी पौष्टिकता और बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम दाल बना रहे हैं और दाल में अगर सिंगल दाल बनाएंगे आप तो आधी पौष्टिकता मिलेगी, यदि उसी दाल में दूसरी दालों को मिला दिया जाएगा तो उसकी पौष्टिकता अधिक हो जाएगी, 100% हमको उसकी पौष्टिकता मिलेगी। तो यहाँ पर जो मेरा अभिप्राय यह है कि महंगे खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है
1: जी,
0: उनको ही आप इस तरीके से बनाएं कि वो खाना आपका पौष्टिक बने ताकि कि आप सेहतमंद रहें और आप स्वस्थ रहें।
1: बिल्कुल सही बात कही नमिता जी आपने। देखिए नमिता जी, महिलाओं के लिए पोषण की अब हम बात करें तो उनके भोजन में किन पोषक तत्वों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर आयरन का, कैल्शियम का और प्रोटीन पर?
0: बिल्कुल पुष्पा जी, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, एक उम्र के बाद कैल्शियम और आयरन की कमी होने लगती है, प्रोटीन की कमी होने लगती है। तो शुरू से ही हमें चाहिए कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बराबर बनी रहे, हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा बनी रहे, प्रोटीन की मात्रा बनी रहे। इसके लिए कैल्शियम के लिए हमको क्या करना है कि हमको दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अपनी जो डेली डाइट उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जैसे दूध है, दही है, पनीर है, इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। और पनीर यदि महंगा है तो हमको ये चाहिए कि हम एक तो घर पे भी हम बना सकते हैं पनीर को, बहुत आसान तरीका है, जरूरी नहीं हम बाजार से खरीदें उसको, घर पे भी बहुत आसानी से बहुत ही शुद्ध और अच्छा पनीर हमको मिल सकता है। और अगर हम पनीर भी नहीं बना सकते हैं तो हम दूध और दही का तो हमारी रोजाना की हमारी डाइट में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम मिलते हैं। कैल्शियम युक्त हमको खाद्य पदार्थ खाना चाहिए, जैसे केले में कैल्शियम बहुत है, बहुत ही सस्ता फ्रूट है, बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला है। तो अगर हम केला खाते हैं तो केले से हमको प्रचुर मात्रा में कैल्शियम प्राप्त होता है। इसी तरीके से यदि हम बात करें आयरन की, तो आयरन की शरीर में बराबर मात्रा बनी रहे इसके लिए हमको हरे पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, जो काले चने होते हैं उनका हमको सेवन करना चाहिए। तो इस तरीके से हरे पत्तेदार सब्जियां हम खाएंगे और चना होता है, चने में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, वो हमको लेना चाहिए। तो अगर इस तरीके से हम हमारे खाद्य पदार्थों को अगर हमारी महिलाएं खाएंगी तो उससे क्या होगा कि उनको आयरन बराबर मात्रा में मिलेगा, साथ ही हर महिला को एक गोली सप्ताह में आयरन की खानी चाहिए
1: जी।
0: ताकि कभी उसमें कमी अगर होती है, हम लोग ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं खा पाते हैं कई बार, तो आयरन की कमी होने लगती है बॉडी में, लेकिन यदि हम एक गोली खा लेंगे तो उससे आयरन की जो कमी हो रही है उसकी पूर्ति हो जाएगी
1: जी।
0: तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सप्ताह में एक आयरन की गोली, चाहे आप दिन तय कर लीजिए, गुरुवार कर लीजिए, बुधवार कर लीजिए या मंगलवार कर लीजिए, आप हर सप्ताह में एक आयरन की गोली हमको ले लेनी चाहिए। अगर हम इस तरह से ध्यान रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आयरन की कमी शरीर में नहीं रहेगी। और जो अभी बांसवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यहाँ पर एनीमिया बहुत ज्यादा है
1: जी,
0: और उसका एक ही कारण है कि हमारे खान पान में लापरवाही है, हम ध्यान नहीं देते हमारे खान पान में। तो बहुत सबसे ज्यादा जरूरत है कि पहले हम हमारे खान पान की आदतों को बदलें, अच्छी आदतों की शुरुआत करें। और सबसे ज्यादा जरूरी महिलाओं के लिए ये है कि सबसे पहले वो अपना ध्यान रखें, यदि वो अपना ध्यान रखेंगे तो परिवार पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगी, और यदि वो अपना ही ध्यान नहीं रख पाएंगी तो फिर वो परिवार का भी ध्यान नहीं रख पाएंगी। क्योंकि अगर महिला स्वस्थ है

0: तो बिल्कुल वो पूरे परिवार को बहुत अच्छे से देख पाएगी। और यदि वही स्वस्थ नहीं है और बीमार है तो वो परिवार की देखभाल भी नहीं कर पाएगी।
1: नमिता जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारी बहनों को दी कि हमें किस किस में आयरन मिल सकता है, कौन सी वस्तु खाने से हमें कैल्शियम मिल सकता है और क्या खाने से हमें प्रोटीन मिल सकता है। और मुझे उम्मीद है कि बहनें इस बात पर जरूर ख्याल रखेंगे। और नमिता जी, हमारी पारंपरिक रसोई में दालें हैं, मोटे अनाज हैं, हरी सब्जियां हैं, मौसमी फल और अंकुरित अनाज, जिससे कई पौष्टिक विकल्प भी होते हैं, तो क्या स्थानीय और पारंपरिक भोजन को हम सुपर फूड कह सकते हैं?
0: बिल्कुल पुष्पा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और बहुत ही अच्छा सवाल आपने यहाँ पर रखा है कि हम पारंपरिक और स्थानीय फूड को सुपर फूड कह सकते हैं। बिल्कुल, बस जरूरी है थोड़ी सी हमें मेहनत करने की
1: जी।
0: एक सुबह शाम का जो डेली रूटीन है उससे थोड़ा सा अलग हटकर हमको ध्यान देना होगा। जैसे कि बाजरे की रोटी, अभी सर्दियां आएंगी तो बाजरे की रोटी है, ज्वार की रोटी है, मतलब एक बहुत ही अच्छा अनाज है बाजरा, जो कि आयरन से भरपूर है, कैल्शियम से भरपूर है। तो ये स्थानीय फूड है और पारंपरिक फूड है, इन पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारी आदत में कि हमेशा हम गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन अब सर्दी का मौसम आएगा धीरे धीरे, तो हमको ज्वार है, बाजरा है और मक्की है, मक्की की जो राब बनती है
1: जी,
0: वो भी बहुत एक पारंपरिक फूड है। इसके अलावा बाजरे का खिचड़ा आपने सुना होगा,
1: जी हाँ,
0: बहुत ही सेहतमंद होता है। और इसके अलावा ज्वार भी एक बहुत ही सेहतमंद है। तो ये जो स्थानीय फूड है और जो कि अभी सर्दी आएंगी उसमें सीएल बथुआ
1: जी
0: बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में बाजार में मिलता है, तो उसका भी ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि बथुआ भी कैल्शियम और आयरन से भरपूर है। उसके तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, बथुए की कढ़ी बनती है, बथुए के पराठे हैं, पूड़ी है, बथुए का रायता है। तो जिन चीजों को आप ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, लेकिन उसका कितना उपयोग है और कितना स्वाद है उनमें, उस पर भी हमको ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि कुछ चीजें हमको बनाकर रखनी चाहिए, जैसे सर्दी आएंगी तो हमको लड्डू बना के रख लेने चाहिए, जिसमें सूखे मेवे के भी होते हैं, आटे को भूनकर भी उसमें गुड़ वगैरह डालकर जिसके लड्डू बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा मुरमुरा जो सस्ता भी मिलता है और एक बहुत ही बच्चों के लिए खासतौर से बहुत ही आयरन युक्त है वो और बहुत पौष्टिक है, उसको यदि हम, जैसे बच्चे आज कुरकुरे मांगते हैं, चिप्स मांगते हैं, अगर उसकी जगह हम मखाना है या मुरमुरा है इसको भूनकर इसमें थोड़ी सी मूंगफली मिलाकर यदि हम बच्चे को देंगे तो ये बच्चे के लिए सेहतमंद भी है और बहुत पौष्टिक भी है।
1: जी,
0: बच्चा जिद करेगा कुरकुरे के लिए या उसके लिए, तो ये चीज हम उस वक्त बच्चे को देंगे तो ये बच्चे के लिए सेहतमंद होगी।
1: नमिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सरल और उपयोगी तरीके से हमें पोषण का महत्व समझाया और ऐसी वस्तुओं के बारे में हमें बताया जो हमारे परिवार की रोजमर्रा जिंदगी में हम सब अपना सकते हैं, ऐसी चीजें जो हमें क्या खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। देखिए श्रोताओं, याद रखिए, पौष्टिक भोजन हमेशा महंगा हो ये जरूरी नहीं है, सही जानकारी और संतुलित थाली ही अच्छे स्वास्थ्य की असली कुंजी है। तो नमिता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारी बहनों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमिता जी।
0: नमस्कार।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तो राधा और कृष्ण का प्रेम, जिसमें रूपना भी है तो मनाना भी है और एक दूसरे से जुड़ी अनकही भावनाएं भी है। तो ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आपने भी सुना। तो ये ना बातें जो आपसे और भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, घोड़े की सुई हमें इसकी इजाजत नहीं देती। कोई बात नहीं, दोनों फिर मिलेंगे, करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए दीजिए पुष्पा सैनी को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा। नमस्कार।

सब कार्यक्रम सुन रहे थे एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का नई चैनल है। 5:30 होने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे मीका सिंह, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शब्बीर अहमद ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का, फिल्म का नाम है ओ माई गॉड।

आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म का नाम है बदला।

0: खो देखो
1: आया मातन को
0: देख के ऊपर देख तमाशा देख और तोड़ मटके।

0: विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है सलमान खान, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा है फैज अनवर ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का, फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर।
5: रानी, देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

0: स्टार्स के बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन।
1: मैं निकला ओ गडिले।

आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतकार है राजेश रोशन, फिल्म का नाम है खुद्दार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के

0: बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसुसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने 1-1 गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वाजिद खान और साथियों की आवाजों में सुनिए समीर का लिखा गीत। संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है रंगरेज।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है, जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और साथियों की। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है मुकाबला।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अमित कुमार, शब्बीर कुमार, साधना सरगम और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है काला बाजार।

0: ऐसी कला है कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर

0: रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अगला गीत आप सुनेंगे कैलाश खेर, महुआ कामत और श्रद्धा पंडित की आवाजों में। गीत लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, फिल्म का नाम है देव।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
4: तराने नए पुराने।

0: विविध भारती से लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन किया। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। सर्वोच्च न्यायालय की मेजबानी में न्यायिक अधिकारी विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास। मंदिरों में जन्मोत्सव की तैयारियां। और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियों में तेजी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों को आज चुनाव चिन्हों का आवंटन किया गया। 41 जिलों के 10,245 वार्डों के लिए निर्वाचन आयोग ने आज निर्दलियों को चुनाव चिन्ह दिए। 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाओं के 77 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। अलवर के रिटर्निंग अधिकारी अंबालाल मीणा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उम्मीदवारों को लॉटरी सिस्टम के जरिए चुनाव चिन्ह बांटे गए हैं।
2: आज 4 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार इन सभी 300 उम्मीदवारों को 265 वार्डों में है, जिनमें राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी, 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको चुनाव उचित आवंटन का आज दिवस है। और इसमें जो राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी हैं उनको तो उनके जो प्रतीक राजनीतिक दल के लिए वो आवंटित हो चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों में जहां एक ही प्रतीक को एक से अधिक प्रत्याशियों ने यदि प्राप्त किया हुआ है तो फिर उसमें लॉटरी से अलॉटमेंट हुआ है, तो लॉटरी में जिसको वो सिंबल मिला है उसके यहाँ चला गया है। और 6 प्रत्याशियों को उनकी दूसरी या तीसरी चॉइस से यदि वो अन्य किसी ने नहीं भरी तो वो मिल जाएंगे।
1: इस बीच चुनाव का दिन नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में प्रचार गतिविधियां चरम पर पहुंचने लगी है। भाजपा और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। प्रत्याशी रैलियों और नुक्कड़ सभाओं के साथ ही घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। आज जन्माष्टमी पर मंदिरों में भी प्रत्याशियों को मतदाताओं से पक्ष में वोट करने की अपील करते देखा गया। इस बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का कल उदयपुर संभाग के दौरे पर रहने का कार्यक्रम है। वे भीलवाड़ा में रोड शो में शामिल होंगे। वे निकाय चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों तथा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। गौरतलब है कि 9 और 11

0: सितंबर को दो चरणों में मतदान के लिए कुल 38,891 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतगणना 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। यह तीन दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख तथा वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मंच के दौरान न्यायिक वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की उस उपलब्धि को राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इसरो ने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग कर सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के दो शिक्षकों सहित 82 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में चाकसू के टुमली का बास के उच्च प्राथमिक विद्यालय की डॉ. वर्तिका गुलाटी और झालावाड़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के डॉ. दिव्येंदु सेन को ये पुरस्कार मिलेगा। डॉ. वर्तिका को नवाचार, तकनीक और गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए तथा डॉ. दिव्येंदु को ग्रामीण विद्यार्थियों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से प्रशिक्षित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने इस अवसर पर शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए शिक्षकों को विद्यार्थियों का जीवन गढ़ने वाला प्रेरक बताया। श्री बागड़ ने शिक्षकों से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने और संस्कार निर्माण से जुड़ी शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने आज शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में एसीबी से संबंधित लंबित मामलों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी चर्चा की गई। दोनों अधिकारियों ने आगामी स्थानीय चुनाव के दौरान प्रदेश में आदर्श आचार संहिता से जुड़े विषयों पर गंभीरता के साथ काम किए जाने पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान के जन्म की खुशियां साझा करने के लिए सुबह से ही भक्तों में उत्साह बना हुआ है। लोग व्रत रखकर उपासना कर रहे हैं। आधी रात बाद जन्मोत्सव के साथ ही बधाइयां और विधिवत पूजा अर्चना के साथ पंच प्रसादी बांटी जाएगी। जयपुर के गोविंद देव जी, करौली के मदन मोहन, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर सहित सभी छोटे बड़े कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव की झांकियां सजाई गई है और विशेष आयोजन रखे गए हैं। ब्रज क्षेत्र से लगते भरतपुर और डीग जिलों में जन्माष्टमी को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे डीग संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जिले के पुंछरी कालोठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में सपरिवार दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की।
1: आज ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी डीग के पुंछरी कालोठा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। ब्रज के श्री कृष्ण मंदिर

0: के दर्शन करने के लिए देश भर से लोग यहां आ रहे हैं। इसके साथ ही आज से डीग में कामा उत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पर्यटन विभाग की ओर से ब्रज की संस्कृति को दर्शाने के लिए चित्रकला, मेहंदी और राधा कृष्ण प्रसाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। शाम को कामन के कोटोपर स्टेडियम में रासलीला का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं मध्य रात्रि में कामन के प्रसिद्ध मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
1: राजसमंद के श्रीनाथ जी में जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि परंपरागत रूप से 21 बंदूकों की सलामी दी जाएगी, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सेनाजी मंदिर नादवारा में सुबह से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज रहा है व वातावरण कृष्णमय बना हुआ है। नगर के रिसाला चौक में श्री कृष्ण लीलाओं से सुशोभित शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो नगर भ्रमण करेगी। रात्रि 12 बजे कान्हा के जन्म की खुशी में तोपों से 21 बार गोले दागे जाएंगे। दिनेश सोत्री, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद।
1: राजधानी जयपुर में जन्माष्टमी के मौके पर गोविंद देव जी सहित अंदरूनी शहर के मंदिरों में देर रात तक होने वाले आयोजनों को देखते हुए जयपुर मेट्रो की संचालन अवधि रात 1 बजे तक बढ़ा दी गई है। अंतिम मेट्रो मानसरोवर से रात 1 बजे रवाना होगी, जबकि बड़ी चौपड़ से ये 1:10 पर चलेगी। शहर में कल नंदोत्सव के आयोजन और शोभा यात्रा को देखते हुए यातायात व्यवस्था के आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर तेजी आई है और कई शहरों पर मॉनसून की अच्छी बारिश दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर और पूर्वी जिलों में आज सुबह से ही घने बादल छाए रहे और रुक रुक कर बरसात होती रही। बारा और हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में आज सुबह से रिमझिम बारिश का दौर बना रहा। सवाई माधोपुर में बीते 2 दिनों से हो रही बरसात से एक बार फिर नदी नालों में पानी की आवक हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
3: जिले में कल शाम से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर जारी है। कभी हल्की तो कभी तेज बरसात से नदी नाले उफान पर आने से अनेक स्थानों पर यातायात बाधित रहा और जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। तालाब और बांधों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। मानसरोवर बांध के जलस्तर 29 फीट पर पहुंच गया है। वहीं गिलाई सागर बांध के जलस्तर में आज दिन भर में 5 फीट की वृद्धि हुई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
1: मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के चलते 24 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार नए बने तंत्र का प्रभाव 6 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। विभाग ने भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा संभाग के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में डीजल स्कूल बसों के संचालन पर लगे प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 10 साल से कम पुरानी डीजल स्कूल बसों के संचालन पर लगी रोक पर अंतरिम राहत दी है। न्यायाधीश मनीष शर्मा की एकलपीठ ने परिवहन विभाग के आदेश पर अगली सुनवाई तक परिवहन विभाग, वायु गुणवत्ता और भरतपुर परिवहन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में पाली जिला राज्य में पहले स्थान पर रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि जिले को 92.96 अंक हासिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों तक योजना की जानकारी और पहुंच सुनिश्चित करने के साथ नियमित मॉनिटरिंग के चलते पाली को ये उपलब्धि मिली है। रैंकिंग में दूसरा स्थान राजसमंद जिले को हासिल हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन किया। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। सर्वोच्च न्यायालय की मेजबानी में न्यायिक अधिकारी विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, मंदिरों में जन्मोत्सव की तैयारियां और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियों में तेजी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है लक्ष्मीचंद नागर ने। 12 में नगर निकाय आम चुनाव के अंतर्गत नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सभी 6 निकाय क्षेत्रों में 905 अभ्यर्थियों ने कुल 1030 नामांकन पत्र भरे। जिले में अंतिम दिन तक कुल 1083 अभ्यर्थियों ने 1000

0: 225 नामांकन फॉर्म भरे हैं। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त नामांकन पत्रों की 1 सितंबर को समीक्षा की गई, जबकि कल दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए गए। चुनाव चिन्हों का आवंटन आज किया गया। पहले चरण में 12 अंता और सीस वाली में 9 सितंबर को तथा दूसरे चरण में छबड़ा, मांगरोल और अटरू में 11 सितंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी। नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी बाल मुकुंद असावा ने बीते दिनों सीस वाली नगर पालिका क्षेत्र का सघन दौरा किया। उन्होंने मतदान केंद्रों और मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए 10 मतदान बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथों पर मतदाताओं की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की। बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिलेवासियों को करोड़ों रुपयों की सौगात दी। बीते दिनों कृषि उपज मंडी में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर बीते दिनों 2 दिवसीय सघन HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के पहले दिन जिले भर में 611 बालिकाओं का टीकाकरण किया। जिले में अब तक 5,621 बालिकाओं का टीकाकरण हो चुका है। CMHO डॉक्टर जगदीश कुशवाहा ने बताया कि HPV वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिले में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन के दिन बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का वचन लिया, तो वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार देकर जीवन भर रक्षा का वादा किया। रक्षाबंधन की झलक चुनाव विभाग में भी देखने को मिली। चुनाव में 100% मतदान के उद्देश्य से जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं में स्वीप रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं ने भाइयों की कलाई पर वोट राखी बांधकर उन्हें आगामी नगर निकाय चुनाव में मतदान करने का संकल्प दिलाया। बीते दिनों कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सीमा लांघकर मादा चीता वीरा को जिले के शाहबाद वन क्षेत्र में देखा गया। उसका मूवमेंट बेहटा गांव के जंगल के निकट खेतों के आसपास देखा गया। पिछले करीब 2.5 साल में यह तीसरी बार है जब वीरा का मूवमेंट जिले के जंगलों में देखा गया है। बीते दिनों जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट सक्षम सखी शुरू किया। इसके तहत जिला मुख्यालय पर जिले का पहला ग्राम श्री मार्ट खोला गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा देने और ग्रामीण दीदी की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। वन धन केंद्रों के माध्यम से बनाए इन समूहों का उद्देश्य महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों को मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराना है। बीते दिनों श्रावण मास के चलते जिले में कांवड़ यात्राओं की धूम रही। दुतरिया गांव में शिव भक्तों की ओर से दूसरी कांवड़ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। कांवड़ यात्रा अंता के नागदा स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। इसी के साथ 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश सिंझिया बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आवणरे साथ ही प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह आवंटन करिया। ब्रिक्स देशारा मुख्य न्यायाधीशारो सम्मेलन आज नवी दिल्ली में शुरू। सुप्रीम कोर्ट री मेजबानी में न्यायिक अहलकार न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बतल करेला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी

0: मथे आज प्रदेश भर में धार्मिक उमाव, मिंद्रा में जन्मोत्सव री तैयारियां और राज्य में अगुणी और दिखनाद जिला में बिरखारी गतिविधियां में तेजी। समाचार रे साथे मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रदेश में 309 नगरीय निकाय में होवण वाला चुनाव सारू उम्मीदवार ने आज चुनाव चिन्ह दे दीजिया है। 41 जिला रा 10,245 वार्ड सारू निर्वाचन आयोग आज निर्दलीय और तीजा मोर्चा दलानी चुनाव चिन्ह बांटिया। 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिका रा 77 वार्ड में निर्विरोध चुनाव हुए है। अलवर रा रिटर्निंग अहलकार अंबालाल मीणा बतायो कि निर्वाचन आयोग रा निर्देश माथे उम्मीदवार ने लॉटरी सिस्टम री मार्फत चुनाव चिन्ह बांटी जिया।
1: आज यानी 4 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार इन सभी 300 उम्मीदवारों को 265 वार्डो में है, जिनमें राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी, 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको चुनाव प्रतिनिधित्व का आज दिवस है। और इसमें जो राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी हैं उनको तो उनके जो प्रति राजनीतिक दल के लिए वो आमंत्रित हो चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों में जहां एक ही प्रतीक को एक से अधिक प्रत्याशियों ने यदि प्राप्त किया हुआ है तो फिर उसमें लॉटरी से अलॉटमेंट हुआ है, तो लॉटरी में जिसको वो सिंबल मिला है उसके यहां चला गया है और शेष प्रत्याशियों को उनकी दूसरी या तीसरी चॉइस यदि वो अन्य किसी ने नहीं भरी तो वो मिल जाएगी।
0: ई बीच चुनाव रो दिन नजदीक आवण रे साथ ही प्रदेश भर में प्रचार गतिविधियां चरम माथे पुगण लागी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों खास दला खुदरा उम्मीदवार ने जीतावण सारू ठावा नेताओं ने मैदान में उतारनो शुरू कर दियो है। उम्मीदवार रैलियां और नुक्कड़ सभावां रे साथ ही घर घर जार लोगों मिल रहा है। आज जन्माष्टमी माथे मिंद्रा में उम्मीदवार मतदाताओं पगस में वोट करण सारू अरज करता दिख्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माई काले उदयपुर संभाग रा दौरा माथे रहेला, वे भीलवाड़ा माय रोड शो माय भेड़ा वेला और निकाय चुनाव ने लेर जन नुमाइंदा और पार्टी ओहदादारा री मीटिंग ले वेला। ध्यान जोग है के 9 और 11 सितंबर ने 2 चरण माय वोट सारू कुल 38,891 उम्मीदवार मैदान माय है। वोटों की गिनती 14 सितंबर ने वेला और अध्यक्ष रो चुनाव 21 सितंबर ने वेला। ब्रिक्स देशारा मुख्य न्यायाधीशा रो सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ई मंच री मेजबानी कर रही है और 3 दिन रो मंच न्याय बंदोबस्त, अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटारा, प्रौद्योगिकी और सतत विकास समेत कई मुद्दा माथे बतलरो मौको देवेला। इनमें ब्रिक्स सदस्य देशा और भागीदार देशा रा मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय रा न्यायिक प्रमुख और ठावा न्यायिक नुमाइंदा हिस्सों ले रिया है। इस दौरान भारत रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान रा न्यायिक नुमाइंदा मंडल रा प्रमुख रे साथ दो पक्षारी मीटिंग करेला। भारत अंतरिक्ष हल्का में एक और मोटी कामयाबी हासिल करी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज तड़के श्रीहरिकोटाओं GSLV-F17 रॉकेटरी मार्फत देश रा पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 रो कामयाब प्रक्षेपण करियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो री ई कामयाबी ने देश सारू मान रो भगत बतावता कहो कि आ कामयाबी भारत रा अंतरिक्ष हल्कारी ठावी नवाचार और बदता भूता ने दर्शावे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कामयाब प्रक्षेपण री सराहना करता देश रा वैज्ञानिका ने शुभकामना दी है। इसरो प्रमुख वी नारायणन ई कामयाबी माथे कहो कि वो मिशन भारत री पृथ्वी अवलोकन भूता ने और मजबूत करेला। वना कहो कि इसरो ई प्रक्षेपण वाहन ने काम में लेवता सब भारी उपग्रह ने स्थापित करिया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 रे चालू वन जावन पाथे ओ भू कक्षाओं भारत रो पहलो समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएला जो देश सारू महताऊ रणनीतिक डेटा दे सकेला। शिक्षक दिवस रे मौके काले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश रा 2 शिक्षक समेत 82 ठावा शिक्षक ने सम्मानित करेला। नवी दिल्ली में होने वाला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जलसा में चाकसू रा टुंगली का बासरी उच्च प्राथमिक विद्यालय।

0: डॉक्टर वर्तिका गुलाटी और झालावाड़ रा महात्मा गांधी राजकीय स्कूल रा डॉक्टर दिव्यंतु सेन ने ओ इनाम मिलेला। डॉक्टर वर्तिका ने नवाचार तकनीक और गतिविधि आधारित शिक्षण सारू और डॉक्टर दिव्यंदु ने गावाई हलकारा पडेसरा ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शिखावण देवण सारू ओ इनाम दियो जायला। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ई मौके शिक्षका ने शुभकामनावा दी है। वणा पहली रा राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने याद करता शिक्षका ने पडेसरा रा जीवन गढ़न वाला बताया। श्री बागड़े शिक्षकों पडेसरा रा बौद्धिक बुता ने बधावण और संस्कार पैदा करण जोड़ी शिक्षा देवण री अरज करी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक गोविंद गुप्ता आज शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास मिलिया। ई दौरान प्रदेश में एसीबी जुड़िया विचारू मामला और घूस के खिलाफ सरकारी जीरो टॉलरेंस नीति माथे बतल करी। दोनों एहलकार आवता निकाय चुनाव रे दौरान प्रदेश में आदर्श आचार संहिता जुड़िया मुद्दा माथे सावचेती रे साथे काम करण माथे जोर दियो। लाडो प्रोत्साहन योजना लागू करण में पाली जिलो राज्य में पहली ठोड माथे रियो है। जिला चिकित्सा एहलकार डॉक्टर विकास मारवाल बतायो कि जिला ने 92.96 अंक हासिल हुआ। वणा बतायो कि लाभार्थियां ताई योजना री जानकारी और पहुंच तय करण रे साथे बरोबर मॉनिटरिंग रे चालता पाली ने आ कामयाबी मिली है। रैंकिंग में दूजी ठोड राजसमंद जिला ने हासिल हुई है। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी रो त्यौहार आज प्रदेश भर में धार्मिक उमावरे साथे मनायो जावे। भगवान कृष्ण जन्म की खुशियां साझा करण सारू सवार हुई श्रद्धालुओं में उमाव बनोड़ो है। लोग व्रत राखने उपासना कर रिया है। आधी रात पछे जन्मोत्सव रे साथे बधाइयां और विधिपूर्ण पूजा रे साथे पंच प्रसादी बांटी जायला। जयपुर रा गोविंद देव जी, करोई रा मदन मोहन जी, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मिंदर समेत छोटा मोटा कृष्ण मिंदरा माए जन्मोत्सवी झांकियां सजाई जी है और खास आयोजन वेरिया है। ब्रज हल्काऊ लागता भरतपुर और डी जिला माए जन्माष्टमी ने लेर लोगा माए न्यारोई उमाव देखने मिल रही है। हमारी डी खबर नवीस बतायो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिला रा पूछरी का लोठारा श्री नाथजी मिंदर माय परिवार समेत दर्शन करने प्रदेश री खुशहाली समृद्धि री कामना करी।
1: आज ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी डी के पूछरी का लोटा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। ब्रज के श्री कृष्ण मंदिरों के दर्शन करने के लिए देश भर से लोग यहां आ रहे हैं। इसके साथ ही आज से डीग में कामा उत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पर्यटन विभाग की ओर से ब्रज की संस्कृति को दर्शाने के लिए चित्रकला, मेहंदी और राधा कृष्ण प्रसाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। शाम को कामवन के कोटोबो स्टेडियम में रासलीला का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं मध्य रात्रि में कामवन के प्रसिद्ध मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
0: राजसमंद राज श्री नाची माए जन्माष्टमी माथे आधी रात रीत मुजब 21 तोपारी सलामी दी जायला। और ब्यूरो हमारा खबर नवीसू।
2: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रीनाथ जी मंदिर नादवारा में सुबह से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज रहा है व वातावरण कृष्णमय बना हुआ है। नगर के रिसाला चौक में श्री कृष्ण लीलाओं से सुशोभित शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो नगर भ्रमण करेगी। रात्रि 12 बजे कान्हा के जन्म की खुशी में तोपों से 21 बार गोले दागे जाएंगे। दिनेश सोत्रीय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद।
0: राजधानी जयपुर माए जन्माष्टमी रे मौके गोविंद देव जी मिंदर समेत शहर मायरा मिंदरा माए देर रात ताई होने वाला आयोजन ने देखता जयपुर मेट्रो रा संचालन भगत ने रात 11 बजे ताई बधा दी लीजिया है। मेट्रो मानसरू रात 1 बजे रवाना वेला, जबकि बड़ी चौपड़ू आ रात 1:10 माते रवाना वेला। शहर माए काले नंदोत्सव रा आयोजन शोभा यात्रा ने देखता यातायात रा जरूरी बंदोबस्त करी जिया है। नवे मौसम प्रदेश में बिरखरी गतिविधियां में उतार चढ़ाव रे बीच आज फिरों की हल्का माए मानसून मेहरबान रियो। राजधानी जयपुर और अगुणी जिला में आज सवार में घना बादल छाई जा रिया और रुक रुक ने बिरखा वे तीरी। बारा और हड़ौती हल्कारा जिला में आज सवार में रिमझिम बरसात रो दौर चाल तो रियो। सवाई माधोपुर माए लाडला दो दिनों वेरी बिरखाऊं एक कर फिरू नदी नाला माए पानी री आवक वेरी है। मारा खबर नवीस बतायो कि जिला माए कई थोड़ा जल भरावरा हालात पड़ी उड़ा है।
3: जिले में कल शाम से

0: बरसात का दौर रुक रुक कर जारी है। कभी हल्की तो कभी तेज बरसात से नदी नाले उफान पर आने से अनेक स्थानों पर यातायात बाधित रहा और जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। तालाब और बांधों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। मानसरोवर बांध के जलस्तर 29 फीट पर पहुंच गया है। वहीं गिलाई सागर बांध के जलस्तर में आज दिन भर में 5 फीट की वृद्धि हुई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
1: बंगाल री खाड़ी माए बनिया कम दबाव रा सिस्टम रा असर हो 24 जिला माए तेज बिरखारो अलर्ट काढ़ी जो है। मौसम महकमा मुजब नुआ बनिया तंत्र रो असर 6 सितंबर ताई चालता रहन री आस है। महकमो भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा समागरा घनकरा हल्का माए बिरखारे साथे तेज हवा चालन री आस जताई है। कोटा और भरतपुर समागरा कुछ हल्का माए भारी बिरखाई वह सके है। न अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन गिराओ। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आउन रे साथ ही प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह आवंटन करिया। ब्रिक्स देशारा मुख्य न्यायाधीशों रो सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू। सुप्रीम कोर्ट की मेजबानी में न्यायिक अहंकार न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बतल करेला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी माथे आज प्रदेश भर में धार्मिक उमाव। निंद्रा में जन्मोत्सव की तैयारियां। पर राजेरा अगुणी और दिखनाथ जिला में बिरखारी गतिविधियां में तेजी। इनके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करो जाएगा। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसुड़ा का यही चैनल है। शाम के 7 बजने को है। अब सुनिए कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम हमारे वाला सब किसान भाई बोने ने धर्मिष्ठानो राम राम राम राम। देखो भाई मैंने आज तो विषय दारो है अपने कृष्ण जन्माष्टमी ने सबने किसान भाई बोने ने बधाई की शुभकामनाएं कि मैं देखो आप आ त्योहार आ रहे हैं जाई रहे हैं अपने इन भी ध्यान रखो है ना आज तो उत्सव नो दारो है हवा थे कि कोई मंदिर में के जाई रो है ने भजन कीर्तन में आनंद दई रहता कहा कि देखो ये भी जरूरी है क्योंकि आप एक पारिवारिक सगा अपने ने हर तरह से कि आप खेती बाड़ी में आते जुड़े तक जो सामाजिक कार्यक्रम है इनमें भी अपने ध्यान रखो जरूरी है ने आज तक कृष्ण जन्म उत्सव में तैयारी करी रहे हर मंदिर वगैरह गरिये वगैरह में एक अच्छो लगी रहो ना भाई आपको मेरो लगी रहो लगी रहो तक ने खरीस रहा था कहीं आपने ध्यान रखो जरूरी है आप किसान बहन बहने ने मेघ बाबा ने वाड़ भी जोई रहता कि ना भाई पानी की जरूरत है क्योंकि अपने जी खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल में भी आपने अपने जरूरत पड़ी गई थी कि ना भाई खूब टाइम थी गया तो वैसे तो अपने जो तो दूधिया अवस्था वगैरह थी रही थी कि मक्खी वगैरह है सोयाबीन है शाक सब्जी वगैरह तो इनमें भी अपने पानी की जरूरत होती तो मेघ बाबा ये भी अपने हंड्रेड लीधु है ने काल तक थोड़ा थोड़ा पानी सलू भी थी गये आज तो कहीं जगह अच्छू पानी पड़ी भी रू है ने पड़े भी गये ने अपने संभावना भी लगी रही ना भाई वेतन दाड़ा पानी पड़ी रू है तो अपने जरूरत है मन में किसान भाई मन में खुशी थी गई है ना भाई जरूरी है तो ना भाई पानी थोड़ा अजी पड़ी जाए तो बढ़िया रहेगा क्योंकि देखो आपने एक मन का जीवन रहेगा ना भाई आप रहते तो बदा रहते तो अच्छे रहते आ रहे तो आप इच्छा बढ़ती रहे अपने इच्छा मन में इच्छा कार्य पूरी थाती है नहीं पर आप देखो भगवान भरोसे है सब बढ़िया थागा ने अपने हर तरह की मन नु तरी काम करो ना तो आपने अच्छू पाकि भी मिलेगा क्योंकि किसान भाई मैंने अपने जो भी खरीफ में फसल ने बुआई वगैरह कर रखी है ते मैं इमस करी रही कि मेरे तो खाएगा पाकेगा तो नहीं पाकेगा पानी पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा पड़ेगा तो वधार तो नहीं पड़ी जाएगा इन अपने मन में शंका भरी थी किस रहे ने इन वातन भी अपनी है कि ना भाई जरूरी है इन बात में भी ध्यान रखना जरूरी है कि देखो खरीफ में फसल में हवा मत है कि वधार पानी पड़ जाए तो भी नुकसान है कम भरे तो भी नुकसान रहे एटले खेती बाड़ी है एक तरह की जुओ है कि आप जीती भी सको ने हारी भी सको पर मन दुखी नहीं करव कि हर तरह की आपने एक व्यापू हो कि भाई हर समस्या नु समाधान आप पाए है तो आप ध्यान रखी सको नहीं हूं तो किसान भाई मैंने खेती बाड़ी में अनाज ने हाथे आज नानी मोटी फसल आप कहो कि भाई कोई फूलों की खेती करी रहो कोई फल सब्जी वगैरह उगड़ी रहे तो एक तरह की नकदी फसलें ही तो इनू भी उपयोग करीने आपकी आजीविका आमदनी बनाई रहता कहीं क्योंकि दीदी अनाज में फसल वगैरह उगाना तो आप चार महीना तरह महीना चार महीने इन वाड़ जरूरी पड़े तारे पास अपन पैसा देखा है नहीं साग सब्जी वालू काम एवं है कि बारह महीने बतरी घड़ी ने जो रोज ने तैयार थी जाए फल सब्जी वगैरह तो तोड़ी आवंगा वैसे आवंगा तो इन्हें थी कि आप जी रोज ना काम है भी निकली थी तो भी अपने मन लगेगा ना भाई बे पैसा आप खेती बाड़ी थी कि आवी रहो तक है तो मन में शांति भी मिले इन्हें आते अपने घर में पशु धन रखे ताकि कहा कोई मुर्गी पाली रहो कोई बकरिया पाली रही है कोई गाय है कि भैंस है तो इन तकी भी अपनी आजीविका बनाई देता कहीं मैं घना भाई एक तो कि फलों की खेती वगैरह करी घना भाई पूरी पपीता कर दीदी कहीं खूह करी रू कहीं करी रू है हर तरह की अपन कोई भी फल सब्जी वगैरह अनाज थकी अपने आजीविका ने आमदनी बनी थकी है ने आ मौसम में अपने वगैरह एट ध्यान भी नहीं रखू पड़े कोई भी नर्सरी वगैरह तैयार कर अपने खेती बाड़ी में लगाड़ दूंगा ने उगी भी आएगा ना पंद्रह महीना ने अंदर ही फल सब्जी वगैरह अपने मिली भी जाएगा ने आप जी रोज में काम में आप लई रहे तक हूँ तो इन भी ध्यान रहेगा तो इन्हें स्वर खाते खाते आप एक जगह वहां गई थी दर्शिका जी जिन भी तो इनने घेरे देखे तो इन घर में आंगना में देखो आप खेती बाड़ी वाला किसान भाई बने तो आप घर में अनाज वगैरह अमृत में उगाड़ी में खेतर में भी उगाड़ दो पर इनने घेरे गए तो मारे मन में एम थो कि भाई देखो घर में ना बाजार में भी बैठा था कहीं तो भी आप सानड़ी माते नानी मोटी कई भी जगह देखी हर तरह थी कि कोई ना कोई चीज में उपयोग कर रहता कहीं तो एटलू बढ़िया लगे लेकिन कि देखो आना कार्यक्रम के माध्यम से कि एक बीजे थे कि आप बातचीत करो ये कई बोन भाई हूँ कामकाज कर रो हर ते कर तक है तो इन माध्यम से भी आप एक बीजे थे कि हम बातचीत करो तो आपने नवी नवी जानकारी मिली जाए तो आज किसान भाई अपने आ दर्शिका जी तक की बात थी थी तो इनने तेरे बात हम कि भाई साग सब्जी वगैरह उगाड़ी रहे तक तो कया तरीके थे कि उगाड़ी रही ने इनमें थे कि इन हूँ फायदा है तो ये इनने बात हम थोड़ा संदेश भी आई पड़े हैं तो ये भी लिख दूंगा मैं पस्या गाड़ी बात करो।
1: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: राम राम।
0: राम राम।
4: तमार नाम हुए?
0: दर्शिका व्यास।
4: अच्छा, के गाँव नो हो के है, अपनो परिचय बताड़ो।
0: मारू नाम दर्शिका व्यास है, मू वासवाड़ा ने रेवा वाली हूँ। मारू घर घाटोल रोड मते आनंद विहार पिपलोत पड़े है।
4: अच्छा,
0: आपनों मैं आईकरी धर्मिष्ठा जी स्वागत करूं।
4: धन्यवाद आपनों भी, मैं आपनों भी स्वागत है आना कार्यक्रम में। आप खेती बाड़ी कार्यक्रम है तो आपड़े सब किसान भाई ने बहने हमरी रही तो इन्हें आई थी कि निकली रही थी, मन एम थी गयु देखो कटलू बढ़िया गार्डन वगैरह कर रहा है। क्यों ना साग सब्जी भी आप देखो बाजार में भी एटलू खूब कम लोग मले कि आटलो जागरूकता राखे ने भाई आटलू कामकाज करी रहता खाए। तो आज खास कर देखो बारिश ना तो मौसम सालीस रहता को ताना टाइम में आपने कई बात नु ध्यान रखू पड़े ने आपने भी आटली अच्छी जानकारी राखी ने केटलू बढ़िया गार्डन कर रखू है तेने बारा में बताड़ो कि देखो पर्यावरण ने हाथे आप शाक सब्जी वाले ने एटलू आप खुद नु घर नु जे कामकाज करेगा केटलू बढ़िया रहेगा। तो आप कई तरीके थे कि इन कामकाज करी रहो इन बारा में बताड़ो कि भाई आ सब्जी वगैरह है तो कई तरीके थे कि तैयार करो ने इन चीज बीज वगैरह है कि रोप वगैरह तैयार कर हूँ विधि थे काम करो तो आप बताड़ो।
0: सबसे पहले तो जेम के आपड़े घर में सब्जी कोई भी पुरानी थी जाए हड़ी जाए तो एना जे बीज निकले आमस मिट्टी में नाखी दू जेन थी कि आपड़े पौधा उगी जाए। जेम के थी गये मरस थी गये कारेला थी गये तो आमस आपड़े लाल बीजोड़ो थी जाए आपड़े फेंकी दू कचरा में नाखवा जगह ने मिट्टी में नाखी देवा तो मिट्टी में नाखवा थी कि ऑटोमेटिक जर्मिनेट थी जाए। बीजी बात कि बारिश ने टाइम में कोई भी आपड़े बीज नाख तो पौधो जल्दी से ग्रो करी जाए।
4: बिलकुल
0: ने आमे हूँ विशेष ध्यान बारिश में ध्यान रखवा वाली बात ई है कि जम के आपड़े कोई पौधो आपड़े नाखी ना ने एण में सबसे की पहले हूँ था

0: आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: देखो किसान भाई, मैंने दर्शिका जी कितनी बढ़िया जानकारी वाली कि देखो जी, घर में आप सब्जी वगैरह लागवा तरी फेंकी गए वगड़ी जाए तो इन खरीद में इनमें भी उपयोग करिए तक आए ने आप किसान भाई आप ट्रे वगैरह थे कि आजकल बीज वगैरह लावे बाजार थे कि वे ट्रे ग्रोथ करी में पसंद ना के तो आज एक आप एक तरह से की नई जानकारी मिली कि जी आप व्यस्त सीजे रहे आप फेंकी दो पाकिंगी हुए आ कहीं काम नहीं आएगा। तो आप तो देखो खेती बाड़ी में मिट्टी मिट्टी है, आप तक जावा आवाने की जरूरत नहीं, घर में आंगना में मिट्टी है तो इनमें से आज मर्स है टमाटर है इन हाकी दंगा तो आप यार एक तरह तक रोप तैयार थी जाएगा। आपने में वैसा रोप भी लगे तैयार करवाने जरूरत नहीं पड़ेगा तो आपने बे पेशी में फायदा भी कम कर सकवा। आप कई भाई खातर वगैरह तो सब किसान भाई बहने खातर नो तो उपयोग कर ही रहे कि देखो खेती बाड़ी है नहीं ना हाथ पशुधन है तो पशुधन जुड़ा तक है तो बे एक बीजा थी अपने काम करो ना तो केचुआ ने खाद वगैरह सब आपने कोई तरह की समस्या भी नहीं आएगा ने बे पैसों ना फायदा भी थाएगा। क्योंकि देखो अपने नर्सरी थी कि पौधा वगैरह लावा कि भी थी लावी व्यवस्था तो कितने मोगा वगैरह कई एक रूपये ना आया कोई बे रूपया कोई पांच रूपया हर अलग अलग फल सब्जी अनाज में जी अपने लाइट ने आवी रहता कहें कई पौधा ना रोप भी अपने महंगा मिले तो आजकल किसान भाई ने भी ये भी ध्यान रखू है कि ना भाई आ रोप आने तरह तक भी अपने काम कर सको। क्योंकि देखो फल सब्जी उगाड़ी से रहता कहो इन बीजे वगैरह अमे नुकसान थे पड़े तो करें फीकी दो तो इनो भी अपने उपयोग कर आ काम करूंगा तो कितने बढ़िया रहेगा ने दर्शिका जी कितनी बढ़िया जानकारी आली तो किसान बहन बहने आ हमरी भी होगा तो ये भी विषय करो कि ना भाई अपने भी आ बात अमल में लंगा तो काम आएगा। क्योंकि देखो कोई भी अपने आना कार्यक्रम के माध्यम से कि अपने नवी नवी जानकारी लावा ने अपने तरीका थे कि बताना क्योंकि देखो किसान बहन बहने नवी तकनीकी ने अनुसार अपने काम करव जरूरी है। क्योंकि अगर मोगा भाव नहीं सीजे रहे तो अपने मोगा भाव थे कि अपने बीज वगैरह लाओ तो भी अपने कितने पैसे की जरूरत पड़े पास रोप करो पास खातर लावा पास अपने पाकी कार मिले एट दड़ा अपने वाह जरूर पड़े पर आज नानी बातें ही इन थी कि अपनी आजीविका आमदनी बढ़ाई सके। क्योंकि देखो बूंद बूंद थी घड़ो भरी सके बूंद बूंद थी घड़ो खाली थी सके ने आपे तेरे आ खेती वाड़ी करवा वाले किसान भाई बहने तो खास आई बातें तो अपने ध्यान में रखू काम में ले भी जरूरी है इमने कि भाई आई हम भी ना कार्ड भी नहीं ना कार्यक्रम कितने किसान भाई बहने आना बैठी तक कहें कि देखो एक आ सोरा ने माध्यम थे कि एक बीजे थे कि बातचीत थी जाए तो अपने मन ने एम लगेगा हाँ भाई कहीं थी ने एक बीजे थे कि अपने देखो घर में सर ने अपने बातचीत आना सोरा ने माध्यम थे कि आने एक बे तक बात थी जाए तो मन हल्कू थी जाए नवी जानकारी भी मिली जाए तो आ बढ़िया आटली बात भी करी आटला संदेश भी हम नहीं ना आते अपने बात करी से अपने सब किसान भाई बहने कोई रोप लगाई गई कोई रोप लागी गए तैयार थी गया है कि भाई देखो फल सब्जी वालों काम एवं है कि बारह महीने बतरी कड़ी सालवा वालों है तो ये नवे नवे तरीके थे कि ग्रो न काम काज करी रहते कहीं तेन ध्यान रखी ने हर तरह थे कि आप कही रहे भाई काम काज तो हमेशा करव है पर बदलता मौसम में अपने खास कर खुद नु भी ध्यान रखू अपने पशुधन नु भी ध्यान रखू ने खास अपने जे हमारे फल सब्जी अनाज लगाड़ी रखे तो कहीं तो इनमें भी कीट वगैरह लगवानी संभावना रहे तो इन भी अपने खूब ध्यान रखू जरूरी है। क्योंकि हर तरह थे कि आप कही सकते भाई एट वही मेहनत करो ने मेहनत में अनुसार अपने पाकी ने नहीं मिले तो मन दुखी था एट्ले बातों खास कर ध्यान रखेगा तो बढ़िया रहेगा। ने किसान बहन बहने देखो बातें तो घनी कर दी थी ने आ सब किसान बहन बहने बैठी भी नहीं ने अवे आ संजय बत्ती ना टाइम ने आज तो विषय जाड़ो कृष्ण जन्माष्टमी तो किम ने कच्छ शू अपे कृष्ण भजन उम्र ने पसे आगड़ी बात करो।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co

देखो किसान भाई मैंने आटली बातचीत भी कर दी थी, आटलू बढ़िया गीत भी उमड़ी लीधु, पर बात करवानी इच्छा भी थी, पर आ टाइम नो मान राखू पड़े। आज तो आपणे सूटा पड़ो ने अगला कार्यक्रम में फेर मलंगा। राम राम, राम राम।

अभी आप चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम गैंग 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का मैं चैनल है। 7:30 होने को है थोड़ी देर में आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: खेती बाड़ी सुन बड़ा सब काश्तकार भाई लोगों ने महेश भाई को राम राम, और आशा जी आपने भी राम राम।
3: राम राम महेश भाई, खेती बाड़ी कार्यक्रम सुन बड़ा सगला श्रोताओं ने भी खूब खूब राम राम मारी।
2: देखो किसान भाई लोग जका बैठे ही और कृष्ण जन्माष्टमी को दिन तो है ही,
3: बिल्कुल सा,
2: और आज का दिन देखो रिमझिम जकी बरसात चल रही है, बिरखा चल रही है, तो बरसात को दौर वापस चाल पड़े है, और सुबह से आप देख रहे हैं कि जगह जगह मेघ छांट हो रही है। अब रात में भी देखो कतरी देर में बरस जाए, रात विरात कोई भीरो को नहीं,
3: बिल्कुल।
2: और सुबह उठ के देखा किसान भाई की खेत खलियान में ज्यादा बरस गयो तो पानी जमा तो न हो गया है, या साथ में अगर जमा हो गया तो भाई खेत में जो पानी की जो मेड़ से जो की जल निकासी है वह भी जरूरी है,
3: बिल्कुल,
2: कि ज्यादा पानी का जमाव न हो जाए और फसलों ने ठीक प्रकार से पानी लाग गयो। और जगह अपनी पशुशाला ही जगह अपना गाय भैंस अपना दुधारू पशु बंधेड़ा रहे में बाड़े में, तो रात में एक बार आपा जाके देख लेगा कि कटे बने में कोई मेछाट तो न लाग रही है, कोई फर्श माँ को गीलो तो न है।
3: बिल्कुल महेश भाई, देखो क्योंकि अबार आपा देख रहे पिछला 10-15-12 दिन से कि बिल्कुल बरसात जो कोई यूं छो गई, हाँ सावन में भी आधी बरसी राधी कोने बरसी, खासकर आपा बात करा अपने राजस्थान में तो कुछ एक जिला में फिर भी थोड़ी बहुत हुई चे, बाकी बरसात हुई कोने। अब आज सुबह से थोड़ा लाग रहे चे और आबाड़ा 3-4 दिन के लिए जो मौसम विभाग चे वो चेतावनी भी दे रखे चे भैया 3-4 दिन में चौकी बरसात होगा की संभावना चे, तो जो संभावना जताई जावे वह यही चे के लिए कि आपा सावचेती रखा, यह तो आभार बताया भाई खेती बाड़ी को भी ध्यान रखा, इसी साथ साथ पशुपालन में पशुशाला की जो सार संभाल चे उन बहुत जरूरी चे, क्योंकि एकदम से बरसात पड़ जावे तो पशुओं के नीचे वहां की जो बिछावन है बहुत जल्दी गीली हो जावे चे, बिछावन गीली तो पशुओं में संक्रमण फैलवा को ज्यादा वो संभावना रहे चे, क्योंकि आभार देखो हरियो चारो उगरो चे, पशु खावा भी जावे चे, कोई बार कोई तार कहीं लाग लुगा जावे घाव हो जावे, ये बरसात का मौसम में अगर सावचेती न राखी जावे ध्यान न दियो जावे तो उ घाव में संक्रमण हो जावे चे और फिर वो तेजी से फैले चे जो कि अपना पशुओं का स्वास्थ्य ने सीधो सीधो प्रभावित करे चे, इतई जरूरी चे कि पशुशाला की साफ सफाई को पूरो आप ध्यान दियो, वहां का दाना चारा

0: को ध्यान दो, कोशिश यही करो कि अगर पशुशाला में आपका पूरा जो ऊपर की छत है वह मजबूत पक्की छे तो बहुत ही बढ़िया। अगर कोड़ा छप्पर चाहे टीन टप्पर दे डाल रखे जो कोड़ा से टूटे फूटे चाहे बरसात को पानी आ रहे तो बिल्कुल ध्यान दियो सा, माछर माखी न पन पे ए ताई आप थोड़ी सी धुआं कर दो, थोड़ो सो कोई छिड़काव कर दो ताकि बचाव करो जावे, क्योंकि बचाव ही सुरक्षा छे।
1: बिल्कुल, देखो फर्श पर भाई कीचड़ कादो न रहे, छाट टपकती न रहे, कोई आड़ा दिवाड़ा से मे की छाट ना आवे, भेड़ बकरी हुए चाहे गाय भैंस हुए आराम से वह देखो सूखी फर्श पर आपका बैठ सके। और माने जो कहे भाई कोई जो कि अपना मच्छर ही कोई मक्खी है ये प्रकार का छोटा छोटा जीव जंतु परेशान न करे, तो बरसात में थोड़ी सी बाकी आवास व्यवस्था को थोड़ा सा माको
0: टीकाकरण को भी ध्यान रखे।
1: हाँ, चारा को भी ध्यान रखा कि तो अपा गलेडो या जो को संक्रमित चारो माने ने खिलावा।
0: और ध्यान आपा भी यो रखा कि अब एक चोको सो गीत भी भाई लोगों ने सुनावा।
1: बिल्कुल,
2: माखन खायो मोरी

0: मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया
1: जी।
0: सीमा मिश्रा की आवाज में भी बहुत चोखो भजन देखो आप सुनाया, बहुत ही चोखो लाग्यो।
1: उम्मीद छे सुनबारा श्रोताओं ने भी, काश्तकार भाइया ने भी चोखो लाग्यो होसी।
0: बिल्कुल। तो अब देखो जानकारी की बात करा तो पशुओं का माय परजीवी प्रबंधन और भ्रांतियां, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जानकारी देसी। तो दिरावा किसान भाई ने जानकारी
1: आओ सा सगलाई मिलर सुना।
2: आपने साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सहायक आचार्य पशुआ में परजीवी प्रबंधन भ्रांति और तथ्य पर बात कर रहा है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो कार्यक्रम में आप लोग घणो मानो स्वागत करा, राम राम सा।
3: राम राम सा।
2: और जीएम की आज को आपनो विषय है कि ढांडा में परजीवी प्रबंधन कई भ्रांतियां हैं, कई तथ्य है और आपना जो पशुपालक है वे परजीवियां से कहीं निपट सके है, एक ही बात आपा कराला। सब पहले यही जान पहचानला कि परजीवी कई होवे है और आम पशुपालक किया पिछाने कई लक्षण अपना ढांडा में दिखला।
3: सबसे पहले तो परजीवी की हम बात करें, परजीवी का संक्रमण होने के बाद पशुओं में जो आमतौर पर दिखने वाले लक्षण हैं, जैसे कि बहुत कमजोर रहना, खाना ज्यादा खाने के बाद भी उतनी ताकत शरीर में नहीं आ पाना, उत्पादन का कम होना, डायरिया हो जाना या फिर शरीर में खून की कमी हो जाना, इन सभी लक्षणों को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसमें परजीवी संक्रमण हो चुका है। परजीवी संक्रमण भी दो किस्म से आप देख सकते हैं, एक तो पेट के अंदर पाए जाने वाले कीड़े और एक शरीर के ऊपर मिलने वाले कीड़े। जो शरीर के ऊपर कीड़े मिल रहे हैं वो आप सामने से देख के पहचान पाएंगे, लेकिन जो पेट के अंदर कीड़े हैं उन्हें हमें इन लक्षणों के माध्यम से ही पहचानना पड़ता है और इसकी जांच आप अपने करीबी पशु चिकित्सालय में जाकर करवा के और फिर उसका उपचार ले सकते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, बात करा कि लक्षण दिखता ही आपने आमतौर अपना ढांडा ने ले जानो है, जो ढांडा को अस्पताल ले बैठे और बैठे जांच करवानी है और जैसे डॉक्टर साहब कहे भैया आपने इको इलाज शुरू करना है। प्रबंधन की बात आप कर रहे हैं, लक्षण पतो चालगो, अब प्रबंधन की तरीका से करना है, कई विधि है यो भी बताओ सा।
3: अपने जानवर को ले जाने की भी जरूरत नहीं है, आप खाली गोबर का सैंपल अगर ले जाके वहां पर जांच करवा के रिपोर्ट ले लेंगे तो भी इसका पता लगाया जा सकता है। दूसरा, प्रबंधन में हमें उनकी साफ सफाई का और उनके रख रखाव का बहुत खास ख्याल रखना है। उनके आसपास बहुत ज्यादा गंदगी इस किस्म की ना हो जिससे मक्खियां मच्छर और दूसरे कीड़े आएं। ये मक्खियां मच्छर भी बहुत सारी बीमारियां उनके लिए लेके आती हैं और उनको बहुत सारी बीमारियों से संक्रमित कर सकती हैं। उसके अलावा इनके खाने पीने का, इनके गोबर और खाने के किसी तरह से मिक्स होने का या इनके मल मूत्र का किसी खाने वाली चीज में मिल जाने का हमें खास ख्याल रखना है जिसकी वजह से इनका संक्रमण ना हो। बच्चों को खास तौर पर हमें बड़े जानवरों के साथ नहीं रखना क्योंकि उनसे निकलने वाला जो संक्रमण है वो बच्चों में और ज्यादा तीव्रता से हो सकता है और उनमें और ज्यादा तेज लक्षण देखने को मिल सकते हैं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे हैं परजीवियां रो प्रबंधन भी करनो है और बहुत सारी जो भ्रांतियां है बाने दूर करता हुआ जो तथ्य है जिन्हें आजकल की भाषा में ज्यादा समझे फैक्ट्स जिन्हें कहवे है, तो वहां पर आपा चला कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जो बहुत ज्यादा देखभाल में आवे है और प्रचलन में है, आपने भी सामना करना पड़े है और सटीक तथ्य काई है बताओ सा।
3: देखिए भ्रांतियों में जैसे कि हमारा ये मानना कि जितनी ज्यादा हम दवाई दें, कीटनाशक दें, उतना ही असरदार वो इलाज रहेगा। दवाइयां ज्यादा ना तो इंसान के लिए अच्छी हैं और ना ही जानवरों के लिए। सही तरीके से पहले हमें उसके गोबर की जांच करवा के और संक्रमण का पता लगा के ही दवाई देनी चाहिए। दूसरा, दवाई हमें हमेशा पशु चिकित्सक की गाइडेंस में देनी चाहिए। और एक और बात की दवाई देने के बाद हमें कभी भी हमें लगता है कि दवाई दे दी हमने और हम संक्रमण से हमने अपने जानवर को बचा लिया, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम सबको पता है राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर हर तरह की

0: विविधताएं आपको वातावरण की विविधताएं देखने को मिलेंगी, उसी हिसाब से बहुत सारे अलग अलग किस्म के संक्रमण भी देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी दवाइयां सभी के सभी परजीवियों पर या कीड़ों पर काम नहीं कर पाती, इसलिए बहुत ज्यादा दवाई देने से हम जानवर का भी नुकसान कर लेते हैं और अपना भी नुकसान कर लेते हैं। एक बात यह कि जानवर को बार बार दवाई देने से ना ही सिर्फ जानवर का बल्कि उसके उत्पादों का भी नुकसान होता है, तो हमें बहुत ज्यादा दवाई देनी नहीं है। हमें दवाइयों के साथ साथ इसके प्रबंधन पर ध्यान देना है, जिससे इसकी इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है या संक्रमण को कम किया जा सकता है, और उसके अलावा समय समय पर इसकी जांच करवाकर सही दवाई का पता लगाएं। हर बार हम अलग अलग दवाई देंगे जिससे दवाई की मारक क्षमता हमेशा बनी रहेगी। एक ही दवाई को बार बार देने से या कम देने से उसकी मारक क्षमता कम होती है और जानवरों पर असर उसका घट जाता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात यह भी तो है कि आप जरूरत से ज्यादा दवाई अपना ढांडा ने दे रहा हाँ और उत्पाद बराबर आप ले रहा हाँ, तो वो जो दवाई को असर है दूध जो आप ले रहे हैं तो दूध में भी आवेलो और वो मिनखा में भी जावेलो।
0: बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमें बहुत ज्यादा दवाई नहीं देनी और जो भी हमें दवाई देनी है वो हमें पशु चिकित्सक के गाइडेंस में देनी है। आज का हमें जो सबसे बड़ा हमको मुश्किल जो फेस करनी पड़ती है वो ये कि जब जानवर को हमारे पास लाया जाता है तो दो या तीन बार उसकी दवाई वो पहले ही किसान करके लाता है। खासकर कीटनाशक की जो दवाई है वो किसान या पशुपालक है वो अपने आप से दे रहे हैं, उनको ये बताया गया उस समय के लिए ये दवाई ठीक भी हो सकती है, लेकिन हर बार वही दवाई काम नहीं करती, जिसका पशुपालकों को ज्ञान कम होता है। इसलिए बार बार पशुपालकों से हम ये अनुरोध करते हैं कि जांच करवाएं, उसके बाद ही आप दवाई का, पशु चिकित्सक हैं उनसे पूछने के बाद ही आप उनको दवाई दिलवाएं, वो जानवर के लिए भी, आपके लिए भी और उसके उत्पादन के लिए भी सही रहेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, या तो बात हो रही कि मोटी मोटी जो भ्रांतियां हैं कि एक बार दवाई दे दी या कोई एक दवाई डॉक्टर बता दियो बिना जद आप आने ला गए जद दे दी, तो या तो गलत बात है ही है। अगर सही तरीका ही बात करी जावे, जी में आ जावे है परजीवियों से बिल्कुल निजात मिल सके अपना ढांडा ने और बिल्कुल स्वास्थ्य चोखो हो सके, कई तरीको है और क्यों जरूरी है प्रबंधन करनो परजीवियों रो, यू बताओ सा।
0: प्रबंधन अच्छा अगर होगा तो हम दवाई की मात्रा को घटा सकते हैं और दवाई की मात्रा को घटाने से पशु को भी निजात मिलेगी, उसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और हमें भी दवाइयों वाले उत्पाद नहीं ज्यादा झेलने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पशुपालक ये सोच रहे हैं, को ये बताया गया कि आप दवाई दोगे तो आप संक्रमण से निजात पा जाओगे, पर सिर्फ दवाई से संक्रमण से निजात नहीं पाया जा सकता। प्रबंधन बहुत जरूरी है, प्रबंधन के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जानवर के ऊपर शरीर पर पाए जाने वाले जो चीचड़ और इस तरह की बीमारियां हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इनको इनकी रोकथाम बहुत मुश्किल है। मुर्गी पालन अगर इसके साथ में की जाए तो मुर्गी कहीं ना कहीं उस टिक को, उस चीचड़ को खा के पशु का भी लोड कम करती है और अपना भी पेट भर लेती है। बहुत सारी जानवरों के ऊपर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है इन चीचड़ों को रोकने के लिए। जरूरत से ज्यादा अगर छिड़काव किया जाएगा तो वो जानवर के लिए भी हानिकारक है, जानवर के साथ में जो दूसरे उनके बच्चे हैं उनके लिए भी हानिकारक है, और दूसरा उनको चाट के और उसका टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इसलिए इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है कि दवाइयों के साथ साथ प्रबंधन और इस तरह के नुस्खे, जैसे पानी में पाए जाने वाली जितनी भी परजीवियों के संक्रमण के स्टेजेस हैं उनके लिए बतख पालन किया जा सकता है। बतख पालन उन पानी में उन स्टेजेस को खाएंगे तो वो संक्रमण आगे नहीं फैलेगा। मुर्गी को अगर हम साथ में पालते हैं जहां पर चीचड़ और इस तरह के इन्फेक्शन है जानवरों के ऊपर, तो मुर्गी उन चीचड़ के इन्फेक्शनों को भी कम करके और अपना पेट भी भर लेगी। तो इस तरह के प्रबंधन को छोटे छोटे को अपना के हम दवाइयों का इस्तेमाल कम कर सकते।
1: और ये तो बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर साहब बता रहा है कि जब आप पशुपालन कर रहे हैं, आज नवाचारा की बात आप कर रहा हाँ और एक सौ ज्यादा तरीका अपनावा हाँ तरक्की के ताई पीसो कमावा के ताई, तो न सिर्फ आप मुर्गी या बतख पालन कर परजीवियों को खतरो टाल सको हो बल्कि एक अतिरिक्त आमदनी को स्रोत भी आपने मिल जावे है। आपने साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सहायक आचार्य पशुआ में परजीवी प्रबंधन भ्रांति और तथ्य पर बात कर रहा है। डॉक्टर साहब तरीका री बात आप करे, आप बताया मुर्गी पालन आप कर सका हाँ, बतख पालन कर सका हाँ, रहबा की पशुआ का बाड़ा की भी कोई विशेष व्यवस्था आपने करनी चाहिए ताकि परजीवा से आपने थोड़ा सो निजात मिल सके।
0: प्रबंधन में बाड़े का एक बहुत खास रोल है। कैसा बाड़ा हम जानवर को रहने के लिए दे रहे हैं उसमें जानवर कितना सहज फील कर रहा है उसी से उसके प्रतिरोधक क्षमता है, उसका

0: गठन होगा। अगर जानवर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे, बहुत ज्यादा परेशान रहे, तो उसकी बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत घट जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी संक्रमण की चपेट में आ जाता है। तो बाड़े में खुली हवा हो, साफ सफाई हो, अगर हो सके तो बाड़ा नीचे से पक्का करें, जिसकी वजह से ये चीचड़ की कई स्टेजेस हैं, स्टेजेस मतलब जो इनके अंडे, उन अंडों से निकलने वाले बच्चे, बच्चों से बनने वाले निम्फ, ये छोटे छोटे जो अगर कच्चा बाड़ा है तो उस छोटे छोटे खड्डों में, क्रैक्स में ये घुस जाते हैं और वहां पर ये अपने आप को बचा के रख लेते हैं दवाइयों से भी और हमारे जो डेली हम साफ सफाई करते हैं उससे भी। तो बहुत ज्यादा जानवरों पर दवाई अपनाने के बाद भी आप 2 या 3 महीने में फिर से वो चीचड़ का इन्फेक्शन उस पर वापस देखोगे, कारण वही निम्फ जो खड्डे में घुस गया था। पक्का बाड़ा होगा तो साफ सफाई इफेक्टिव रहेगी, इस तरह के खड्डे उनको नहीं मिलेंगे जहां पर वो छुप के बैठ जाएं और उसकी वजह से इन्फेक्शन कम किया जा सकता है। तो प्रबंधन में बाड़ों का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, बाड़े में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों का, जिनमें की ये प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होती, उनको अगर हम बड़ों के साथ रख रहे हैं तो उनमें इन्फेक्शन जो होगी उसकी तीव्रता बड़ों के मुकाबले कई ज्यादा होगी, तो उनको भी अलग रखना। तो ये छोटे प्रबंधन के जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इनको इस्तेमाल करके हम परजीवी प्रबंधन को और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं और दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बाड़ारी प्रबंधन की भी बात करें, खान पीन का प्रबंधन की बात करें, की तरीका को खानो पीनो देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो पशु पालक हो कहवे में समय समय पे नमक को पानी पिलावा, हाँ गर्म पानी पिलावा, जी सुबह रेचक क्रिया बाकी हो जावे है, तो वो सही रहे कहीं।
0: खाने पीने के प्रबंधन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, जो पशुपालक भारतीय नस्ल के जो पशु रख रहे हैं वो ये जानते हैं कि इनमें इस तरह के जो इन्फेक्शन हैं, कीड़ों का संक्रमण, ये बहुत कम देखने को, जो मैंने आपको शुरू में जितने भी लक्षण बताए ये भारतीय पशुओं में देखने को बहुत कम मिलेंगे, और जिनके पास क्रॉस पशु उनको ज्यादा मिलेंगे,
1: देसी नस्ल में,
0: देसी नस्ल में कम मिलेंगे। और देसी नस्ल में कम मिलने का कारण यही है कि देसी नस्ल जो है उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। अगर उस प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर उनको जो खाना जितना उनको चाहिए अगर वो दे दिया जाए तो जरूर उनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, है ना। जानवर के अंदर अगर किसी तरह के कीड़ों का संक्रमण है तो आप ये मान के चलें कि उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन जो वो खाने से ले रहा है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है उन कीड़ों के तरफ, तो वो कीड़ों को ना मिलके आपको मिले, इसके लिए 10% प्रोटीन अगर हम जो खाने में जितना रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर अगर 10% हम बढ़ा दें, यानी खाना जितना हम दे रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा और दें, तो उससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और पैरासाइट के होने के बावजूद, यानी कीड़ों के होने के बावजूद भी उसका उत्पादन बढ़ेगा। यही जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उसमें हमें दवाई का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है अगर संक्रमण कीड़ों का हो जाए तो।
1: तो कुल मिलाकर आपकी बात से मैंने एक बात यह समझ में आई कि सबसे ज्यादा बड़ी भ्रांति जो पशुपालका में चाले है कि देसी नस्ल में उत्पाद कम मिले है, यह सरासर भ्रांति है, क्योंकि उत्पाद तो बाको चोको हो सके है, जैन की डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि देसी नस्ल का ढांडा में परजीवियारा लक्षण कम दिखाई देवे है, पर बाने जो खानो चारो दानो आपा दे रहे हैं वो बाकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावा में लाग रहे है, इसलिए उत्पाद कमा रहे है। अगर जो खानो आपा दे रहे हैं बिना संतुलित मात्रा में तो देवा ही, थोड़ा सा ज्यादा देवाला, बेसी देवाला, तो परजीवियां सु भी लड़ेला और उत्पादन भी चोखो मिले लो। डॉक्टर साहब बात करा, या तो प्रबंधन भी आप बात करें की तरीका से कर सका, अगर सटीक रोकथाम की बात करा तो की तरीका को विधि आपने अपनानी है, की तरीका से रोकथाम करनी है परजीवारी, ये भी बताओ सा।
0: सटीक तरीके से हमारे जितने भी पशु चिकित्सक हैं और पशु चिकित्सालय हैं वहां पर पूरा इनका डिवर्मिंग शेड्यूल, इनका वैक्सीनेशन शेड्यूल, ये सब बना हुआ है। वैक्सीनेशन शेड्यूल मतलब जो टीकाकरण, इनका टीकाकरण जो होना है, जो इनको कीटनाशकों की दवाई देनी है, इसका पूरा शेड्यूल पशुपालक और पशु चिकित्सालय इनके बीच में दिया गया सरकार द्वारा। देखने की बात इसमें थोड़ी सी ये है कि राजस्थान, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर क्योंकि बीमारियां अलग अलग जगह पर अलग अलग मिल सकते हैं, तो आपको अपने उस जगह के जो भी पशु चिकित्सालय हैं वहां पर जाके पशु चिकित्सक की सलाह से उसका समय पर टीकाकरण और समय पर अगर आप कीटनाशक दवाई उसको दिलवा रहे हैं जांच के बाद, तो वो आपके जो जानवर की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पूरे राज्य में एक जैसा टीकाकरण तो है, लेकिन पूरे राज्य में एक जैसा दवाई का जो सिस्टम, ये कीटनाशकों का जो सिस्टम है, ये अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने एरिया के जो पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह से ये करना ज्यादा सही।
1: पशुओं में परजीवी प्रबंधन

0: भ्रांति और तथ्य विषय माते डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सहायक आचार्य PGIVER कॉलेज से आया और बहुत चौकी जानकारी माने दिया। इसके लिए आप लोग घनो घनो धन्यवाद सा।
1: और धन्यवाद चंचल बहन ने भी देवा की भी अति चौकी जानकारी दिलाई डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी से की पशुओं का माए परजीवी प्रबंधन और भ्रांतियां।
2: बिल्कुल सा। और धन्यवाद के साथ एक गीत भी सुना देवा।
1: सुनाओ एक चौको सो लोक गीत।

0: महेश भाई
1: सीमा मिश्रा को गए हो सपन जी की तो सपना सा तो दूर आवा हकीकत में चले आवा क्योंकि स्टूडियो की गाड़ी कह रही है कि आज को जी को कार्यक्रम छे खेती बाड़ी को टाइम पूरा हो तो जा रहे छे तो दिराओ आज्ञा आशा ने
0: और महेश भाई ने देवा आज्ञा करा सबने
1: राम राम सा।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं लगान फिल्म से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और आशा भोसले ने। गीतकार जावेद अख्तर हैं, संगीत ए आर रहमान का।

खानदान फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल हैं, रवि का संगीत।

आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे लिखा और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने। फिल्म का नाम गीत गाता चल।

मीरा फिल्म के गीत, मीरा फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं आपको वाणी जयराम की आवाज में। मीरा बाई के लिखे गीत को संगीत से सजाया है पंडित रविशंकर ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं ब्लफ मास्टर फिल्म से। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में यह गीत है राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मेरी वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन।

रिपोर्ट्स इस स्कैन कार्यक्रम के पश्चात समाचार प्रसारित किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर उर्दू में प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में। भारत हांगकांग को 137 रन से हराकर महिला क्रिकेट टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। पिकल बॉल विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, अब तक 37 पदक अपने नाम किए। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज का अहमदाबाद में भव्य उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, गुजरात और भारत वैश्विक स्तर पर खेल आयोजन का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर। और भारत जापान राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जापान के साथ टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए बैडमिंटन कोर्ट से आई एक बड़ी खबर के साथ, जहां सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स कारूप रस्मुसेन को 21-13, 16-21 और 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत का सफर आज समाप्त हो गया, उनको हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। और इस मैच पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, क्या शानदार आज का खेल रहा, स्पेशली वो तीसरा गेम जहां एक वक्त पे लग रहा था कि मुकाबला हाथ से निकल रहा है, लेकिन कितनी स्पेशल है ये जोड़ी की हर बार कमबैक करती है, फाइटबैक करती है, जीतती और भारत की उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ती है।
1: जी शक्ति, बिल्कुल कांटे का मुकाबला था, जहां तीसरे सेट तक जो विजेता है उसका पता नहीं चल पा रहा था, वहां सात्विक चिराग ने वापसी करते हुए मुकाबले को अपनी ओर खींचा और एशियन गेम्स से ठीक पहले इस टूर्नामेंट में लय पकड़ना काफी हद तक इशारा करता है कि एशियन गेम्स 2023 में इस जोड़ी ने गोल्ड जीतकर जो कारनामा किया था उसे दोहराना चाहेगी। सात्विक चिराग सबसे सफल भारतीय जोड़ी है बैडमिंटन में, और इसके अलावा इन्होंने एशियन गेम्स 2023, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ 2022 में थॉमस कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके भारत के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। 2023 में नंबर एक स्पॉट इन्होंने हासिल किया था, इससे पहले 2022 BWF चैंपियनशिप में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। इसके अलावा शक्ति बताना चाहूंगा, इंडोनेशिया ओपन 2023 हो या सिंगापुर ओपन 2026, हर जगह खिताब जीतकर भारतीय जोड़ी ने अपने आप को साबित किया है। साथ ही साथ एक मुकाबला और, आज एक और टूर्नामेंट चल रहा है इंडोनेशिया मास्टर्स, जहां पर भारतीय खिलाड़ी अनमोल खरब और मानसी सिंह ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारत के लिए डबल गुड न्यूज, जहां मानसी सिंह और अनमोल खरब भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आपने जिस तरह बताया कि एक बहुत लंबी तहरिस्त है इन खिलाड़ियों के पदकों की और इनके प्रदर्शन की, कह सकते हैं कि भारत की सक्सेसिव जीत की जोड़ी है, क्योंकि जब भी उतरती है पदक के साथ वापस आती है। और जिस तरह बीता वर्ष गुजरा, इंजरीज थी, कभी सात्विक फिट होते तो चिराग के साथ इंजरी, लेकिन उससे पार पाती हुई ये जोड़ी अब नजर आ रही है। और उम्मीद होगी कि एशियन गेम से ठीक पहले चाइना मास्टर्स का खिताब जीते और एक बहुत शानदार लय के साथ एशियन गेम्स में अपना गोल्ड मेडल डिफेंड किया जाए। और स्क्वाश के मैदान में भी एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज रात तकरीबन 11:15 पर खेला जाएगा, जहां लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया की शिव सांगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम की नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। कार्यक्रम में अब बात क्रिकेट के मैदान की। भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर महिला क्रिकेट टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत के 193 रन के जवाब में हांगकांग की टीम मात्र 56 रन पर सिमट गई। इस शानदार जीत के साथ ही हरमनप्रीत एंड कंपनी

0: ग्रुप ए में प्लस 5.775 की नेट रन रेट के साथ शीर्ष स्थान पर है। सुनते हैं इस मैच पर यह रिपोर्ट।
1: स्टार भारतीय बल्लेबाज उप कप्तान स्मृति मंधाना का बल्ला कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जमकर गरजा। स्मृति ने 64 गेंदों पर 124 रन की शानदार शतकीय पारी खेलते हुए न सिर्फ भारत की जीत पक्की की बल्कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कई कीर्तिमान भी अपने नाम किए। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट गंवाकर 193 रन बनाए। मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ बतौर सलामी जोड़ी 48 गेंदों में 74 रन की साझेदारी की। हांगकांग के लिए मरीना लैम्पोलो ने 2 विकेट तथा रुचिता वेंकटेश और जाइलीन कोर ने 1-1 विकेट लिए। भारत के इस विशाल लक्ष्य के जवाब में हांगकांग की पूरी टीम 20 गेंद शेष रहते मात्र 56 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। हांगकांग टीम का कोई भी खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सका। टीम की पारी का आलम यह रहा कि 11 में से 8 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। पहले मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाली दीप्ति शर्मा ने इस मैच में भी 3 ओवर में महज 9 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि नंदिनी शर्मा, श्रीधरणी और प्रेमा रावत ने 2-2 सफलताएं हासिल की। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा शतक लगाने वाले स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही स्मृति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। तीनों प्रारूपों में कुल मिलाकर उन्होंने 10,880 रन बना लिए हैं। स्मृति ने भारत के पूर्व कप्तान मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा। उप कप्तान मंधाना के बल्ले से निकला ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18वां शतक था, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाला खिलाड़ी भी बना दिया है। आइए सुनते हैं इस ऐतिहासिक क्षण पर भारत की इस स्टार खिलाड़ी ने क्या कहा।
2: आई ऑलवेज फेल्ट दिस इज माय जॉब, आई नेवर थॉट ऑफ एनीथिंग एल्स देन दैट रिकॉर्ड, द नंबर्स, द अमाउंट ऑफ मैचेस यू विन फॉर इंडिया, एंड दैट इज अ मेजर व्हिच यू टेक बैक। यू डोंट टेक बैक व्हाट हाउ मेनी रन्स और रिकॉर्ड्स यू हैव ब्रोकन, बट या समथिंग व्हिच आई थिंक आई रियली प्राइड माय सेल्फ इज हेल्पिंग पीपल अराउंड, बीइंग देयर फॉर द अदर बैटर्स, एंड होपफुली देयर विल बी 3-4 मोर इन द लिस्ट ऑफ 10,000 फ्रॉम द इंडियन सेटअप, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू बी मेजर्ड विद। Grown up watching Mitali Ji bat, she's been such a idol for everyone growing up. I never in my dreams ever imagined that I would get 10,000 and or go past her.
1: अब एशिया कप में अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में कल भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। सेमीफाइनल में पहले जगह पक्की कर चुका भारत पाकिस्तान पर जीत दर्ज करके अपने ग्रुप अभियान का शानदार समापन करना चाहेगा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन।
0: पाकिस्तान के मैच से ठीक पहले ये शतक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कई गेंदबाजों की नींद उड़ाने का काम करेगा। विशेष श्रोताओं को ये जरूर बताइए कि अगर आंकड़ों की किताबों को टटोला जाए तो कितना बड़ा ये रिकॉर्ड है कि आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महिलाओं की तरफ से सबसे अधिक रन और सबसे अधिक शतक।
3: भारत के लिए ये गौरव की बात है क्योंकि इससे पहले भी ये रिकॉर्ड जो है मिताली राज के नाम था, जिन्होंने 10,868 रन बनाए थे, उनका ही रिकॉर्ड पीछे छोड़कर स्मृति मंधाना नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। और अभी टॉप 5 में अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो स्मृति मंधाना और मिताली राज दो नाम आते हैं। और अगर जैसा कि मिताली राज ने कहा कि वो सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को देखना चाहती हैं टॉप 5 में, तो हरमनप्रीत कौर एक प्रबल दावेदार है जो 5वें नंबर पर पहुंच सकती है। वो 9076 रन बना चुकी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और वो सिर्फ स्टेफनी टेलर से पीछे हैं जिन्होंने 9449 रन बनाए हैं।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि स्मृति मंधाना ने कहा भी कि वो चाहती हैं कि कम से कम 3 से 4 खिलाड़ी इस टॉप 10 की टेबल पर नजर आए, तब भारत का दबदबा साफ नजर आएगा। लेकिन ये प्रतियोगिता अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। भारत सेमीफाइनल का स्पॉट फिक्स कर चुका है, हालांकि कल अपना अंतिम ग्रुप मैच खेलेगा क्योंकि पाकिस्तान से है तो भारत किसी भी तरीके से हारना नहीं चाहेगा और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगा। दूसरे ग्रुप की क्या स्थिति है और कौन कौन सी टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में अब तक अपना स्थान पक्का मान चुकी हैं?
3: शक्ति, जैसा आपने बताया कि भारतीय टीम अपना स्पॉट जो है फिक्स कर चुकी है, अगर ग्रुप डी की बात करें तो श्रीलंका और बांग्लादेश में से किसी एक से भारत की भिड़ंत होती नजर आ रही है। वहीं अगर बात पाकिस्तान की करें तो अगर वो कल का मुकाबला हारते हैं और अपना आखिरी मुकाबला जीत जाते हैं तो रन रेट और पॉइंट्स के आधार पर वो भी सेमीफाइनल में अपना स्पॉट लगभग फिक्स करते नजर आएंगे।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक रोमांचक मुकाबला कल देखने को मिलेगा भारत को। और अब क्रिकेट के मैदान से एक और खबर का रुख करते हैं, जहां भारत और जापान राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 22 सितंबर को जापान के साथ एक विशेष टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। ये मैच सानो शहर में स्थित क्रिकेट मैदान पर

0: और ये दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मुकाबला है जो खेला जाएगा। ये वही वक्त होगा जब भारतीय टीम एशियाई खेलों के लिए जापान की आईची नगोया में होगी। भारतीय टीम इन खेलों में प्रतिभाग कर रही है। बीसीसीआई ने आज बताया कि ये स्पोर्ट 75 पहल का कदम होगा। यह पहल प्रधानमंत्री जो है जापान के सनाई तकाची और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता के दौरान हुए समझौतों का एक हिस्सा थी। वियतनाम में जारी पिकलबॉल विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। टूर्नामेंट में टीम स्पर्धाओं के पहले दिन भारत ने एंटीगुआ, बारबुडा, इसराइल और चेक गणराज्य के खिलाफ अपने तीनों लीग मैच में जीत दर्ज की।
1: वियतनाम के दनांग में खेले जा रहे पिकलबॉल विश्व कप में हर्ष मेहता, अर्जुन सिंह, अनीश फ्रोइलन, अमन पटेल, पर्ल अमल सादीवाला, नाओमी अमल सादीवाला, आलिया इब्राहिम और मिहिका यादव जैसे खिलाड़ियों वाली भारतीय प्रो टीम ने लीग स्टेज में आसानी से जीत हासिल की। भारत ने एंटीगुआ, बारबुडा और इसराइल को 6-0 के स्कोर से हराया और फिर लीग स्टेज के आखिरी मैच में चेक गणराज्य को 5-1 से मात दी। प्रत्येक मुकाबले में 6 मैच खेले गए जिनमें महिला डबल्स, पुरुष डबल्स, मिक्स डबल्स 1, मिक्स डबल्स 2, महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स शामिल थे। अब भारतीय टीम राउंड ऑफ 32 में पुर्तगाल का सामना करेगी। भारत अपने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदकों के साथ कुल 37 पदक जीत लिए हैं। भारत की नज़र शनिवार और रविवार को अधिक से अधिक पदक जीतकर पदकों का अर्धशतक लगाने पर होगी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो एक बेहद रोमांचक खेल पिकल बॉल, जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैडमिंटन का फॉर्मेट और टेनिस जैसा कोर्ट, वहां पे भी भारत के खिलाड़ियों का जलवा जारी है। और अब बात विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज की, जिसका भव्य उद्घाटन समारोह आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समारोह को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि गुजरात और भारत आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर खेलों के आयोजन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहे हैं।
2: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। मैं सभी को ये कहने जा रहा हूं कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, चाहे पैरा ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का ये बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। हम मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का एक सेंटर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
0: भारत एक बहुत बड़ा सेंटर खेल का बनके उभरने को तैयार है। भारत पहली बार आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। कल से शुरू होगी, 9 सितंबर तक अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित होगी। विशेष साबरमती रिवर फ्रंट सैलानियों के लिए बहुत शानदार जगह रही है, अपनी छुट्टियों और पिकनिक के लिए जाते हैं, लेकिन अब गुजरात खेलों का एक नया केंद्र बन रहा है। कितना साबित किया है शहर ने, इस राज्य ने खुद को,
3: गुजरात ने मौका मिलने पर हमेशा अपने आप को साबित किया है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े टूर्नामेंट की जो मेजबानी है वो गुजरात ने करी, और अभी पुलिसिंग गेम्स होने हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होने हैं, और हम सभी को पता है कि लक्ष्य सिर्फ एक है, ओलंपिक 2036 की मेजबानी करना। तो ये गुजरात के लिए और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जी बिल्कुल, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से अपने आप को हर उस पैमाने पे खड़ा माना जाए जहां पे 2036 की हमारी मेजबानी जो है उसकी दावेदारी मजबूत हो, और 2030 में वो लम्हा भी भारत देखेगा जब अहमदाबाद जो है कॉमनवेल्थ खेल यानी राष्ट्रमंडल खेलों के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस भव्य आयोजन को होस्ट करेगा गुजरात। और एक और खबर, जो गुजरात के आयोजनों की बात हुई तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय 6 सितंबर को सूरत में फिट इंडिया संडे जोन साइकिल का 79वां संस्करण आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ और नशामुक्त जीवन के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनमें फिटनेस, खेल और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का विषय है नशा मुक्त युवा, विकसित भारत। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि संडेज ऑन साइकिल और दूसरी फिटनेस गतिविधियों द्वारा फिट इंडिया पहल तक एक पीढ़ी तैयार की जा रही है जो स्वस्थ रहने और आत्मविश्वास से भरी है, अनुशासित है तथा विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय

0: अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरी कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहां कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026.

0: 26 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: ध्यान दें आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक तो देर किस बात की आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी सीएससी केंद्र पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है
5: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
6: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे
5: and recovery efforts in the country.
4: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218 नवलपरासी पश्चिम में 208 नुवाकोट में 185 रसुआ में 140 गोरखा में 72 धाडिंग में 60 और तन्हू में 38 लोगों की मृत्यु हुई काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा अंतरिक्ष स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा ये समा

0: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के तीन बड़े मामलों में देशभर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत तीन लोगों को हिरासत में लिया।
3: देशभर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देशभर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
4: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
5: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स

0: बैडमिंटन टूर्नामेंट की पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है बॉबी।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन है राजेश रोशन की और फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है सागर।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन कैसे हुई थी अब

0: अभिनय यात्रा की शुरुआत।
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज एक ऐसा कलाकार जिसने कई फिल्मों में बैकग्राउंड संगीत दिया, कई फिल्मों में गाया और बहुत सी फिल्मों के संगीतकार रहे। 1990 और 2000 के दशक के एक लोकप्रिय कलाकार का जिक्र है आज। आइए सबसे पहले रूना लैला के साथ इनका गाया फिल्म अग्निपथ का ये गीत आपको सुनवाएं।

इस कलाकार ने फिल्म सैलाब में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। आइए इस गीत को भी सुन लें।

शाहरुख खान रानी मुखर्जी अभिनीत 2003 की चलते चलते फिल्म में संगीत जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव का था। फिल्म संसार में कटनी मध्य प्रदेश से आए आदेश का जन्म 4 सितंबर 1964 को हुआ था। आदेश ने शुरुआत में आरडी बर्मन, राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ एक ड्रमर की हैसियत से काम किया, फिर एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। राजनीति फिल्म का उनका संगीतबद्ध ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज में ये गाना।

आदेश श्रीवास्तव का विवाह जतिन ललित और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की अभिनेत्री बहन विजयता पंडित से हुआ। बात 1993 की है, जब आदेश श्रीवास्तव को एक बड़ा ब्रेक फिल्म कन्यादान के लिए मिला। लता मंगेशकर ने इनका संगीतबद्ध गीत उदित नारायण के साथ गाया था, जो लोकप्रिय हुआ, पर यह फिल्म और इसके बाकी के नगमे उतने नहीं चले। फिलहाल ओ सजना दिलबर कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि कन्यादान फिल्म के गीत बाकी के नहीं चले या उतने लोकप्रिय नहीं हुए, ऐसा ही फिल्म जाने तमन्ना के साथ भी हुआ। इसके गीत भी उस तरह से नहीं लोकप्रिय हुए जैसा उनको होना था, जैसी उम्मीद आदेश को थी। लेकिन आदेश ने इन असफलताओं से हार नहीं मानी। बाउंस बैक करते हुए इन्होंने जिस फिल्म में अपनी पुनः वापसी की उसकी चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 2004 की फिल्म दीवार के गीत के साथ आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।

सन 1994 की बात है। फिल्म आई आओ प्यार करें। आदेश श्रीवास्तव अपने श्रोता दर्शकों के बीच मधुर कर्णप्रिय संगीत के साथ

सलमा पे दिल आ गया। ये फिल्म और शस्त्र के गीत ने दर्शकों को आकर्षित तो किया, लेकिन शस्त्र के इस गीत ने विशेष ध्यान खींचा। क्या अदा, क्या जलवे।

आदेश श्रीवास्तव ने कई हिट गाने गाए, जैसे सोना सोना, शावा शावा, गुस्ताखियां। फिर कुंवारा के गीतों के माध्यम से फिर एक बार सफलतापूर्वक पहुंचा आदेश का संगीत, जिसे दर्शकों ने सराहा। ये गाना है फिल्म आंखें का, आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाज में।

0: जैसा कि हम जानते हैं, एक गायक संगीतकार के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी आदेश श्रीवास्तव ने अपनी पहचान बनाई। 1992 की अंगार में इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था और 1991 की फिल्म प्रहार में आपने एक रोल अदा किया था, छोटा सा वायलिन वादक बने थे आप। सन 2016 की मराठी फिल्म फैमिली कथा में भी आपने काम किया। वैसे तो इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार का अपने साथियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रहा ही होगा, पर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ आदेश श्रीवास्तव के संबंध काफी अच्छे रहे। आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का ये गाना।
1: बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ।

आदेश श्रीवास्तव की आखिरी फिल्म थी जिसमें आपने म्यूजिक स्कोर किया था वेलकम बैक, जो इनके जन्मदिन 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। और 5 सितंबर को कैंसर ने आदेश श्रीवास्तव को संगीत प्रेमी

उसे यकायक छीन लिया। ये क्षति अपूर्णीय है, लेकिन उनका संगीत और उनकी शख्सियत श्रोता दर्शकों और करीबियों के बीच एक याद बनकर हमेशा रहेगी।

0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी पांसवाड़ा का यह चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं, पेश नजर है फिल्म

फिजाओं में रंग सा भर गया है, दिल किसी के संग सा जुड़ गया है। हर दिन अब नया सा लगता है, जैसे प्यार फिर से हो गया है। इसी के साथ फिल्म संगीत का आगाज करते हैं। मैं हूं आपके साथ शबाना शेख, तो कबूल कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब।

करते हैं नया दौर फिल्म के नगमे के साथ, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, वो साहिर के हैं और फिल्म ओपी नैयर की है। महकती हुई सी शाम आई है, दिल में फिर किसी की याद आई है। ये इश्क भी अजीब सा होता है, हर खुशी उसी से जुड़ाई है।

अभी आपने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में नया दौर फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म का नगमा। बोल साहिर लुधियानवी के हैं और धुन रवि की है। धड़कनों में एक नाम गूंजता है, दिल उसी के ख्यालों में झूमता है। कैसा ये असर हुआ है अचानक, हर पल वही चेहरा घूमता है।

अभी आपने आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म का गीत सुना, कश्मीर की कली। आइए सुनते हैं फिल्म का दो गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। बोला सच बिहारी के है धुन, ओपी नैयर की है। रोशन सी जिंदगी में भर गई है, खुशियों की लहर सी उठ गई है। किसी के साथ ने ऐसा असर किया, हर कमी जैसे खत्म हो गई है।

अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में कारवां फिल्म का गीत सुना। एक नजर आई सुनते हैं इस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी के बोल की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हर ख्वाब में एक तस्वीर से रहती है, दिल की हर बात उसी से कहती है। चाहत का यह असर कितना गहरा है, हर धड़कन उसी के नाम रहती है।

एक नजर इस फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना, प्यार का मौसम। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है मजरू और मौसी की आरडी बर्मन की है। मौसम भी अब हसीन लगने लगा है, दिल का किसी के करीब आने लगा है, हर धड़कन में वही बस गया है, जिंदगी को नया मौका मिलने लगा है।

प्यार का मौसम इस फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना और अब सुनते हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में अनजाना फिल्म का गीत। दिल को अब करार सा मिलता है, हर लम्हा बहार सा मिलता है, जब भी ख्याल आता है किसी का हर दर्द भी प्यार सा मिलता है।

अभी आपने मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में अनजाना फिल्म का गीत सुना। और अब सुनते हैं अगली पेशकश इश्क पर जोर नहीं फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, बोल आनंद बख्शी के है, एसटी पर मन की है। ख्वाबों का जहां सजने लगा है, दिल किसी के रंग में रंगने लगा है, ये इश्क भी कितना खूबसूरत है, हर दर्द में भी सुकून मिलने लगा है।

इश्क पर जोर नहीं इस फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना और अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर आनंद बख्शी का लिखा गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में हम जोड़े फिल्म से। चांद भी आज कुछ शर्माया सा है, आसमान भी झुक आया सा है, जब से दिल ने किसी को चाहा है हर नजारा मुस्कुराया सा है।

अभी आपने हम जगह फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना और अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में नीला फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत आरती बर्मन का है। दिल की गलियों में रौनक सी छाई है, किसी की याद फिर से आई है, हर लम्हा अब खास बन गया है, जिंदगी ने नई राह दिखाई है।

अभी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में मेला फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं अगली पेशकश अभिमान फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, बोल मजरू की है और फिल्म एसटी बर्मन की है। सपनों से रंग भरने लगे हैं, दिल के जज्बात खिलने लगे हैं, कोई अपना सा महसूस होता है जिससे हर दिन बदलने लगे हैं।

0: আমি আপনি লতা মঙ্গেশকরকে আওয়াজ মে প্যাসা সাবন ফিল্মকা গীত সুনা। সফর দিলাব আসান লগতা হে হর রাস্তা মেহরবান লগতা হে কিসি কি মৌজুদগি কা আসর এসা হুয়া হর মৌসম মেহমান লগতা হে। ইসি কে সাথ ফিল্ম সঙ্গীত আর ইয়হি সমাপ্ত হোতা হে। হম আকাশবাণী বাঁসড়া কে মহি চ্যানেল সে বোল রহে হ্যাঁ। রাত্রি কে গ্যারহ বজনে কো হে থোড়ি দের মে আপ সুনেঙ্গে হিন্দি মে সমাচার হমারি দিল্লি কে অন্দর সে।
1: ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का तीन दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी से न्यायिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।

0: कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पतन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह चैनल है। इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं और हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।